FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 जुलाई सन 2026 सुबह के 5:59 हुए हैं। अब हमारी आज की ये प्रसारण सभा आरंभ हो

0: FM 102 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार होंगे। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: चीपलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार होंगे। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। ये फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मैक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके

0: साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी।
2: FM 102.103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

जय जय जय गणपति राजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गजबंदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता।

श्रोताओं, इस भक्ति रचना के साथ ही आज की अर्चना अब संपन्न होती है। आज की अर्चना को अपने स्वरों से सुशोभित किया हरिओम शरण नरेंद्र चंचल, अनूप जलोटा, सुरेश वाडकर और सीमा मिश्रा ने।

श्रोता सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। ये प्रसारण आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से किया जा रहा है, FM 102-103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान।

अयोध्या पुरी में श्री राम के राज्याभिषेक की सभी तैयारियां बड़े उत्साह के साथ की जा रही हैं। कुलगुरु मुनिवर वशिष्ठ जिस व्यक्ति को जो काम करने की आज्ञा देते हैं वो पल भर में ही हो जाता है, मानो उस व्यक्ति ने वो काम पहले से ही कर रखा हो। राज्याभिषेक का समाचार सुनते ही पूरे अवध में बधावी बजने लगी। अयोध्या के महल में श्री राम तथा सीता जी को अंग भड़कने के साथ शुभ शकुन की सूचना मिलने लगी। इन शकुनों को वे भरत के जो अपने ननिहाल गए हुए थे अयोध्या आगमन की सूचना का संकेत मानते हैं। रनिवास में हर्षोल्लास व्याप्त है। जिस सेवक ने अंतरपुर में सबसे पहले राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनाया उसे ढेर सारे आभूषण तथा वस्त्रों का पुरस्कार मिला। रानी सुमित्रा ने रत्नों के मनोहर चौक पुराए तो माता कौशल्या ने ब्राह्मणों को बुलाकर दान दक्षिणा दी, ग्राम देवी देवताओं तथा नागों की पूजा की और पुत्र श्री राम के कल्याण का वरदान मांगा। अवध नरेश ने मुनिवर वशिष्ठ को आमंत्रित कर उनसे श्री राम को समयोचित उपदेश देने की प्रार्थना की।

0: अभी श्री रामचरित मानस गान का संगीतमय प्रसारण किया गया। मुख्य स्वर रविन्द्र साठे का था। आकाशवाणी के इस प्रस्तुति के संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण FM 102 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम आबोहवा में लीजिए सुनिए रघुनाथ मिश्रा की लघु वार्ता वनों का विनाश और हमारा पर्यावरण धर्म।
1: प्राचीन वैदिक पौराणिक भक्ति काल और यहाँ तक कि आदिम रीति रिवाज सभ्यता रहन सहन खान पान के अध्ययनों से वन संपदा पेड़ पौधों वन संपत्तियों की मनुष्य के स्वाभाविक सुखद सुरक्षित स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक भूमिका व प्रासंगिकता का स्पष्ट ज्ञान होता है। सभ्यता के विकास से पूर्व भी वनों के संरक्षण संवर्धन प्रोत्साहन की स्वाभाविक समझ की जानकारी पौराणिक ग्रंथों इतिहास शोध ग्रंथों आदि में स्पष्ट मिलती है। राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक वोल्गा से गंगा एक प्रख्यात उपन्यास आदि विद्रोही के नायक दुनिया का अंतिम गुलाम स्पार्टकस के जीवन वृत्त व तत्कालीन सभ्यता परंपराओं में भी इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सर्वोदय आंदोलन आचार्य विनोबा भावे जयप्रकाश नारायण आदि से जुड़े संगठनों व्यक्तियों की भूमिकाओं से भी वन संरक्षण के लाभ और विनाश के दुष्परिणामों से अवगत हुआ जा सकता है। टिहरी बांध परियोजना ऐसा ही एक उदाहरण है जिस पर वन संपदा के नष्ट होने के मद्देनजर विरोधी स्वर मुखर हुए थे। चिपको आंदोलन के महानायक सुंदरलाल बगुड़ा पेड़ों वनों की रक्षा को अपनी जान से भी ज्यादा महत्व देते थे। उन्होंने असंख्य पेड़ काटने से रोकने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। वे काटे जाने वाले पेड़ से चिपक कर अहिंसक आंदोलन चलाते थे और स्पष्ट कह देते थे कि आरी कुल्हाड़ी जो भी चलानी है पहले मुझ पर चलाओ, मुझे काटो मारो, मेरे जीते जी मैं कोई भी पेड़ नहीं काटने दूंगा। टिहरी बांध परियोजना के विरुद्ध उनका आमरण अनशन भी इस महत्ता की पुष्टि करता है। प्रागैतिहासिक काल में और आदिम काल में वन ही घर हुआ करते थे। वनों में मनुष्य भी अन्य वन्य जीवों की तरह अपना बसेरा बनाते थे और वहीं से उन्हीं की तरह अपना आहार भी जुटाते थे। पेड़ों की छाल पत्तियां फल कीड़े मकोड़े आदि से पेट भरते थे और सामान्य जीवन जीते थे। सभ्यता के विकास के प्रारंभिक काल में अपनी नग्नता ढकने के लिए पत्तों का सहारा लेने की दिलचस्प जानकारी हमें सभ्यता विकास के इतिहास में मिलती है। रामायण युग में भगवान राम द्वारा सीता को वन भेज देना और वन में स्थित फूस पत्तों खरपतवारों वन सामग्री से निर्मित महर्षि वाल्मीकि के आश्रम का सीता के आश्रय बनने की कथा और वन में ही लवकुश के जन्म व परवरिश की कहानी साफ संदेश देती है कि वनों का विनाश हमारे अस्तित्व का विनाश और उनकी सुरक्षा संरक्षण संवर्धन प्रोत्साहन हमारा धर्म है, हमारे जीवन की आवश्यकता है, हमारी सभ्यता संस्कृति सामाजिक जिम्मेदारी है, हमारी आत्मरक्षा है। रावण द्वारा सीता के हरण के बाद भी सीता के वन पंचवटी में आश्रय का उदाहरण भी प्रकृति प्रेम वनों की महत्ता को दर्शाता है। भरतपुर का घाना पक्षी विहार रणथंभौर के मीलों में फैला घना सुदूर वन प्रोजेक्ट टाइगर की श्रेणी में आना कोटा के पास ही हाड़ौती अंचल का वैश्विक स्तर पर अनेक पर्यावरणीय संदर्भों में प्रख्यात दरा का व्यापक क्षेत्र में फैला वन श्योपुर मध्य प्रदेश का व्यापक क्षेत्र में फैला घना वन और ऐसे ही अनेक वनों को हमारे हाड़ौती अंचल राज्य देश में सूचीबद्ध करना कठिन है जिनसे अरबों खरबों की आय तो होती ही है पर्यावरण की सुरक्षा महत्ता भी इन्हीं के कारण अवर्णनीय है जिनसे हमारी सांसें चलती हैं, वन्य जीवों की रक्षा होती है, जलवायु दूषित होने से बचती है, जीवन रक्षक ऑक्सीजन व तरह तरह की औषधियां मिलती हैं, किसानों की जिंदगी अर्थात उनकी खेती में कटाव व भूस्खलन पर रोक लगती है। यदि कहा जाए कि वनों के विनाश से मानव सहित प्राणी मात्र का विनाश अवश्यंभावी है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह सत्य वैज्ञानिकों के आविष्कारों पर्यावरणविदों के गहन अध्ययनों मौसम विज्ञान व अन्य अनेकों शोधों अनुसंधानों से निर्विवाद सिद्ध व पुष्ट हो गया है। हमारा पर्यावरण धर्म हमारी सभ्यता समझदारी नैतिक

0: हमें बनों के विनाश की नहीं रक्षा की प्रेरणा देती है।
1: पर्यावरण चेतना के कार्यक्रम आबो हवा में अभी आप सुन रहे थे रघुनाथ मिश्रा की लघु वार्ता वनों का विनाश और हमारा पर्यावरण धर्म। आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है FM 102 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर।

कार्यक्रम विवरण में प्रस्तुत है एक झलक हमारी आज की प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की। सुबह 8:15 पर श्रोता सुनेंगे सजीव फोन इन प्रोग्राम आरोग्य वाणी। कार्यक्रम में आज का विषय है पहला सुख निरोगी काया। विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मनमोहन अग्रवाल। श्रोता इस विषय से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारे विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। डायल करें हमारे स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 07442941142। सुबह सवेरे के कार्यक्रम नमस्कार कोटा का होगा आगाज। सुबह 7:00 शीर्षक गीत सुनेगा सुबह 7:30 पर और फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे सुबह 9:10 पर और शाम 6:05 पर। सुबह 9:30 पर बहनों के लिए कार्यक्रम होगा महिला जगत। कार्यक्रम में आज बहनें सुनेंगी डॉक्टर शालिनी से की गई भेंटवार्ता। इस भेंटवार्ता का विषय होगा पारंपरिक औषधीय पादपों का महत्व। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1318वीं कड़ी सुनेगा दोपहर 12:00।

शाम 5 बजे युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम होगा युववाणी। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण रंग रंगीलो राजस्थान के अंतर्गत युवा श्रोता राजस्थान की मीनाकारी कला के बारे में जानेंगे। किसान भाइयों के कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण किया जाएगा संध्या 7 बजे। कार्यक्रम में आज सजीव फोन इन होगा। विषय होगा बीज उपचार में जैव उर्वरकों का महत्व। विषय विशेषज्ञ होंगे श्री लाला राम चौधरी। किसान भाई इस विषय से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारे विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। डायल करें हमारे स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 2941142, कोटा का एसटीडी कोड 0744।

शेष प्रसारण समय पर श्रोता सुन सकेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण में ये थी एक झलक हमारी आज की प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। FM 102.103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत समाचार होंगे।

FM 102.106 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। सुबह के 7 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार कोटा।

हर नया पत्ता एक उम्मीद है जो चुपचाप आकर ये कह जाता है कि पुराना चाहे जो भी छूटा हो, नई शुरुआत हमेशा मुमकिन है।

0: हर नया पत्ता एक उम्मीद है जो चुपचाप आकर ये कह जाता है कि पुराना चाहे जो भी छूटा हो, नई शुरुआत हमेशा मुमकिन है। श्रोताओं नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत और स्नेह अभिवादन आप सभी का सुबह सवेरे के कार्यक्रम नमस्कार कोटा में। और श्रोताओं आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्रेरक विचार के साथ। हरियाली किसे अच्छी नहीं लगती? कोई हरियाली का सुखद अनुभव करने के लिए उपवन में जाता है तो कोई पहाड़ों पर, और कोई घर में ही एक छोटा सा बगीचा बना लेता है। लेकिन यदि हम घर में बने हुए बगीचे को ध्यान से देखें और गमले में लगा पौधा देखें तो हम पाते हैं कि गमले में लगा पौधा सुरक्षित तो रहता है, उस पर पानी भी मिलता है और देखभाल भी, लेकिन उसकी जड़ें उतनी नहीं फैल पाती हैं जितनी उस गमले की सीमा है, वो उतनी ही फैलती हैं। लेकिन गमले में लगा पौधा हरा भरा तो दिख सकता है परंतु वटवृक्ष नहीं बन सकता। वटवृक्ष बनने के लिए उसे चाहिए खुली जमीन जहां जड़ें गहराई तक उतर सकें और शाखाएं आसमान को छूने का साहस कर सकें। मायने बिल्कुल साफ हैं कि सीमित दायरे में रहकर जीवन तो जिया जा सकता है, लेकिन अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना शायद संभव नहीं होता। मनुष्य का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जब तक हम अपने डर, सुविधाओं और बने बनाए दायरों में कैद रहते हैं, तब तक हमारी पहचान भी उन्हीं सीमाओं में बंधी रहती है। यदि हमें बड़ा बनना है, अपने सपनों को आकार देना है और अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानना है तो हमें संघर्ष की जमीन पर उतरना होगा, क्योंकि ऊंचाइयां उन्हें ही मिलती हैं जो जड़ों को गहरा करने का साहस रखते हैं। गमलों में पलने वाले पौधे नहीं बल्कि धरती से जुड़ने वाले वृक्ष ही इतिहास रचते हैं।
1: दूर, बहुत दूर, बहुत दूर आसमान पर रहता है एक जादूगर। क्या क्या खेल दिखाता है, कभी हमें हंसाता है, कभी हमें रुलाता है।

श्रोताओं एक आवश्यक सूचना सुनिए। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 31 जुलाई 2026 को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देता है। इसके लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जमा की जाएंगी। पोर्टल का पता है https://awards.gov.in। पोर्टल का पता पुनः सुने https://awards.gov.in। इसके माध्यम से ऑनलाइन ही ये नामांकन और अनुशंसाएं जमा की जानी है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई सन 2026। सूचना समाप्त हुई।

कार्यक्रम नमस्कार कोटा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। भरत व्यास के लिखे इस गीत में प्रकृति के सौंदर्य का अद्भुत वर्णन है। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो अंधेरे काले अंतरिक्ष में घूमते इतने सारे ग्रहों तारों में से हमें ये धरा मिली, हरी भरी सुंदर रंगों वाली धरा। हमारी प्राचीन विधाओं में फैली असंख्य रचनाओं में सर्वत्र प्रकृति प्रेम और पर्यावरण चेतना की बात कही गई है। हमारी संस्कृति में वृक्षों और पर्यावरण के प्रति कितनी अगाध श्रद्धा हुआ करती थी, इसे वेदों की ऋचाओं से बखूबी समझा जा सकता है।

कितनी अच्छी लगती है धरा जब नजर आती है हरियाली, आंखों को तृप्त करती, मन को हर्षाती, हवा में झूमते पेड़ों के पत्ते और फूलों से झुकी हुई ये डालियां, मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। हरियाली मन को भाती है, मन को लुभाती है और इस हरियाली को देखकर हमारे दिल की धड़कन प्रकृति के दिल से जुड़ जाती है और ये सब हमें बताती है कि ये प्रकृति निर्जीव नहीं है बल्कि सजीव है और इस प्रकृति को सजीव बनाते हैं ये हरे भरे वृक्ष, नदियाँ, झरने और हमारे वन्य जीव। मनुष्य के जीवन की हर सांस एवं संपूर्ण जीवन पेड़ पौधों और वनों पर आश्रित है। वनों के इस महत्व को देखते हुए जुलाई महीने के पहले सप्ताह यानी 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। वन महोत्सव का शाब्दिक अर्थ बड़ा ही अद्भुत है। वन का अर्थ पेड़ पौधे एवं हरियाली से है तो वहीं महोत्सव का अर्थ उत्सव या त्योहार से है, अर्थात पेड़ पौधे और हरियाली का उत्सव। भारत में मानसून आमतौर पर जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू होता है और इस अवधि के दौरान लगाए गए पौधों के जीवित रहने की दर अन्य महीनों के दौरान लगाए गए पौधों की तुलना में सबसे ज्यादा होती है और यही कारण है कि वन महोत्सव हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है। वन महोत्सव मात्र एक उत्सव नहीं बल्कि प्राकृतिक परिवेश और पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता अभिव्यक्त करने वाला एक जन आंदोलन है। वन महोत्सव ने अपनी स्थापना के बाद से एक लंबा सफर तय किया। एक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ प्रकृति को बचाने का ये धर्म युद्ध भारत के कई राज्यों में उत्सव के रूप में पहचाना गया। यदि हम इसके इतिहास के बारे में बात करें तो एक आंदोलन के रूप में वृक्षों को बचाने की शुरुआत अनौपचारिक रूप से सन 1947 में हुई और उसके पश्चात भारत के तत्कालीन कृषि मंत्री श्री कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने सन 1950 से इसे वन महोत्सव के रूप में मनाने की शुरुआत की।

हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ प्रकृति को देवी शक्ति के रूप में जोड़कर देखा जाता है। हमारे देश की समग्र सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं आध्यात्म दर्शन का विकास वृक्षों के सानिध्य में ही हुआ। वृक्षों के पूजन की जो परंपरा भारतीय धर्म विधान में पाई जाती है वो वृक्षों के प्रति कृतज्ञता की है। इस परंपरा को चलाने में ऋषियों का उद्देश्य यही रहा कि जन साधारण धर्माचार के माध्यम से वृक्षों के संपर्क में आता रहे, जिससे उनके लाभ, उनकी उपयोगिता, उनके महत्व और उनके उपकार से अवगत रहे और उनकी रक्षा भी करे। लेकिन जिन वृक्षों के कारण हमारा वजूद इस धरा पर टिका हुआ है, जिस हरियाली के रंग से हमारा अस्तित्व निखरा है, हम सभी उसे अलग अलग ढंग से आज बंजर कर रहे हैं। हम प्रगति के नाम पर उसी डाल को काट रहे हैं जिस पर हम बैठे हुए हैं, जख्म दे रहे हैं उसे जिससे हमने जीवन पाया है। जो प्रयत्न हम हमारी खुशी के लिए करते हैं, जीवन में सुकून पाने के लिए करते हैं, ठीक वही जद्दोजहद हमें वृक्षों को लेकर करनी होगी। हमें वृक्षों को मित्र बनाना ही होगा।

1927 से पहले भारत के पास ऐसा कोई सशक्त माध्यम नहीं था जो भारत को एक सूत्र में पिरो सके। 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे से पहली बार रेडियो की आवाज गूंजी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से। 8 जून 1936

को इसे नया नाम मिला ऑल इंडिया रेडियो, एक ऐसी आवाज जो हर दिल तक पहुंची। धीरे धीरे ये सिर्फ एक आवाज नहीं रही, ये बनी भरोसे की अटूट पहचान, सूचना का सटीक स्रोत और भावनाओं की मजबूत डोर। यहीं से शुरू हुई आकाशवाणी की गौरवशाली यात्रा, जो आज भी हर सुबह हर घर में गूंजती है।

आप सुन रहे हैं हाड़ौती अंचल की अपनी आवाज़ आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। इस वक्त है कार्यक्रम नमस्कार कोटा। श्रोताओं, आज है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को चिकित्सकों के समर्पण और ईमानदारी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। और आइए अब बात करते हैं कि क्यों खास है ये आज का दिन। केंद्र सरकार द्वारा ये दिवस सबसे पहले वर्ष 1991 में मनाया गया था। भारत में जहां प्रतिवर्ष 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, वहीं कहीं दूसरे देशों में भी डॉक्टर्स को सम्मान देने के लिए अलग अलग तारीखों पर ये दिवस मनाया जाता है। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया में पहली बार मार्च 1933 में डॉक्टर्स डे मनाया गया था। अमेरिका में ये दिन 30 मार्च को, ईरान में 23 अगस्त को और क्यूबा में 3 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारत में हर साल 1 जुलाई को ही ये दिन मनाए जाने का विशेष कारण है। देश के जाने माने चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि 1 जुलाई को ही है और उन्हें श्रद्धांजलि एवं सम्मान देने के लिए ही राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के लिए ये दिन निर्धारित किया गया। उनका जन्म 1 जुलाई 1882 को बिहार के पटना जिले में हुआ था और निधन 1 जुलाई 1962 को बिहार के पटना में और मृत्यु 1 जुलाई 1882 को ही। डॉक्टर बिधान चंद्र ने अपने जीवन काल में चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने वर्ष 1911 में अपने चिकित्सीय करियर की शुरुआत की और एक बेहतरीन डॉक्टर होने के साथ ही वे भारत की आज़ादी के आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ भी रहे। उन्होंने लंदन के प्रतिष्ठित सेंट बार्थोलोम्यो अस्पताल से डॉक्टर की पढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन तब उनके भारतीय होने के कारण उन्हें वहां दाखिला नहीं मिल सका। बिधान चंद्र भी अपनी धुन के पक्के और दृढ़ निश्चय थे। उन्होंने हार नहीं मानी और दाखिले के लिए करीब 1.5 माह तक लगातार अस्पताल के डीन के पास आवेदन करते रहे। अंततः उनके दृढ़ निश्चय से प्रभावित होकर डीन ने 30वीं बार में उनका आवेदन स्वीकार कर लिया और अपनी लगन तथा कड़ी मेहनत से उन्होंने मात्र 2.25 साल में ही डिग्री हासिल कर एक साथ फिजिशियन तथा सर्जन की रॉयल कॉलेज की सदस्यता हासिल की। वहां से डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्वदेश लौटकर उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारी कार्यों को अंजाम दिया। उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए उन्हें बंगाल का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। वर्ष 1961 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजे गए डॉक्टर बिधान चंद्र की याद में ही तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा 1991 में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तभी से हर साल 1 जुलाई को ये दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन का आयोजन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा किया जाता है। ना केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टर्स फ्रंटलाइन योद्धा के रूप में सामने आए। महामारी के उस भयानक दौर में देवदूत बनकर लाखों लोगों का जीवन बचाने में डॉक्टर्स ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोरोना काल में बहुत से डॉक्टर ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों का जीवन बचाया और इस दौरान वे स्वयं भी मृत्यु का शिकार हुए। महामारी के उस भयावह दौर में करोड़ों लोगों का जीवन डॉक्टर्स ने ही बचाया। सामान्य दिनों में भी डॉक्टर्स लोगों को विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों से निजात दिलाने में पूरी ताकत लगा देते हैं। ऐसे में चिकित्सक दिवस हमें स्मरण कराता है कि चिकित्सक की हमारे जीवन में कितनी अहम भूमिका है।

श्रोताओं, व्यक्तित्व के आज के इस अंक में हम बात करेंगे राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। पुरुषोत्तम दास टंडन का जन्म 1 अगस्त सन 1882 को इलाहाबाद में हुआ था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के अग्रणी नेता के साथ साथ वे एक समाज सुधारक, कर्मठ पत्रकार, हिंदी के अनन्य सेवक तथा तेजस्वी वक्ता भी थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सिटी एंग्लो वर्नाक्युलर विद्यालय में हुई। उसके पश्चात लॉ की डिग्री हासिल कर सन 1906 में उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में काम करना शुरू कर दिया। सन 1906 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि भी चुने गए। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड का अध्ययन करने वाली कांग्रेस पार्टी की समिति से उनका संबंध रहा। सन 1920 में असहयोग आंदोलन, सन 1921 में सामाजिक कार्यों तथा गांधी जी के आह्वान पर स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भाग लिया और हाईकोर्ट का काम छोड़ दिया। सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वे गिरफ्तार भी हुए। सन 1931 में लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में पंडित नेहरू के साथ साथ वे भी गिरफ्तार किए गए। भारत की आज़ादी के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रवक्ता के रूप में कुल 13 वर्षों तक काम किया। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी को प्रतिष्ठित करवाने में उनका खास योगदान माना जाता है। सन 1961 में भारत सरकार द्वारा उन्हें भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। राजश्री के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी पुरुषोत्तम दास टंडन का 1 जुलाई सन 1962 को निधन हो गया था।

और अब समय है कुछ खास सूचनाओं को आप तक पहुंचाने का। आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और अन्य सरकारी तकनीकी संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित जोसा काउंसलिंग 2026 के राउंड 2 का सीट आवंटन परिणाम मंगलवार शाम 5 बजे जारी कर दिया गया है। जिन विद्यार्थियों को सीट आवंटित हुई है उनके लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है। निर्धारित समय में रिपोर्टिंग नहीं करने पर उनकी आवंटित सीट स्वतः रद्द हो जाएगी और वे आगे के सभी काउंसलिंग राउंड से भी बाहर हो सकते हैं। और उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2023-2026 के लंबित आवेदनों के निस्तारण के लिए 3 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य पात्र विद्यार्थियों को शीघ्र योजना का लाभ दिलाया जाना है।

और आइए अब बात करते हैं मौसम की। शहर का अधिकतम तापमान 39.9 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 30.4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3 से 4 दिनों में बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून हवाएं सक्रिय होने तथा दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मानसून प्रवेश करने की प्रबल संभावना है। उदयपुर, कोटा, भरतपुर, जयपुर संभाग के कुछ भागों में 2 जुलाई से आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं 3 से 6 जुलाई को कुछ और भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश का दौर चल सकता है।

और श्रोताओं, कार्यक्रम नमस्कार कोटा का आज का सफर हुआ पूरा। कार्यक्रम में संयोजन रहा तेज रामीणा का, प्रस्तुति राजेश महावर की। और अब दीजिए रीना को अनुमति। नमस्कार।

सरगम की ताल पर आप हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल के साथ एफएम 102-103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए शीर्षक गीत। और श्रोताओं, शीर्षक गीत में आज आप सुनेंगे मुखड़ा यानी चेहरा इस शीर्षक पर गीत।

0: इंसान जाग उठा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की थी।
1: ये पर्दा हटा दो,

0: अच्छा भोसले और मोहम्मद रफ़ी को आप सुन रहे थे फिल्म एक फूल दो माली के इस गीत में। प्रेम धवन की गीत रचना तर्ज रवि की।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताव एक आवश्यक सूचना सुनिए। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 31 जुलाई 2026 को 18 वर्ष से कम

0: आयु के बच्चों की वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देता है। इसके लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जमा की जाएंगी। पोर्टल का पता है https://awards.gov.in। पोर्टल का पता पुनः सुने https://awards.gov.in। इसके माध्यम से ऑनलाइन ही ये नामांकन और अनुशंसाएं जमा की जानी है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई सन 2026। सूचना समाप्त हुई।
1: श्रोताओं, आज सुबह 8:15 पर आप सुन सकेंगे सजीव फोन इन प्रोग्राम आरोग्य वाणी। कार्यक्रम में आज का विषय है पहला सुख निरोगी काया। हमारे विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मनमोहन अग्रवाल। हमारे जो भी श्रोता इस विषय से संबंधित अधिक जानकारी चाहते हैं वे हमारे विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। समय आप एक बार पुनः सुन लीजिए, आज सुबह 8:15 से 9 बजे के मध्य आप हमसे लाइव जुड़ सकेंगे इस फोन इन प्रोग्राम में। और इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए आपको डायल करने होंगे हमारे स्टूडियो के टेलीफोन नंबर। हमारे नंबर 2941142, कोटा का एसटीडी कोड 0744। शीर्षक गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से और आज का शीर्षक है मुखड़ा।

राज कमल की तर्ज पर आप सुन रहे थे पी पंकज की गीत रचना, येसुदास की आवाज फिल्म सावन को आने दो। श्रोताओं, आज शाम 7 बजे सजीव फोन इन चौपाल का विषय होगा बीज उपचार में जैव उर्वरकों का महत्व। विशेषज्ञ होंगे श्री लाला राम चौधरी। हमारे किसान भाई इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में प्रसारण के दौरान इस विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से, और इसके लिए उन्हें डायल करने होंगे हमारे स्टूडियो के टेलीफोन नंबर। हमारे नंबर्स हैं 2941142, कोटा का एसटीडी कोड 0744, और सुबह 8:15 पर आप सुन सकेंगे सजीव फोन इन प्रोग्राम आरोग्यवाणी। कार्यक्रम में आज का विषय है पहला सुख निरोगी काया। जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर मनमोहन अग्रवाल। टेलीफोन नंबर्स वही 2941142, एसटीडी कोड 0744।

0: कुदरत का कानून फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। इस गीत को अपनी आवाज़ दी अलका याग्निक और साथियों ने। समीर के बोल थे और ये धुन थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।
1: उन्नीस सौ 1927 से पहले भारत के पास ऐसा कोई सशक्त माध्यम नहीं था जो भारत को एक सूत्र में पिरो सके। 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे से पहली बार रेडियो की आवाज गूंजी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से। 8 जून 1936 को इसे नया नाम मिला ऑल इंडिया रेडियो। एक ऐसी आवाज जो हर दिल तक पहुंची। धीरे धीरे ये सिर्फ एक आवाज नहीं रही, ये बनी भरोसे की अटूट पहचान, सूचना का सटीक स्रोत और भावनाओं की मजबूत डोर। यहीं से शुरू हुई आकाशवाणी की गौरवशाली यात्रा जो आज भी हर सुबह हर घर में गूंजती है।
0: हम श्रोताओं को पुनः याद दिला दें कि आज सुबह 8:15 पर वे हमसे लाइव जुड़ सकेंगे फोन इन प्रोग्राम आरोग्यवाणी में। कार्यक्रम में आज का विषय है पहला सुख निरोगी काया। श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम डॉक्टर्स डे स्पेशल है और हमारे विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मनमोहन अग्रवाल। हमारे श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्नों के लिए हमारे विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। डायल करें हमारे स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 2941142, कोटा का एसटीडी कोड 0744। और ये है शीर्षक गीत का आखिरी नगमा फिल्म सुहाग से, आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक की। आनंद मिलन की धुन पर गीत के बोल समीर के हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे शीर्षक गीत FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार प्रभात का आज का अंक।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने

0: तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल

0: Hard Sit. और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रूपए, गोवा में 406 रूपए और केरल में 401 रूपए प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रूपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
3: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $27 अरब से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
1: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
2: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी, बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
3: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
2: सभी मदरसों को UDIS, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
4: स्वगणना की प्रक्रिया पूरे होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है, उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जांच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है, तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी से इकट्ठा करेंगे। स्मृति एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय UPTET की समीक्षा बैठक में लिया गया। TET परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी।

0: राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मेक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा व्यक्त की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पीएम की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर पीएम ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली एनसीआर को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के 2 पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न है और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में DRDO द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 102.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रही हैं। सुबह के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सजीव फोन इन प्रोग्राम आरोग्य वाणी। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। वक्त वक्त पर खुद को बदलना जरूरी है, तभी तो जिंदगी का दौर बदलेगा। अगर बचना है रोगों से तो बदल डालो कुछ आदतों को, तभी तो सेहत का हाल बदलेगा। अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए और समग्र स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि स्वास्थ्य की सही देखभाल की जाए। बहुत से लोग जो अपने आप को फिटनेस फिट मानते हैं, उन्हें ये एहसास तब होता है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है जब कोई स्वास्थ्य समस्या उनको होती है। हम कितने स्वस्थ हैं, हमारे स्वास्थ्य का हम कैसे देखभाल करें। और श्रोताओं, साथ ही साथ

0: आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी डॉक्टर्स डे पर डे भी है, तो इस दिवस पर हम जानेंगे हमारे आज के विशेषज्ञ से कि जो हमारे ये योद्धा हैं वो किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनका अपना स्वास्थ्य कैसा होता है, वो अपने स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करते हैं और क्या क्या समस्याएं उन्हें अपने इस सेवा काल के दौरान जो फेस करनी पड़ती है, ये सब आज हम हमारे विशेषज्ञ से जानेंगे। हमारे आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मनमोहन जी अग्रवाल और उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर।
1: नमस्कार मैम।
0: और स्वागत करने के साथ साथ ही आकाशवाणी के इस मंच से डॉक्टर साहब को और सभी चिकित्सकों को डॉक्टर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं भी हम यहां से देते हैं।
1: धन्यवाद मैम
0: जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स डे है आज
1: जी।
0: तो सबसे पहले तो जानते हैं कि हाउ आर यू फीलिंग, कैसा महसूस कर रहे हैं?
1: बहुत अच्छा जैसे हर रोज फील करते
0: जी
1: हैं।
0: लेकिन जब कोई डे होता है उस दिन का एक खास अपना, मतलब कहते हैं कि मायने बदल जाते हैं
1: जी,
0: है ना? उस दिन एक जैसे बर्थडे होता है, स्पेशल फीलिंग आती है, तो आज कैसी फीलिंग आ रही है आपको?
1: देखिए, जो नेशनल डेज बनाए जाते हैं ये क्यों बनाए जाते हैं?
0: हाँ,
1: क्योंकि ये लोगों को सेंसिटाइज किया जाता है एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। जैसे हम लोग मदर्स डे बनाते हैं, फादर्स डे बनाते हैं,
0: बिल्कुल
1: वैसे डॉक्टर्स डे बनाते हैं। ये सेंसिटाइजेशन के लिए हमें जरूरत क्यों पड़ रही है?
0: क्यों जरूरत पड़ती है जी?
1: क्योंकि लोगों पे जो विश्वास होना चाहिए डॉक्टरों पे, जो रेस्पॉन्स होना चाहिए, जो बिहेवियर होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कम हो रही है,
0: कम हो रहा है,
1: उसी को सेंसिटाइज करने के लिए। और ये आज से नहीं, 1991 से जुलाई फर्स्ट को इंडिया में, वैसे तो डिफरेंट कंट्री में
0: अलग अलग दिन मनाया जाता है जी।
1: और ये प्रोफेसर बीसी रॉय का जन्मदिन है, ही वाज़ ए एमिनेंट फिजिशियन
0: जी, जी।
1: तो उनके याद में बनाया जाता है। और इसका मेन मकसद यही है कि सेंसिटाइज किया जाए लोगों को डॉक्टरों के प्रति। जैसे इस साल का थीम भी शायद है बिहाइंड द मास्क हू हील्स द हीलर, मतलब डॉक्टर्स भी इंसान होते हैं, आम इंसान ये भूल जाते हैं। हरदम डॉक्टर को कभी भगवान का दर्जा दे देते हैं, कभी डाकू का दर्जा देते हैं। मुझे ये लगता है कि डॉक्टरों को भी इंसान ही रहने दें, वो भी इंसान है, उनका भी शरीर है, उनका भी आत्मा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे पहलू आज हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर्स के जीवन के बारे में, कि क्या वो फेस करते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसी लाइफ स्टाइल होती है, कैसे वो कॉप अप करते हैं, ये सारी चीजें, तमाम बातें हम आपसे जानना चाहेंगे। श्रोताओं को बता दें कि श्रोताओं, कार्यक्रम हमारा आज का विषय है पहला सुख निरोगी का है और आज का ये कार्यक्रम डॉक्टर्स डे स्पेशल है। यदि आप भी हमारे विशेषज्ञ से इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न करना चाहते हैं कि डॉक्टर्स क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और साथ ही साथ अपनी जीवन शैली से संबंधित भी कोई खास प्रश्न आपका है, तो आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम में, आरोग्यवाणी में। कार्यक्रम में हमारा नंबर वही जाना पहचाना 2941142, कोटा का एसटीडी कोड 0744 हमें रहेगा आपके फोन कॉल्स का इंतजार। और डॉक्टर साहब, थीम तो आपने बता ही दी है, आप आगे बातचीत जारी रखते हैं। जानना चाहेंगे कि चिकित्सक बनने से पहले, चिकित्सक बनने के दौरान यानी सेवा काल के दौरान, और जब तक ये सेवा काल, ये जीवन यात्रा चलती है, एक डॉक्टर को कैसा महसूस होता है, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? जब उसने सोचा, मतलब उसके मस्तिष्क में आया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तब से लेकर उसने जब तक अपनी सेवाएं दी, तब तक का
1: ये देखिए, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ
0: जी।
1: जब मैं स्कूल में था, बहुत सारे डॉक्टर्स को देखता था
0: जी,
1: तो उन्हीं को देख के, उनका मरीज के प्रति समर्पण को देख के मेरा भी इच्छा हुआ कि मैं भी डॉक्टर बनूं। लेकिन मुझे उस समय पता नहीं था डॉक्टर बनने का तरीका क्या है
0: जी।
1: जैसे 12th हमारा क्लियर हुआ, उसके बाद पता चला कि डॉक्टर बनने के लिए हमें एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है।
0: बिल्कुल।
1: और मुझे लग रहा था ऑर्डिनरी एग्जाम हुआ होता होगा, हो जाएगा
0: जी जी,
1: बट उसके लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी। और कैसे भी उसको उत्तीर्ण हुए और मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए
0: जी।
1: तब हमारे पहला क्लास बायोकेमिस्ट्री का था, मुझे याद है, हमारे एक डॉक्टर से, हमारे जो प्रोफेसर से, उनका फर्स्ट क्लास में वो बोले थे, ये एक ऐसा प्रोफेसर है जो घुसने में दिक्कत होती है, ढुकते कष्टो, इससे बंगाली है,
0: बंगाली
1: ढुकिए कष्ट, मतलब घुसने के बाद कष्ट, बेरुते कष्ट, मतलब छोड़ना कष्ट होता है, इसको छोड़ नहीं सकते, और बेरुए कष्ट, इसको निभाना भी कष्ट। तो उसी दिन फर्स्ट क्लास में, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे जज्बा होते थे कि हाँ हमें डॉक्टर बनना है, काम करना है।

0: तो मुझे ये सेंटेंस, ये जो वर्ड्स का कुछ मतलब समझ में नहीं आया था, बट आज के डेट पे आफ्टर 30 इयर्स, मेरा प्रोफेशन में 30 इयर्स हो गया है, अभी मुझे समझ में आ रहा है कि वो सर कितना सच थे। जैसे घुसना जितना डिफिकल्ट है, घुसने के बाद भी उतना ही डिफिकल्ट है। आप जो 10 साल 15 साल पढ़ाई करते हैं, आपको ना तो दिन देखना है ना रात देखना है, ऊपर से प्रेशर, सीनियर्स का प्रेशर, सब प्रेशर,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उसको हैंडल करना है। और 15 साल पढ़ने के बाद आप जब बाहर आते हो, बाहर आना कष्ट है, मतलब वो एकदम एकदम क्लियर करके बाहर आना कष्ट है।
1: बातचीत जारी रखेंगे, एक कॉलर हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो
2: नमस्कार
1: जी, नमस्कार जी। नाम बताइए।
2: रामेश्वर राठौर, गोविंद नगर
1: जी। प्रश्न कीजिए आप। आपका जी
2: जानकारी चाहिए थी
0: जी, पूछिए।
1: कोई प्रश्न है आपका?
2: आवाज नहीं आ रही आपकी तरफ से।
1: हमें तो आपकी आवाज आ रही है। हेलो,
0: आप पूछिए, हम सुन रहे हैं, आप जो भी पूछना चाहें पूछिए।
1: कट गया है उनका कॉल। तो
0: जैसे बाहर आना कष्ट होता है, तो एग्जाम क्लियर करके बाहर आना ही बहुत बड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। और द मोमेंट आप बाहर आते हैं, दुनिया में आते हैं, तो आपको फ्रेशर्स बोला जाता है। 15 इयर्स की पढ़ाई के बाद
1: जी
0: नौसिखिया है,
1: बिल्कुल।
0: तो फिर आपको फील्ड में मेहनत करनी पड़ती है। आफ्टर 5 से 7 साल तो इसी लग जाते हैं आप अपने आप को एस्टेब्लिश करने में। आजकल के दौर में मुझे नहीं पता गलती किसकी है, मैं किसी की गलती देकर गलत करना नहीं चाहता
1: जी।
0: लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो भूल गए हैं कि डॉक्टर भी एक इंसान होता है, उससे भी गलती हो सकती है,
1: बिल्कुल।
0: उसका भी थकान, उसको भी थकान होती है, उसको कोशिश कर सकता है। और जब से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, ये प्रोफेशन को मैं कोई सेवा का प्रोफेशन नहीं मानता, इट्स प्रोफेशन
1: जी।
0: हर प्रोफेशन में आप कुछ देते हो कुछ लेते हो, वैसे भी ये भी है। आप अगर एक दुकान खोल के बैठे हो, आप कोई चाहते हो आपका कोई ग्राहक खराब होके जाए, आप कभी नहीं चाहोगे। पेशेंट कोई भी डॉक्टर के लिए इज ए प्रोफेशन, ही इज ए ग्राहक
1: जी।
0: मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। कोई डॉक्टर क्यों चाहेगा अपना पेशेंट का खराब करना?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अपना नाम क्यों खराब करना चाहता है? अपना प्रोफेशन को क्यों बर्बाद करना चाहेगा? कभी नहीं करता। आप आए दिन समाचार पत्रों में देखिए, टीवी में देखिए, गलत इंजेक्शन से। गलत इंजेक्शन होता क्या है, कौन डिफाइन किया इंजेक्शन गलत है? हर एक इंजेक्शन का एक केमिकल्स होते हैं, किसी भी बॉडी में कोई भी रिएक्शन हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं होता, सारी चीज के रिएक्शन होते हैं। कोई डॉक्टर इंजेक्शन दिया तो मान लो कुछ अनहोनी हो गई, तो उसको गलत इंजेक्शन बोल के उसको मारपीट करने का क्या उचित है?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और गलत इंजेक्शन होता क्या है, कौन डिफाइन किया कि दैट इंजेक्शन वाज गलत?
1: जी
0: तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि कोई भी डॉक्टर अपना पेशेंट का बुरा नहीं चाहता। शायद एक ऐसा ही प्रोफेशन है, अगर कोई गुस्से में डॉक्टर है ना, वो वही चाहेगा यार ये इंसान ठीक होकर जल्दी जाए हॉस्पिटल से
1: जी,
0: ताकि मेरा हेडेक कम हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये जो प्रेशर, और अल्टीमेटली पेशेंट ही सफर करता है। जब डॉक्टर स्ट्रेस में काम करता है, प्रेशर में काम करता है, वो इमरजेंसी हैंडल करने लायक नहीं रहता। इमरजेंसी के लिए जो हार्मोन्स डॉक्टर के अंदर आना चाहिए, आप उसको गुस्सा दिला के इरिटेट करके उसका वो हार्मोन्स को आप खत्म कर दिए, वो रिएक्शन, वो उतना रेस्पॉन्स दे ही नहीं पाता। अल्टीमेटली लॉस पेशेंट्स का ही होता है।
1: डॉक्टर साहब, आपने बहुत सही बात कही कि प्रेशर होता है, बहुत तनाव होता है। कई बार हम ये देखते हैं कि हम डॉक्टर के साथ एक टेग लगा देते हैं, वो तो शॉर्ट टेम्पर है, अरे वो तो जोली नेचर के हैं। हम क्यों सच्चाई नहीं जानना चाहते कि वो डॉक्टर शॉर्ट टेम्पर? ये हमने या तो सुनी सुनाई बात पर हमने बिलीव कर लिया, और उसी तरह से हमने मानसिकता बना ली डॉक्टर के बारे में।
0: दूसरा चीज ये देखिए, हरदम झूठ बहुत सुहाना होता है
1: जी।
0: आप ये मत समझिए कोई बंदा आपको प्यार से बात कर रहा है, पीठ थपा के बात कर रहा है, तो आपके साथ सही कर रहा है
1: जी।
0: वो कभी भी नहीं होता। मैं मना नहीं कर रहा हूँ सही नहीं कर रहा है, सही करता होता है। लेकिन जो आपको गुस्से में बोलता है या डायरेक्टली ब्लंटली बोलता है आपको ये करना है, ठीक होना है, तो तो वो ज्यादा अच्छा है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि ही आपके शरीर के लिए ज्यादा केयर करता है। आपका शरीर में कोई भी नुकसान होता है उसको हर्ट होता है, डॉक्टर को हर्ट होता है, इसीलिए वो गुस्से में बोलता है।
1: बिल्कुल।
0: ये चीज लोगों को समझना चाहिए।
1: समझना चाहिए। और हम उनको या तो कहते हैं कि वो रूड बिहेव करते हैं, वो शॉर्ट टेम्पर है, वो तो पेशेंट की बात नहीं सुनते हैं, और इस वजह से वो धीरे धीरे धीरे वो एक कहते हैं ना माउथ पब्लिसिटी हो जाती है, और फिर डॉक्टर उस

0: के पास जाना हम बंद कर देते। एक और मानसिकता जो दिखाई देती है वो ये है, हम आपने भी देखा है, आपके साथ भी कई सारे पेशेंट ये शेयर करते होंगे कि डॉक्टर साहब हम उस डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने हमारा केस बिगाड़ दिया और वो अच्छे नहीं है और इस तरह से हो गया, दवाइयाँ सही नहीं लिखते, महंगी दवाइयाँ लिखते हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे।
1: मैं वही बोल रहा था कि कोई भी डॉक्टर अपना पेशेंट का खराब कभी नहीं करेगा। ये एक बायोलॉजी है, ये मैथमेटिक्स नहीं है, फिजिक्स नहीं है कि आपको लॉ रूल्स डालो हो जाएगा। हर एक सिस्टम अलग होता है, हर एक डिजीज, आप सेम डिजीज सेम इंसान माने मल्टीपल इंसान में सबका ट्रीटमेंट अलग अलग होता है, सबका रेस्पॉन्स अलग अलग आता है, क्योर रेट भी अलग अलग होते हैं। ये चीज एक्सेप्ट करना जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि मान लो मुझे मलेरिया हुआ है, मेरे को क्लोरोक्विन दिया, डॉक्टर ठीक हो गया, पर दूसरा मरीज मलेरिया होके आया, उसको क्लोरोक्विन देने से क्लोरोक्विन का साइड इफेक्ट तो हो गया लेकिन उसको बुखार ठीक नहीं हुआ, इसका मतलब नहीं कि डॉक्टर आपका घर केस बिगाड़ दिया। वो तो डायग्नोसिस ठीक किया है, मलेरिया ही हुआ है, बट ठीक है कुछ अनहोनी हुई है, वो सब अनहोनी किसी के डॉक्टर के हाथ में नहीं होता। तो उसके लिए डॉक्टर को ब्लेम करने से पहले पहले सोचें। अगर आपको फिर भी लग रहा है डॉक्टर गलत है, आप कोई मारपीट नहीं करके, तोड़ फोड़ नहीं करके आप लीगल एक्शन लीजिए। बहुत सारे लॉज हैं अगेंस्ट लॉगर डॉक्टर्स भी हैं, अगेंस्ट हॉस्पिटल्स भी हैं, वो ज्यादा अच्छा रहता है।
0: डॉक्टर साहब, जब भी कोई ये प्रोफेशन चुनता है, सपने होते हैं, हम देखते हैं कि हमारा तो शहर जाना ही इस बात के लिए जाता है कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की सिटी है ये, यहाँ बनने बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं। तो सपने देखना और उन्हें पूरा करना, दोनों में बहुत फर्क है। जैसे स्वस्थ होना और स्वस्थ दिखना, दोनों में अंतर है। ऐसे ही सपने तो हमने देख लिए, लेकिन उस सपनों को साकार करना, हम देख रहे हैं कि बच्चा नहीं चाहता बट पेरेंट्स का प्रेशर है कहीं ना कहीं, और वो प्रेशर फिर किस तरह से सामने आता है, आप और हम वाकिफ हैं इस चीज से। तो यहाँ से इस मंच से माता पिता के लिए, या जो भावी डॉक्टर्स हैं जो इस फील्ड में घुस चुके हैं, जो सपना देख रहे हैं कि हम ये करें, क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए, इससे पहले हम स्वास्थ्य क्या है ये समझ लेते हैं।
0: बिल्कुल,
1: अगर डेफिनेशन वाइज देखें, स्वास्थ्य खाली रोग नहीं होना स्वास्थ्य नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हेल्थ इज फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, उसमें सोशल वेलबींग भी है।
0: बिल्कुल,
1: मेंटल कंडीशन भी ठीक होना चाहिए। अगर हाँ ठीक है, मेरा एम है डॉक्टर बनना, या मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा डॉक्टर बने, ठीक है, बट हम ये तो पता करें बच्चा क्या चाहता है,
0: बच्चा क्या चाहता है,
1: बच्चा किस चीज में आगे जाना चाहता है। हमें गाइड करना हमारा अधिकार है, प्रेशराइज करना अधिकार नहीं है। हम उसका सोशल लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, आप अननेसेसरी उसका मेंटल प्रेशर बढ़ा रहे हैं, आप उसको तो ऐसे ही अनहेल्दी कर रहे हैं। सपना देखना अच्छा है, आप उसको गाइड करें। आप ये बताएं, ठीक है आपको मन है कि डॉक्टर बनना चाहिए मेरा बच्चा, तो आपको डॉक्टर बनने से क्या फायदा है, कैसे क्या करना है, उसको मोटिवेट करें, ना कि प्रेशराइज करें। दूसरा चीज, मेरा जहां ऑब्जर्वेशन है, मैं कोटा में 15 साल हो गया काम कर रहा हूँ, पेरेंट्स थोपते हैं मरीज पर, मैंने बच्चों पर वो भी है। दूसरा, हम अपना सपना बच्चों पे थोप,
0: बिल्कुल
1: मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मेरा बच्चा बनना चाहिए, ये चीज नहीं करना चाहिए। उनको भी अपना स्पेस दीजिए बनने के लिए, अपना कौन सा करियर चूज करना है। और दूसरा, मैं बच्चों से भी बोलना चाहता हूँ, ठीक है आपका सपना है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आप कोशिश करते रहें, बट बिना मायूस हुए, हर कोशिश हार नहीं होती।
0: जी, और अगर एक अटेम्प्ट दो अटेम्प्ट में नहीं मिल रही सफलता, तो लेट इट बी,
1: कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर करना ही यही चीजें, थोड़ा लगे रहो, 2-3 साल में हो जाएगा। और जब आप प्रोफेशनली सेटल हो जाओगे, आपको कोई नहीं पूछेगा आप कितना चांस लेके आए थे, आपको ये पूछा जाएगा आप ये काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे।
0: जो कम्युनिकेशन गैप आता जा रहा है पीढ़ियों के बीच में, पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं या बच्चे नहीं समझा पा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपने अभी जिक्र करा सामाजिक स्वास्थ्य का भी, कहीं ना कहीं बॉन्डिंग जो हम चाहते हैं कि वो बॉन्डिंग नहीं हो पाए।
1: फैमिलियल बॉन्डिंग, आप देखेंगे पीयर, माने बच्चा अपना जो दिमागी हालत है, जो आप सोच रहे, वो अपना फ्रेंड्स को ही बता सकता है लेकिन पेरेंट्स के साथ नहीं बता पा रहा है, क्योंकि हम लोग एक बैरियर क्रिएट कर दिए हैं बच्चे के साथ। हम लोग बच्चों को कभी खुल के बात करते हुए, उनसे बात किए भी नहीं है, उनका बात सुने भी नहीं, अगर कुछ बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है हम सुनते भी नहीं है, तेरे को कुछ नहीं पता, ये करना है ये चीज जो है ना ये बहुत गलत है। हमें बच्चों को समझना चाहिए, समझाना चाहिए।

0: चाहिए और इंटरेक्शन इतना अच्छा होना चाहिए कि बच्चा हर एक चीज, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, आपको खुल के बोल सके बिना डरे,
1: बिना डरे जी,
0: तभी जाके वो बोलेगा आपको
1: जी। डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, फिलहाल आपकी पसंद का एक गीत हम सुन लेते हैं
0: जी।

0: जी हाँ, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, इसलिए अपनी सेहत पर ध्यान दें और साथ ही साथ जो हमारी सेवा में दिन रात लगे रहते हैं हम उनकी भावनाओं का सम्मान करें, उन्हें भी सम्मान दें। और श्रोताओं, आरोग्यवाणी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है पहला सुख निरोगी काया। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मनमोहन अग्रवाल। हमारा आज का ये कार्यक्रम डॉक्टर्स डे स्पेशल है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमसे जुड़ना चाह रहे थे, लगता है डिस्कनेक्ट हो गया है उनका, हम बातचीत कॉल आ रहा है।
1: ठीक
0: है। हेलो।
2: हेलो, नमस्कार जी।
1: नमस्कार, बोलिए।
0: नमस्कार।
2: हाँ जी, जेकेवी मार्केट मंडी
0: आपकी आवाज कट रही है, आप हमें या तो फिर से कॉल करें।
2: मैं तो डॉक्टर साहब को और डॉक्टर डे देश की शुभकामनाएं जी।
1: धन्यवाद धन्यवाद
0: धन्यवाद।
2: हाँ जी, मैं जीटीवी मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब मंडी।
0: आवाज कट रही है आपकी। हेलो।
2: चलो ठीक है, दोबारा लगा लेता हूँ।
0: चलिए बताइए बताइए, प्रश्न कीजिए।
2: प्रश्न मेरा यह है, जैसे एक ना सुख निरोगी काया, अगर हमारे को सुख में कोई रोग नहीं होगा तो जिंदगी जीवन जीने का अच्छा है। अगर डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर अपना पर्सनल जैसे घर का होता था ना, ऐसे डॉक्टर के विश्वास पर उसकी बातों पर अमल कर चलना चाहिए जैसे डॉक्टर साहब बोलते हैं। अगर डॉक्टर साहब ऐसे नहीं है तो दिमाग लगाना होता है, किसी को बार बार समझाना पड़ता है, बंदा फिर भी ना बात माने तो दवाई से भी काम नहीं बनता, वो सुझाव के साथ दवाई देनी चाहिए
1: जी। एकदम सही बात,
0: बिल्कुल।
2: बहुत अच्छा
0: जी, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे अन्य श्रोता भी अपने शुभकामना संदेश दे सकते हैं, इसके लिए भी उनका स्वागत है। डॉक्टर साहब, थोड़ी बात जीवन शैली से संबंधित हो जाए, शायद ऐसा कोई

0: व्यक्ति हो जो ये ना चाहे कि वो स्वस्थ रहे, तो कोई भी नहीं चाहता कि वो बीमार रहे, लेकिन कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में होती है और कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होती. तो जिस तरह की इन दोनों जीवन शैली है, मैं डॉक्टर्स के भी इसमें इंक्लूड करना चाहूंगी, जो इन दिनों की हमारी जीवन शैली है, किस तरह से वो हम सभी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है.
1: देखिए, आजकल का जो जीवन शैली है बहुत स्ट्रेसफुल जीवन शैली है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, अपने अपने स्तर पे सब स्ट्रेस्ड हैं
0: जी.
1: हम लोग ये नहीं समझ पाते कि हमें दिन निकालना है, खुश होके निकालना है. अगर आज में जिएंगे तो डेफिनेटली वो दिन अच्छा जाएगा और शरीर भी अच्छा रहेगा. हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम अतीत में और फ्यूचर में ज्यादा जीते हैं, आज में कम जीते हैं. तो जो स्ट्रेसफुल लाइफ है कुछ हद तक हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं. दूसरा चीज, हम उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे एक्टिविटी कर सकते हैं. अगर हम अपना जीवन शैली को थोड़ा सा सुधार लें, थोड़ा सा चेंज कर लें, जैसे सुबह उठ के, जैसे हमारे फोर फादर्स एंशिएंट लोग करते थे, स्पेसिफिकली इंडियंस, अगर वही जीवन शैली हम लोग आदत में बना लें तो बहुत सारी चीजें, हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगी. सुबह थोड़ा सा जल्दी उठें, एक्सरसाइज करें, मिनिमम आधा घंटा से एक घंटा फिजिकल एक्सरसाइज हो, 10-15 मिनट योगा कंसेंट्रेशन करें, तो इसमें आपका मोर देन 60% स्ट्रेस कम हो जाएगा.
0: जी,
1: द मूवमेंट आपका स्ट्रेस कम हो रहा है, आपका हार्मोनल जो हार्मोनी है शरीर के अंदर जो बैलेंस होके बना रहता है वो डिस्टर्ब नहीं होगा और आपका पूरा दिन अच्छे से जाएगा. मन स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ स्वस्थ रहेगा.
0: जी, आपने योगा का जिक्र करा तो कई लोग सोचते हैं योगा इज वर्क आउट.
1: नो, योगा इज नॉट वर्क आउट. योगा आप अपना मन को कंट्रोल करने का तरीका है. आप वर्कआउट साथ में करो, इसलिए मैं पहले बोला आप एक्सरसाइज कीजिए आधा घंटा, दैट इज फॉर फिजिकली. योगा इज फॉर मेंटल कंट्रोल. अब अपने मन को शांत रख सकते हैं योगा करके. बहुत सारे योगा है जो कंसेंट्रेट, आपका कंसेंट्रेशन लेवल बढ़ाता है, आपका मन में जो सेरोटोनिन जो केमिकल्स का ऊपर नीचे होता है उसको स्टेबलाइज करता है. तो योगा मन को कंट्रोल के लिए है. फिजिकल कंट्रोल, मन का कंट्रोल अगर सुबह सुबह आप करें
0: जी,
1: आप डे पूरा दिन भर में बहुत सारे तनाव आते हैं, बहुत जगह पे आपको ऐसा लगेगा बहुत गुस्सा आता है. अगर आप सुबह आपका मन को कंट्रोल करके रखें, आप गुस्सा में कंट्रोल कर सकते हैं, आपको रिएक्शन देने में टाइम लगेगा, तो आपका बहुत सारे प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट हो जाता है.
0: कॉलर जुड़े हैं, हेलो.
2: योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से.
0: जी, स्वागत है, बताइए.
2: जी, मतलब जो हम जीवन शैली की बात कर रहे हैं, इसमें एक समय पर सोना, मतलब एक टाइप के साथ नींद लेना, ये सब इतना ज्यादा जरूरी.
1: नींद बहुत ज्यादा जरूरी है. देखिए, हमारा शरीर में सारे चीज एक सर्कडियन रिदम में चलता है. सूरज उदय होने से सूरज अस्त होने तक दिन और रात में बहुत सारे चेंजेस होते हैं. जैसे लाइट्स आता है तो हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं. वो सर्कडियन रिदम हमें मेंटेन करके रखेंगे तो हमारा मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा. रात में मिनिमम 7-8 घंटा नींद लेना बहुत जरूरी है आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए, शरीर ठीक रहने के लिए. आपका काम में मन ज़्यादा लगा रहेगा अगर आप अच्छा गहरा और सेटिस्फाइंग नींद ले पा रहे हैं तो.
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद. जी जी, डॉक्टर साहब, आयुर्वेद कहता है कि आहार ही आपकी औषधि है. क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्योंकि हम सिर्फ आहार मुंह से नहीं ले रहे, मन से भी ले रहे हैं कहीं ना कहीं.
1: देखिए, आप जो बोले आहार औषधि है,
0: जी,
1: ये चीज को समझना चाहिए. हम लोग आहार कोई औषध को, मेडिसिन को मन भर के खाता है क्या?
0: नहीं
1: खाता.
0: मैंने इसलिए जिक्र करा, मुंह से नहीं, हम मन से भी ले रहे हैं, कहीं ना कहीं मन भी है हमारा.
1: जितना जरूरत है उतना खाना चाहिए. हम लोगों को टेस्ट अच्छा लगा ज्यादा खा लेते हैं. आज पार्टी करना है ज्यादा खा लेते हैं. तो आहार औषधि ही है. अगर सही मात्रा में संतुलित तरीके से हम लोग आहार खाएंगे तो हमारा शरीर अच्छा रहेगा. जैसे मुझे आयुर्वेद के बारे में ज्यादा कुछ तो पता नहीं है, बट बात पीत एंड ये कुछ है उसी, वो तीन ये में पूरा आयुर्वेद आधारित है. और उसमें मेन चीज है आपका जीआई सिस्टम, खाना आहार. अगर आपका भूख और सोच जाने का तरीका अगर ये सब ठीक है तो आपका ऑलमोस्ट हेल्दी लाइफ है
0: जी,
1: वो अचीव

0: करने के लिए हमें सारी चीज जरूरत है। आप मेंटली स्टेबल नहीं हो, आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, पेट में दर्द रहता है, भूख नहीं लगता, गैस होता रहता है
1: जी,
0: तो उसमें मेंटल स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, मेंटली साउंड होना बहुत जरूरी है। दूसरा आपका खाना
1: जी,
0: किस टाइप का खाना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, किस टाइप पे खा रहे हैं, कितना बार खा रहे हैं, सब चीज डिपेंड करता है आपका खाने पे। अगर खाना ठीक है, आपका पाचन शक्ति ठीक है, आपका सोच ठीक हो रहा है, तो आप हेल्दी हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे आपका डाइट प्लान।
0: मेरा डाइट प्लान है, मैं ट्रेडिशनल खाना ज्यादा खाता हूँ, नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाता।
1: ट्रेडिशनल जो आपने बात करी, आजकल हम जंक फूड की ओर ज्यादा जा रहे हैं, बच्चे जो हैं, और शायद कहीं ना कहीं ये मोटापा और जो इन दिनों जो कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो रही है जिसमें कैंसर भी शामिल है, आप कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे।
0: देखिए, हम लोग ट्रेडिशनल खाना, मतलब मैं यही बोल रहा हूँ जो इंडिया में हमारे फोर फादर्स खाते थे। आजकल अनलकीली, मैं इसको अनलकी बोलूंगा, हम लोग, हमारा जो मोटा अन्न जो है, जो हम लोग पहले खाते थे, ज्वार बाजरा, ये सब खाना ऑलमोस्ट बंद कर दिए हैं। अब मार्केट में जाओगे तो कुछ चुनिंदा जगह पे ही मिलता है ये सब चीजें, प्लेंटिली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, हम लोग आटा खा रहे हैं, ठीक है, गेहूं का आटा खा रहे हैं, बट अभी लोग ज्यादा मैदा तरफ जा रहे हैं, जैसे फास्ट फूड आप बताए, पिज्जा बर्गर हो गया, ये सब चीज वो हाई कैलोरी फूड है एंड लो रेसिड्यू फूड है, मतलब उसमें जो बल्क रिमेनिंग रहता है पेट में ना, जो प्रोटीन की सबसे निकलता है, वो बहुत कम होता है। कैलोरी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, तो खाते ही आपका ब्लड शुगर डिरेंज होता है, ऊपर से आपका स्टूल नहीं बन रहा है, तो पेट में वो चीज जमा रहता है, ये दोनों चीज शरीर के लिए हानिकारक है।
1: हेलो,
2: नमस्कार
0: जी। नमस्कार जी, बोलिए। जी बोलिए।
2: डॉक्टर साहब से पूछना था, आपने नींद की बात की, अभी नींद पर्याप्त लेनी चाहिए
0: जी,
2: पर्याप्त कितनी लेनी चाहिए, कितने टुकड़ों में लेनी चाहिए?
0: दिन में 7 से 8 घंटा अगर आप सो रहे हैं तो बहुत एडिक्वेट है, उससे ज्यादा सोने की जरूरत नहीं है।
2: अच्छा
0: जी,
2: दिन में भी ले सकते हैं,
0: 24 घंटे में कभी भी सो सकते हैं,
2: कभी भी।
0: हाँ, आपका प्रोफेशन के हिसाब से आपको जैसे भी कंफर्टेबल है, बट वो जो नींद ले रहे हैं आप, वो गहरा और सेटिस्फाइंग नींद होना चाहिए।
2: जी,
0: ठीक,
1: बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, एक गीत फिर से सुन लिया जाए।

0: डॉक्टर साहब, सोल्जर्स एंड डॉक्टर्स आर ऑलवेज ऑन ड्यूटी.
1: जी,
0: तो जब ड्यूटी वर्ड, ये शब्द जुड़ता है डॉक्टर्स के साथ, तो एक जिम्मेदारी का एहसास होता है. इसके कितने गहरे मायने हो जाते हैं?
1: किस सेंस में पूछ रहे हो? डॉक्टर्स के लाइफ के सेंस में या
0: पेशेंट? क्योंकि जो जिम्मेदारी शब्द जो जुड़ता है, हमने पहले भी जिक्र करा कि कोई नहीं चाहता कि उसका पेशेंट मर जाए या उसके साथ कोई ऐसी परेशान हो.
1: देखिए, कोई भी डॉक्टर कोई पेशेंट देखता है तो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है जब तक वो ठीक होके ना जाए, चाहे वो घर में भी हो. हम लोगों को ये भी अधिकार नहीं है कि हम अपना मोबाइल को स्विच ऑफ करके बैठ जाएं, क्योंकि हमें ये लगता है यार ये मरीज को इलाज किया था, कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, फोन करेगा, परेशान हो होता है, तो हम लोग वो भी नहीं कर पाते. तो ये जो 24/7 का जो टेंशन है मरीज के लिए, आप माने या नहीं माने, सारे डॉक्टर में होता है. कुछ थोड़ा सा कैजुअल होते होंगे, मना नहीं कर रहा हूँ, कुछ रिएक्शन भी गलत देते होंगे, क्योंकि मरीज भी बिना कारण परेशान करते हैं तो कभी कभी चिड़के भी बोलते होंगे. मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ वो चीज़, लेकिन उनको भी समझना चाहिए कि हम लोगों का लाइफ में कितना स्ट्रेस होता है पेशेंट को लेके. घर का तो प्रॉब्लम सबके साथ होते हैं, पेशेंट्स को लेते हम लोग कोई प्रोग्राम करते हैं तो हमें 15 दिन पहले प्लानिंग करना होता है. वो मरीज को हमें इलाज करना था, वो क्या करना है, या मैं नहीं रहूँगा तो मेरा एब्सेंट में उसका कौन केयर करेगा. चाहे वो हमारे पास हो या नहीं हो, हमें सब किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे के जाना होता. ये जो स्ट्रेस है ये बहुत बड़ा स्ट्रेस है.
0: जी,
1: आप, मैं जैसे पहले ही बोला था, मेंटल वेलबींग होना बहुत जरूरी है आपका लाइफ ठीक रखने के लिए. बट ये जो स्ट्रेस है ये अनअवॉइडेबल स्ट्रेस है और हर एक डॉक्टर के पास होता है. आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर एवरेज लाइफ स्पान देखें तो डॉक्टर्स का लाइफ आम इंसान से 10 साल कम होता है. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आ चुके हैं, और उसका कारण एक ही है, स्ट्रेस. जैसे मैं सर्जन हूँ, हम लोग सर्जरी करते हैं, चाहे वो 1 घंटा का सर्जरी हो चाहे 10 घंटे का सर्जरी हो, टेम्परेचर ओटी के अंदर 18-20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. बट जब सर्जरी खत्म करके हम गाउन उतारते हैं, हमारा पूरा कपड़ा पसीनों से लथपथ होता है. ऐसा क्यों होता है? जब हमारे साथ जो असिस्टेंट रहते हैं उनको कंबल जरूरत होती है, लेकिन हम लोगों को पसीना आता रहता है. ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं ये इतना ज्यादा होते हैं कि हमारा पसीना खत्म नहीं,
0: क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क में भी ये रहता है कि इस पेशेंट की जान बचनी ही चाहिए.
1: एग्जैक्टली, ये हर एक, मुझे नहीं पता, शायद ये हमारा एजुकेशन में है, जिस दिन हम लोग घुसते ना हमारा दिमाग में घुस ही जाता.
0: शायद वो शपथ जो दिलाई जाती है उसके बारे में भी जानना चाहेंगे. कॉलर हमसे जुड़ना चाह रहे हैं. हेलो,
2: नमस्कार.
0: नमस्कार, प्रश्न
2: कीजिए.
1: जी बोलिए.
2: चिकित्सक दिवस के बारे में मैं कहना चाह रहा हूँ.
1: जी सर,
2: वास्तव में स्वयं डॉक्टर को भगवान मानता हूँ.
1: आप डॉक्टरों को इंसान ही रहने दे, भगवान मत मानिए.
2: अरे नहीं, मैं मानता हूँ और मत, और वो बात भी सही है, तो ही मानते हैं. जैसे मान लो जितना संवेदनशील और भावना लगाओ डॉक्टर से होता है ना, परिजनों का और मरीज का, जितना प्रधानमंत्री से होता है, इतना मुख्यमंत्री से होता है, इतना कलेक्टर से होता है.
1: नहीं नहीं, आप सुनिए, अगर डॉक्टर भगवान होता ना, कभी किसी को तकलीफ आने ही नहीं देता, क्यों? भगवान के पास ही पावर है किसी को जिंदा रखना है, किसी को मरना है. हम लोग कोशिश कर सकते हैं, जो हम लोग करते हैं
2: वो आप कोशिश ही है.
1: जी,
2: जैसे मान लो उदाहरण के लिए किसी का एक बच्चा है, सख्त बीमार है, आज डॉक्टर साहब ने उठे कर दिया, तो वो लोग कितने कितने खुश होंगे, वो कितने उनके कितनी ये होगी, मेरा बच्चा बचा लेना डॉक्टर साहब ने.
1: जी,
2: तो बिल्कुल सही बात है ये, भगवान ही है डॉक्टर. तो
0: जी, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए.
2: ठीक है.
0: जी जी, डॉक्टर साहब, जिस प्रोफेशन में आप हैं, किस तरह के चैलेंजेस सभी डॉक्टर्स को,
1: एक्सपेक्टेशन होता है ना, जैसे भी ये जो एक्सपेक्टेशन होता है ना, ये डॉक्टर्स के ऊपर इतना प्रेशर माउंट करता है.
0: जी, सबसे बड़ा चैलेंज कि एक्सपेक्टेशन है पेशेंट को अपने डॉक्टर से.
1: कोई नहीं चाहता अपना मरीज तकलीफ पाए, कोई डॉक्टर भी नहीं चाहता, लेकिन अटेंडेंट जो चाहते हैं, मेरा मरीज डॉक्टर के पास पहुंच गया तो मरीज ठीक ही होना चाहिए, ये उनका एक्सपेक्टेशन होता है, उसी के लिए ही प्रॉब्लम शुरू होती है.
0: जी जी, एक मतलब सिली सा क्वेश्चन, आप शायद आपको ऐसा लगे, एक प्रश्न पूछना चाहेंगे, क्या डॉक्टर्स भी बीमार होते हैं? आपने कहा मानसिक तनाव तो होता है.

0: बीमारी इंसान है डॉक्टर भी
1: जी,
0: उनका भी शरीर है, ये शरीर कभी भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि अगर हम लोग एक हेल्दी ह्यूमन जो नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा है, डॉक्टर्स का लाइफ लीड कर रहा है, तो डॉक्टर ज्यादा बीमार रहते हैं
1: जी,
0: वो आपको पता नहीं चलता, वो अलग बात है। ज्यादा बीमार रहते हैं फिजिकली भी मेंटली भी, और इसी के लिए ही शायद उनका लाइफ स्पन कम है, 10 साल कम है एवरेज।
1: तो इस मुखौटे के पीछे जो हम सबकी देखभाल कर रहे हैं, जो समाज की देखभाल कर रहे हैं, जीवन दे रहे हैं, तो जो जीवन प्रदाता है हमारे डॉक्टर्स, इनकी देखभाल कौन कर रहे हैं?
0: इनकी देखभाल मरीज ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता।
1: बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या एक्सपेक्टेशन होती है एक डॉक्टर की अपने पेशेंट से?
0: डॉक्टर्स की यही एक्सपेक्टेशन होता है कि उसको काम करने की फ्रीडम दीजिए
1: जी,
0: वो जो बोल रहा है सुनिए, कोई गलत नहीं चाहेगा। आप अननेसेसरी उनको डिस्टर्ब करके, उनको प्रेशर माउंट करके अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अगर आप उसका हर एक चीज का कुछ ना कुछ एक्शन होता है तो कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन को एक्सेप्ट कीजिए। कोई भी डॉक्टर कुछ भी काम करता है पहले आपको रिएक्शन के बारे में समझाता है, जो ग्रेव रिएक्शंस होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं, समझाता है। वो उसको आप समझिए और उसको एक्सेप्ट कीजिए। हम लोग कभी कोई नहीं चाहता किसी को साइड इफेक्ट हो, लेकिन कुछ हो गया तो उसको एक्सेप्ट करने का भी हिम्मत रखिए। अगर उतना भी करें तो डॉक्टर बहुत हद तक संभल जाएंगे
1: जी। डॉक्टर साहब, आधुनिक चिकित्सा तकनीक हम देख रहे हैं कि टेलीमेडिसिन है, AI है, तो इससे डॉक्टर्स का काम आसान हुआ है या कॉम्प्लिकेटेड हो गया है?
0: कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ
1: जी,
0: डॉक्टर्स की सेवाएं जहां पहुंच नहीं रहा था वहां तक पहुंचने लग गई। ये हमारा टेक्नोलॉजी का इवॉल्वमेंट है, इम्प्रूवमेंट है, जिसके वजह से कोई मान लो एक्सपर्ट है कोई पर्टिकुलर डिजीज में जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम लोग टेलीमेडिसिन से या इस टेली सर्जरी से उसका दूर बैठे हुए उसी का ट्रीटमेंट का फायदा हम लोग यहाँ ले सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अवेलेबिलिटी के वजह से हर एक मरीज उस सुविधा का आनंद ले पा रहे हैं
1: जी, जी
0: डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एडवांटेज है।
1: हेलो जी, नमस्कार
2: जी। मैं गांव डेयर तहसील जिला पाटन गुजरात से बात कर रहा हूँ
0: जी, बोलिए।
2: पहले तो धन्यवाद डॉक्टर देश के लिए, आपको और हमारे अनाउंसर दीदी को
1: जी,
0: आपको भी धन्यवाद सर।
2: सर मेरा प्रश्न ये है कि अगर किसी मरीज को मानसिक रोग है तो बिना दवाई के मानसिक रोग मिट सकता है सर? एक नॉर्मली से प्रश्न है, ऐसा कुछ नहीं
1: जी। बहुत अच्छा प्रश्न है,
0: बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, मानसिक बीमारी जो है ना बहुत हद तक हमारा सराउंडिंग से होता है। तो एक तो साइकोथेरेपी होता है, एक साइकोलॉजी ट्रीटमेंट होता है। बहुत सारे मानसिक बीमारी को हम लोग काउंसलिंग के जरिए भी ठीक कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सारे साइकेट्रिक बीमारी को मेडिसिन ही जरूरत है, बहुत काउंसलिंग की वजह से भी ठीक हो सकते हैं। तो मेडिसिन अकेला नहीं है, सोशल बिहेवियर हुआ, काउंसलिंग हुआ, ये सब करने से मरीज बहुत हद तक ठीक हो जाते हैं
1: जी। और डॉक्टर साहब, चिकित्सक का जो क्षेत्र है ये एक ऐसा पेशा है जिसमें अक्सर डॉक्टर्स को स्वयं को अपने जीवन को खतरे में डालकर दूसरों का जीवन बचाना पड़ता है। हमने कोविड में ये स्थिति देखी, अभी ऑपरेशन सिंदूर चला तो हमने देखा कि हमारे कोटा शहर के कितने सारे डॉक्टर्स को दूसरी जगह पर भेजा गया,
0: आर्मी फ्रंट में।
1: बिल्कुल। तो जब डॉक्टर्स को इमरजेंसी ड्यूटीज करनी पड़ती है और उनको हॉस्पिटल को या अपने ही कार्य क्षेत्र को अपना घर बनाना पड़ता है, तो किस तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याएं वो झेलते हैं? मानसिक तनाव तो है,
0: शारीरिक भी है। आप अपना कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो काम करने के लिए, डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होता है, आपका डेली जो रूटीन से वो डिस्टर्ब हो जाता है। बट उस समय हम लोगों को हमारा डेली रूटीन ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होता, हमारा स्ट्रेसफुल होता है सामने कोई मरीज है या कोई शोल्डर इंजोर्ड होके आया है, ब्लीडिंग होके आया है, तो हमारा दिमाग वहीं पे रहता है। हम उस समय अपना जीवन शैली, अपना दिनचर्या को ऑलमोस्ट भूल ही जाते हैं। जैसे कोविड में ही मैं देखा हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर्स अपना परवाह किए बिना कोविड मरीजों को सेवा कर रहे थे, जबकि अपनों ने, रिश्तेदारों ने दूरी बना ली, लेकिन डॉक्टर चाहे वो पीपी किट पहन के परेशान होता रहे लेकिन उनका इलाज किया है। तो ये सब चीजें हैं, मुझे नहीं पता, शायद सारे डॉक्टर के अंदर अपने आप डेवलप हो ही जाता है मरीज का दुख देख के, मोस्ट प्रोबेबली यही होता है।
1: अभी बीच में एक शपथ की बात करी थी कि एक शपथ दिलाई

0: जाती है डॉक्टर
1: हाँ,
0: से, क्या
1: हिप्पोक्रेटिस ओथ
0: क्या होती है वो शपथ?
1: उसमें यही होता है कि हम लोग, उसका जेस्ट यही है कि हम लोग अपना प्रोफेशन के प्रति ट्रूथ रहे, ट्रूथफुल रहे
0: जी।
1: प्रोफेशन के साथ साथ हमारा प्रोफेशनल्स को कलिक के साथ, जो को डॉक्टर्स हैं उनके साथ हमारे बिहेवियर क्या होना चाहिए, हमारा पेशेंट के साथ क्या बिहेवियर होना चाहिए और हमारा एम क्या होना चाहिए, उसी के ऊपर ही हम लोग ओथ लेते हैं।
0: हेलो हेलो
2: जी,
0: नमस्कार।
2: गुड मॉर्निंग डॉक्टर।
1: गुड मॉर्निंग सर।
2: बहुत बहुत बधाई हो आपको, हार्दिक शुभकामनाएं डॉक्टर्स डे की।
1: आपको भी सर।
2: एक पॉइंट था मेरा, सोचना ये है कि आपने दो बार ये कहा, बहुत अच्छी बात है कि डॉक्टर्स को इंसान ही रहने दें, ना भगवान बनाए ना डाकू बनाए।
1: जी जी।
2: अब मैं हमेशा अखबारों में पढ़ता हूँ कि किसी भी हॉस्पिटल में परिजन अपने पेशेंट की डेथ होने के बाद डॉक्टर्स के साथ बड़ा मिसबिहेव करते हैं।
1: जी
0: बिल्कुल।
2: तो अब उसमें क्या होता है कि मैं और आप सब समझते हैं, कोई भी मैच्योर्ड आदमी समझ सकता है कि किसी का परिजन गया है तो वो एक हताशा और गुस्से में होता है।
1: जी जी सही बात।
2: और उसको सामने उसको टारगेट कर देता है जिसने अपने हिसाब से पूरा काम किया होगा। कोई भी डॉक्टर कभी लापरवाही नहीं करता, क्योंकि उसके डीएनए में ये घुस चुका होता है कि यार मेरे फैमिली में कई डॉक्टर्स हैं, वो सारे फैमिली के प्रोग्राम और अपने बच्चों की और वाइफ की सब चीज को सैक्रिफाइस करके अपनी ड्यूटी पे पहुंचते हैं,
0: अटेंड
2: करते हैं। तो ये हम सारे सोशल समाज को ये समझना चाहिए कि जब अपना पेशेंट गुजर जाए तो डॉक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, वो तो ईश्वर की व्यवस्था है।
1: जी सर।
2: तो मेरा ये सारे सुनने वाले श्रोताओं से ये निवेदन है कि कभी भी कोई अनफॉर्चुनेटली अपना परिजन चला जाए हॉस्पिटल में तो अपन को धैर्य रखना चाहिए और कभी भी ये इस तरह का नहीं करना चाहिए। और इसके पीछे क्या है, बड़ा रैकेट है इसके पीछे।
0: जी जी, जी बहुत
2: संबंधित एजेंसी कुछ कंपनसेशन दे।
0: क्षमा करें हम आपको बीच में ही रोक रहे हैं, समय कम है हमारे पास।
2: कांग्रेचुलेशन,
1: धन्यवाद। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बड़ा मैसेज था, बहुत धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब आपने कहा कि भगवान नहीं बने दे, उस श्रोता ने भी यही कहा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन डॉक्टर्स कहीं ना कहीं रियल लाइफ हीरो, रियल लाइफ नहीं है। और ये जो रियल लाइफ हीरोज हैं, ये अपने परिवार से क्या सपोर्ट चाहते हैं, कैसा सपोर्ट मिलना चाहिए और कितना मिलता है
1: डॉक्टर्स को?
0: जी
1: मिलता है, बहुत हद तक मिलता है। बट हाँ, बहुत टाइम पे आपका पेरेंट्स, आपके स्पाउस हुआ, बच्चे हुआ, आपसे जो एक्सपेक्टेशन करते हैं मोस्टली टाइम बाउंड होता है, हमें ये वेकेशन में जाना है, वो नहीं है, लास्ट मोमेंट में कैंसिल होता है, तो उनका इरिटेशन बढ़ता है। बट ठीक है, सब एक्सेप्ट करते हैं, समझ जाते हैं।
0: और आखिरी प्रश्न इस कार्यक्रम का, जब भी कोई पेशेंट अपने डॉक्टर को थैंक यू कहता है तो इसकी हीलिंग पावर एक डॉक्टर के लिए कितनी होती है?
1: बहुत बड़ा होती है। हमें वो फी दे नहीं दे, वो जो थैंक यू बोल के ग्रेटिट्यूड दिखाता है उसी से हमारा तृप्त हो जाता है।
0: डॉक्टर साहब आपको भी हम यहाँ पे थैंक यू कहेंगे। श्रोताओं, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर आकाशवाणी परिवार सभी डॉक्टर्स को उनकी निष्काम सेवा भाव, उनके समर्पण और उनके त्याग के लिए थैंक यू कहता है। हमारे डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और कई पहलुओं पर आज हमने बात करी जिन पर बात करनी चाहिए थी, जो जरूरी थी आज के परिप्रेक्ष्य में। और इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमें तकनीकी सहयोग मिला रमेश वर्मा और मनोज भारद्वाज का, संयोजन हिमांशु नामा का। और अब मेरी ना डॉक्टर साहब के साथ इस कार्यक्रम से आप सभी से अनुमति लेती हूं। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: और अब समय है हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का।
3: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में। दो दिन के सम्मेलन का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुभारंभ करेंगे। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में आज से लागू। केंद्र सरकार ने संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित की। दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसे में 8 लोगों की मृत्यु, 20 से अधिक लोग घायल। और पांचना बांध पानी बंटवारे को लेकर पिछले 20 वर्षों से चला आ रहा विवाद सुलझा। संबंधित पक्षों के बीच सहमति बनी।

समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित होगा। ये सम्मेलन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाले इस दो दिन के सम्मेलन की थीम विकसित भारत 2047 AI इनेबल्ड डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस रखी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर NCEG प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, साथ ही राज्य सरकार के विभिन्न नवाचारों की लॉन्चिंग होगी। सम्मेलन के दूसरे दिन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सम्मेलन के बारे में और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।

0: राज्य सरकार के विभिन्न नवाचारों की लॉन्चिंग होगी। सम्मेलन के दूसरे दिन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सम्मेलन के बारे में और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे, वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के श्रमिक रोजगार गारंटी देने वाला अधिनियम ग्रामीण भारत को सशक्त बनाएगा। केंद्र सरकार ने वीबीजी रामजी अधिनियम के तहत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय से जारी अधिसूचना के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पारिश्रमिक दर बढ़ा दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि पहली बार 300 रुपए प्रतिदिन का अंतरिम आधार पारिश्रमिक दर लागू किया गया है और सुनिश्चित किया गया है कि इस कार्यक्रम के तहत कोई भी अधिसूचित दर इससे कम नहीं हो। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर वीबीजी रामजी के तहत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार मजदूरी दर में 10% से अधिक की औसत बढ़ोतरी हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की समृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। वीबीजी रामजी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आज से काम का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। दोपहर 1 से 2 बजे तक विश्राम काल रहेगा। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल यानी मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजार में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक, पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। इस बीच तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में 183.50 रुपए की कमी की है। भारतीय तेल निगम के अनुसार संशोधित दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमतों में कटौती के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत घटकर 2,930 रुपए हो गई है। इस निर्णय से रेस्टोरेंट, ढाबों, होटलों और खाद्य तथा पेय पदार्थों के कारोबार से जुड़े व्यवसायों को राहत मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर धनावड़ा के पास आज अलसुबह एक सड़क हादसे में 8 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेंद्र फौजदार ने आकाशवाणी को बताया कि यह दुर्घटना एक स्लीपर बस के ट्रक से टकरा जाने के बाद उसमें आग लगने से हुई। आग के बाद कई यात्री जलती हुई बस में फंस गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायल यात्रियों में से अधिकांश मध्य प्रदेश और ऋषिकेश के हैं।
2: हरिद्वार से इंदौर जा रही थी बस, और जाते टाइम इनका कोई ट्रोला से एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है ये तो इन्वेस्टिगेशन बाद मालूम पड़ेगा। 35-36 सवारी होनी चाहिए इसमें, इसमें 22 इंजर्ड हुए हैं और 8 की कैजुअल्टी है। ये 2:30 से 3 बजे के बीच का है, सुबह रात को मतलब, और जो इंजर्ड थे उनको प्राप्त

0: में उपचार चल रहा है उनका, वो ठीक है, अब ज्यादा सीरियस नहीं है, पर जो कैजुअलिटी हुई है वो काफी दुखदायी है। हो सकता है ट्रोला से टकराई हो या ड्राइवर को झपकी आई हो, ये तो अभी फाइनली इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मालूम पड़ेगा।
1: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सड़क हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। करौली जिले के पांचना बांध के पानी बंटवारे को लेकर पिछले 20 वर्षों से चला आ रहा विवाद सुलझ गया है। जयपुर में हुई बैठक में दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने के बाद लिखित समझौता हुआ। बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म उपस्थित रहे। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि विभाग 7 दिन के भीतर पानी छोड़े जाने की तारीख तय करेगा, इसके बाद नहरी तंत्र की जांच के लिए जल प्रवाह शुरू किया जाएगा। हमारी करौली संवाददाता ने बताया कि 2100 एमसीएफटी क्षमता वाले पांचना बांध से लगभग 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। इस समझौते से क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।
2: समझौते के तहत गुडला क्षेत्र के 21 राजस्व गांवों को लिफ्ट सिंचाई योजना के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि पांचना बांध के कमांड क्षेत्र की नहरों में भी जल प्रवाह शुरू होगा। जल संसाधन विभाग 7 दिन के भीतर पानी छोड़ने की तिथि तय करेगा, जिसके बाद नहरी तंत्र की तकनीकी जांच और टेस्टिंग शुरू की जाएगी। सरकार ने नहरों की मरम्मत के कार्य को भी गति देने का भरोसा दिलाया है। गौरतलब है कि कमांड क्षेत्र के किसान नहरों में पानी छोड़ने और कैचमेंट क्षेत्र के किसान लिफ्ट सिंचाई योजना के माध्यम से अपने गाँव को पानी उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आंदोलनरत थे। दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने से जिले के हजारों किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। बाकी वैरी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
1: और अब मौसम। हवाओं में नमी के प्रभाव से प्रदेश भर में उमस भरी गर्मी का असर है। दिन के समय कड़ी धूप के साथ उमस भी लोगों को प्रभावित कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार ज्यादातर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। 43.6 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। विभाग ने अगले 4-5 दिनों में दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में। 2 दिन के सम्मेलन का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुभारंभ करेंगे। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में आज से लागू। केंद्र सरकार ने संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित की। दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में 8 लोगों की मृत्यु, 20 से अधिक लोग घायल। और पांचना बांध पानी बंटवारे को लेकर पिछले 20 वर्षों से चला आ रहा विवाद सुलझा, संबंधित पक्षों के बीच सहमति बनी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: FM 102.106 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। सुबह के 9:10 हुए हैं। डीजे सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का आगाज कर रहे हैं फिल्म शिकारी के इस गीत के साथ। आवाज कुमार सानू की है, धुन आदेश श्रीवास्तव की और गीत के बोल समीर की।

0: श्रोताओ एक आवश्यक सूचना सुनिए। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 31 जुलाई 2026 को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देता है। इसके लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जमा की जाएंगी। पोर्टल का पता है https://awards.gov.in। पोर्टल का पता पुनः सुने https://awards.gov.in। इसके माध्यम से ऑनलाइन ही ये नामांकन और अनुशंसाएं जमा की जानी है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई सन 2026। सूचना समाप्त हुई।
1: फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत। आवाजें लता मंगेशकर और उदित नारायण की हैं, गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और ये धुन है जतिन ललित की।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। सुबह के 9:30 हुए हैं। अब बहनों के लिए कार्यक्रम होगा महिला जगत।

सखियों स्वागत है आप सभी का आपके हमारे हम सब के मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत में। मैं हूं आपकी रेडियो सखी अर्चना, स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार। सखियों कैसी हैं आप? जीवन में किसी भी प्रकार की कोई व्याधि हो, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए हम सबसे पहले किसकी ओर देखते हैं? जी हाँ, वो है डॉक्टर, जिन्हें धरती पर भगवान का दर्जा देते हैं। हमें यही ख्याल आता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे और बीमारी का इलाज मिल जाएगा, और यही विश्वास कि जो डॉक्टर हैं वो हमारे भगवान की तरह हैं, जैसे ही उनके पास पहुंचेंगे हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, डॉक्टर के इस पेशे को किसी भी अन्य पेशे से अलग करता है।

इसकी महत्ता को स्थापित करने के लिए हर साल 1 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। ये दिन समाज में डॉक्टरों के अमूल्य योगदान, निस्वार्थ सेवा और उनके समर्पण का सम्मान करने के लिए समर्पित है। 1 जुलाई का दिन भारत के महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि दोनों होती है और इसी के ऊपर इस दिन को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान को याद करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1991 से हर साल इस दिन को डॉक्टर दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। डॉक्टर रॉय को 1961 में भारत के सर्वोच्च नागरिक का सम्मान भी प्राप्त है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। सखियों, डॉक्टर हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं और जैसे ही हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं हमें कितना सुकून महसूस होता है कि अब हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, बीमारी का इलाज हमें मिल जाएगा। और जैसे ही डॉक्टर्स के लिए के मुंह से निकलता है कि नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल छोटी बात है, कोई छोटी सी समस्या है, आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं है, हमें बेहद सुकून देता है और अब लगता है समस्या खत्म। जी हाँ, वही डॉक्टर है और उनका सम्मान कीजिए, इस पेशे का सम्मान कीजिए क्योंकि वो हमें हमारी समस्याओं से निजात दिलाते हैं। सखियों, ये है मनोरंजन और जानकारियों का खजाना, आपका अपना कार्यक्रम महिला जगत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: आइए सखियों सुनते हैं एक भेंटवार्ता। भेंटवार्ता का विषय है पारंपरिक औषधीय पादप और उनका महत्व, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शालिनी माहेश्वरी। सखियों, आज हम बात करेंगे पारंपरिक औषधीय पौधों के बारे में और क्या है इनका महत्व जानेंगे। डॉक्टर शालिनी, स्वागत है आपका कार्यक्रम महिला जगत में।
1: धन्यवाद।
0: तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि पारंपरिक औषधीय पादप किन्हें कहा जाता है।
1: देखिए, पारंपरिक औषधीय पौधे वो पौधे हैं जो स्थानीय तौर पर हमारे आसपास प्रकृति ने हमें दिए थे और हमारे पूर्वज इनका महत्व अच्छे तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने इसके किसी न किसी रूप को, फूल, पत्ती, जड़ या तना, किसी न किसी रूप में हमारे भोजन में शामिल किया था या हमारे आहार में शामिल किया था। तो पारंपरिक औषधीय पौधे यही पौधे हैं जो हमारे आसपास सामान्य तौर पर हमें दिखाई देते हैं।
0: क्या पारंपरिक औषधीय पौधे क्षेत्रानुसार अलग अलग होते हैं?
1: जी हाँ, बिल्कुल, अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार, जलवायु के अनुसार पौधे होते हैं, और ये प्रकृति का ऐसा वरदान है जो हमें मिलता है, क्योंकि जिस इलाके में जिस तरीके की वनस्पति होती है, आप को ये जानकर आश्चर्य होगा कि उसमें उस इलाके में होने वाली बीमारियों से लड़ने की ताकत मौजूद होती है। तो इसे हम विज्ञान की भाषा में ऐसा कहते हैं कि इट इज अ साइंटिफिक रिस्पॉन्स ऑफ नेचुरल स्टिम्युलाई। मतलब जितने भी ये पौधे होते हैं उनमें आपके शरीर में जो बीमारियां जो उस एनवायरमेंट की वजह से उत्पन्न हो सकती हैं उनसे लड़ने की ताकत इन पौधों में होती है।
0: सखियों, हमारे आसपास बहुत तरह के पौधे होते हैं जिनका नाम हम जानते भी हैं और बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनका नाम हम जानते तक नहीं हैं। तो हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिनका औषधीय महत्व है और जो हमें जानना ही चाहिए।
1: जी हाँ, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो आपके आसपास उगते हैं। जैसा आपने कहा कि कुछ आसपास उगते हैं और कुछ को हम नहीं पहचानते हैं। तो देखिए, जैसे आपके घरों में आप सामान्य तौर पर तुलसी देखते हैं, अजवाइन देखते हैं, घर के आसपास गुड़हल लगा हुआ होता है, कहीं ना कहीं आपको आंवला लगा हुआ दिखता है, या फिर आंवले के फल आपको सामान्य तौर पर बाजार में उपलब्ध होते हैं। इसी तरीके से धनिया, दाना मेथी, ये सब चीजें वो हैं जो सामान्य तौर पर आप देखते हैं, और इनके गहन औषधीय गुण हैं जो कि हमारे खाने में, हमारा जो परंपरागत भोजन था उसमें इस तरीके से निहित थे कि वो आपको अपने आप उनके सारे के सारे लाभ प्राप्त होते रहते थे।
0: सखियों, बहुत सारे मसाले हैं, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनका हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद सिर्फ इस्तेमाल करना है इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके औषधीय गुणों से हम अनभिज्ञ हैं। तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि दैनिक जीवन में हम कौन कौन से पौधे रोज इस्तेमाल करते हैं और जिनका औषधीय महत्व बहुत ज्यादा है।
1: देखिये, जैसे तुलसी, हल्दी, आपकी मसालेदानी में जितने भी मसाले हैं उनमें से किसी भी मसाले का गुण किसी दूसरे से कम नहीं है। बहुत सारे गुणवर्धक पौधों के उत्पाद आप अपनी रसोई में हर रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके औषधीय गुणों की उपयोगिता के बारे में अगर आप थोड़ी भी जानकारी रखें और उन्हें उनके अनुकूल उपयोग करें तो आप उसके स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त कर पाएंगे। इसी तरह से आपने एक और पूछा था कि कुछ पौधे जिन्हें हम पहचानते नहीं हैं। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिन्हें शायद आप पहचानते नहीं हैं लेकिन जिनके औषधीय गुण बहुत हैं। जैसे गिलोय, गिलोय आप में से बहुत लोग पहचानते होंगे, लेकिन गिलोय को अमृता कहा जाता है, मतलब अमृत तुल्य औषधि। और मेरा ऐसा मानना है कि हर घर में ये पौधे होने ही चाहिए। अगर मैं ऐसे पांच पौधे कहूं आपसे तो मेरा ख्याल है तुलसी, मीठा नीम,

0: गिलोय, पुदीना और गुड़हल ये मेरे हिसाब से हर घर में होने चाहिए क्योंकि इनकी औषधीय उपयोगिता बहुत अधिक है। इसी तरीके से हम में से बहुत लोग अड़ूसा करके एक पौधा होता है जो सामान्य तौर पर यूं ही जंगली अवस्था में पाया जाता है। इसी तरीके से निरगुंडी होता है, गंभारी होता है, गांगड़ी होता है, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो आज भी ट्राइबल एरियाज में जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहां पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन हम क्योंकि उन पौधों को पहचानते नहीं है, उनके गुणों से अनभिज्ञ हैं, हम उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं।
1: सखियों, आपको डॉक्टर साहब की बात सुनकर ऐसा नहीं लग रहा कि हमारे पूर्वजों ने हमारे खान पान में जो जो शामिल किए थे कहीं ना कहीं उनका औषधीय महत्व है? क्योंकि डॉक्टर साहिबा ने कहा हल्दी, हम हल्दी रोज इस्तेमाल करते हैं लेकिन शायद औषधि के रूप में सोचकर नहीं, सिर्फ एक मसाला समझकर हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, हम बात कर रहे हैं पारंपरिक औषधियों के बारे में और आप जैसे कि कह रही हैं कि हमारे पूर्वज इनका इस्तेमाल किया करते थे, तो क्या आप हमारी सखियों को जानकारी देंगी कि ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जो हम रोज इस्तेमाल कर अपनी बीमारियों को रोक सकते हैं?
0: जी हाँ, हमें हर रोज किसी न किसी रूप में आंवला या नींबू का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए क्योंकि हम सब जानते हैं ये विटामिन सी का बहुत अच्छा भंडार है और विटामिन सी हमें बीमारियों से लड़ने में इम्यूनिटी प्रदान करता है। तो आसपास जो पॉल्यूशन है आप उनको नहीं रोक सकते हैं, आप सारे पॉल्यूशन को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने जीवन में इन खाद्य पदार्थों को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम ये कर सकते हैं। इसी तरीके से एक त्रिफला होता है जो बाजार में हमें पाउडर मिलता है जिसमें आंवला, हरड़ और बहेड़ा होता है, उसका दैनिक जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरीके से तिल है, सहजन है, इनके उत्पादों का इस्तेमाल आप हर रोज करिए। अदरक का इस्तेमाल आप रोज करिए, अदरक एक इम्यूनिटी बूस्टर है जिसका नियमित इस्तेमाल आपके हृदय को, आपको बीमारियों से लड़ने के लिए बहुत ताकत दे सकता है।
1: डॉक्टर साहब, हमारे पूर्वज तो इन सब का इस्तेमाल करते ही रहे हैं और जैसे कि हम कहते हैं ऋतु के अनुसार भोजन करने की परंपरा हमारे यहाँ रही है।
0: हमारे यहाँ तो ये कहा जाता था कि आहार ही औषधि है। आप देखिए हमारा जो सिस्टम था, जो हमारा परंपरागत खान पान था, वो जोर ही इसी बात पर देता था कि आप बीमार ही ना पड़े, संभव है।
1: डॉक्टर साहिबा, आपने एक तरह से ये बात कही कि हमारा खान पान ही हमारी बीमारियों की वजह बन रहा है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो पारंपरिक औषधीय पादपों पर क्या हम इतना यकीन कर सकते हैं कि खांसी बुखार जैसी छोटी बीमारी से लेकर कैंसर जैसी घातक रोग तक ये पौधे हमारी मदद कर सकते हैं?
0: जी हाँ, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि हर बीमारी का इलाज मैं किसी पत्ती या किसी फूल में बता सकती हूँ, लेकिन यकीनन अगर आप शारीरिक श्रम और परंपरागत खाने को अपनाएं तो काफी हद तक हम इन सारी बीमारियों से लड़ सकते हैं। देखिए जैसा आपने कहा कैंसर, कैंसर एक दिन में नहीं होता है, कैंसर आपके वर्षों के जो आपका सिस्टम अंदर जो इंटरनल सिस्टम है उसकी वर्षों की डिग्रेडेशन का नतीजा होता है, वो एक दिन में नहीं होता है। तो आप अपने अंदर इस तरीके की इम्यूनिटी पैदा कर सकते हैं जिससे आप इन बाह्य कारकों से लड़ सकें और अपने आप को स्वस्थ रख सकें। जैसा आपने कैंसर की बात की तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि दो ऐसे परंपरागत हमारे औषधीय पौधे हैं जिनका इस्तेमाल हमारे पूर्वज बहुतायत से किया करते थे। पहला है सदाबहार, जो सामान्य रूप से हर घर में पाया जाता है और हम सिर्फ उसे एक सजावटी फूल समझते हैं, लेकिन जो गुलाबी रंग का सदाबहार का पौधा होता है, कैथेरेंथस रोजस उसे हम कहते हैं, उसकी कैंसर में उपयोगिता शोध के द्वारा प्रमाणित की जा चुकी है। इसी तरह से एक और पौधा जो आपके बिल्कुल आसपास हर जगह मिलता है वो है शीशम। शीशम के पौधे की पत्तियों का कैंसर में उपयोग शोध द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है। हमारे पूर्वज इन फूल पत्तों का इस्तेमाल नियमित रूप से किया करते थे, इसलिए वो इस तरीके की बीमारियों से लड़ने की एक इम्यूनिटी अपने अंदर रखते थे। तो ऐसा कहा जा सकता है कि छोटी मोटी बीमारियां आपके शरीर में अगर होंगी तो ठीक हो सकती हैं इन औषधीय पौधों के द्वारा, और अगर नहीं है तो वो आने वाले समय में ना हो उसके लिए आपको इससे पूरी तरह से एक जो इम्यूनिटी है वो मिल सकती है।
1: सखियों, आपने बातचीत सुनी है और जहां तक मैं निष्कर्ष पर पहुंची हूं, डॉक्टर साहिबा यही हमसे कहना चाह रही हैं कि हमें अपने खान पान और रहन सहन दोनों पर ध्यान देना होगा। डॉक्टर साहिबा, ये जो पारंपरिक औषधीय पादप जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो अगर

0: हाड़ौती क्षेत्र की हम बात करें या जो हमारी सखियां आज हमारा कार्यक्रम सुनना चाहती हैं, अगर वो ये चाहती हैं कि उनके घर में भी वो कुछ औषधीय पादप उगा लें जिनसे कि उनका परिवार सेहतमंद रहे, तो किन पौधों पर आप जोर देंगी और कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो घरेलू रोज हम इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं?
1: देखिए, इस तरीके के सारे पौधों में सबसे पहले तुलसी, जो सामान्य रूप से हर घर में उगती है, मीठा नीम जो आप अक्सर अपने रसोई में इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से गुड़हल, मैं कहूंगी कि एक ऐसा मुख्य औषधीय पौधा है जो आपके घर में होना चाहिए, क्योंकि गुड़हल के फूल एंटी डायबिटिक होते हैं। गुड़हल के फूल आपकी स्किन केयर, आपकी जो हेयर्स हैं उनके लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी के अलावा एक जो मुख्य औषधीय पौधा है जो हर घर में होना चाहिए, तो वो है गिलॉय। गिलॉय हम में से हर एक के घर में होना चाहिए, क्योंकि गिलॉय ना केवल इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, इसके जो औषधीय गुण हैं वो बहुत अधिक हैं। और हम छोटी मोटी, जैसा कि अभी आपने एक पहले प्रश्न में पूछा था कि क्या सर्दी जुखाम जैसी छोटी बीमारियों के लिए, जी हाँ, आप सर्दी जुखाम और बुखार के लिए इसे बिना किसी हिचकिचाहट के इसके काढ़े का प्रयोग कर सकते हैं।
0: सखियों, आज हम बात कर रहे हैं पारंपरिक औषधीय पौधों के बारे में। बहुत सारी जानकारी डॉक्टर साहिबा ने हमें दी, जिनसे आप सबने जाना कि कितने महत्वपूर्ण हैं ये पौधे। लेकिन डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जानकारी जन जन तक पहुंचाने और खासतौर से माओं से उनके बच्चों तक पहुंचाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए?
1: जी, सबसे पहले हमें अपना जो सुविधा भोगी रवैया है वो बदलना होगा और 2 मिनट नूडल की संस्कृति को बदलना होगा। और हमें अपने जो परंपरागत खान पान के तौर तरीके थे, जो परंपरागत खाना बनाने के बर्तन थे, उन सब पर वापस लौटना होगा, ताकि हम अगर माओं को ये बता सके तो जाहिर तौर पर धीरे धीरे उनके बच्चे इस को आत्मसात कर पाएंगे। तो मेरा ऐसा सुझाव है कि माओं को अपने खान पान की जो आदतें हैं उनके लिए वापस पुरानी अपनी जो परंपरागत भोजन था उसकी ओर लौटना चाहिए।
0: सखियों, आप और हम सुन रहे थे पारंपरिक औषधीय पादपों के बारे में जानकारी। बहुत सारे पादप आपने सुने, आपने जाना कि आपकी रसोई में सारे गुण मौजूद हैं जो आपको बीमारियों से लड़ने की क्षमता देते हैं और बीमारियों को आपसे और आपके परिवार से दूर रखते हैं। ये जानकारी आप रखें और अपने बच्चों को भी जानकारी देते हुए भोजन कराएं, ताकि वो ये जाने कि जो भोजन आप उन्हें दे रही हैं वो उनके शरीर को मजबूत करने के लिए दे रही हैं और आगे रोगों से लड़ने की क्षमता दे रही हैं आप उन्हें, तो वो उतने ही मन लगाकर उस खाने को खाएंगे जिन्हें वो नाक वो सिकोड़ कर खाते हैं या जंक फूड की तरफ जहां उनका रुझान बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर साहिबा, पारंपरिक औषधीय पौधों के बारे में आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: सखियों, अभी आपने सुनी भेंटवार्ता। पारंपरिक औषधीय पादपों का महत्व और जानकारी दे रही थी डॉक्टर शालिनी माहेश्वरी। सखियों, जब पौधों की बात करते हैं तो सीधा सा हरियाली हमारी आंखों में आ जाती है, और यह हरियाली तब तक है जब तक हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं। इसलिए पेड़ पौधों को केवल काटते अगर हम रहे और कंक्रीट का जंगल बनाते रहे, तो निश्चय ही हमारी आंखों से एक दिन हरियाली दूर हो जाएगी, और हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यही उद्देश्य है वन महोत्सव सप्ताह मनाने का। भारत में हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है वन महोत्सव सप्ताह, ताकि हम जानें कि पेड़ों का कितना महत्व है और इन्हें लगाने और उनकी देखभाल करने का एक बड़ा उत्सव हम मना सकें। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाना। आप पौधे लगाएंगे तभी तो हरियाली होगी और इस उत्सव का महत्व साबित होगा। यह उत्सव मनाया जाता है 1950 से। इसकी शुरुआत की गई पूर्व कृषि मंत्री डॉ. के. एम. मुंशी के द्वारा, और वनों की कटाई को रोकने के लिए, देश में अधिक से अधिक जंगलों और हरियाली को विकसित करने के लिए, साथ ही प्रदूषण को कम करने के लिए, क्योंकि प्रदूषण कम होगा, हवा हमारे साथ शुद्ध होगी। लेकिन देखिए, कोई भी महोत्सव मनाने का उद्देश्य सिर्फ महोत्सव मना लेना नहीं है, बस 1 से 7 जुलाई तक पेड़ पौधों की बात कर लेना नहीं है। महोत्सव का उद्देश्य है उसके प्रति जागरूक होना। हमें अपने आसपास पेड़ पौधे लगाने हैं। देखिए, जुलाई के महीने में महोत्सव मनाया जाता है, जुलाई में ही हमारा मानसून आ जाता है। हम अपने आसपास जो भी खाली जगह है जहां लगाया जाना संभव है, पेड़ पौधे जरूर लगाएं। और सिर्फ लगाएं नहीं, होता क्या है कि हम जोश जोश में पेड़ पौधे लगा तो देते हैं लेकिन फिर उनकी देखभाल करना भूल जाते हैं। जी हाँ, बारिश में तो ऊपर से पानी उन्हें मिल ही जाएगा, लेकिन उसके बाद भी हमें उनका ख्याल रखना है। एक बच्चे की तरह आप इनका पालन पोषण करेंगे तो ये आपको भी शुद्ध हवा देंगे और आपकी आने वाली कई पीढ़ियां इसका लाभ लेंगी। यही है।

जो पेड़ कहते हैं ना, बिना लालच के हमें सब कुछ देते हैं। हमारा अपना कोई होता है तो हमें प्यार करने की कोई वजह होती है, लेकिन पेड़ पौधों के पास जो भी हमें मिलता है वो बिल्कुल निश्चल मिलता है। वो हमें शुद्ध हवा दे रहे हैं, हमारे पर्यावरण को शुद्ध कर रहे हैं, आंखों को हरियाली दे रहे हैं, आसपास की जो माहौल है उसे सुकून भरा कर रहे हैं, क्योंकि ये सुकून आपको और कहीं नहीं मिलेगा, जहाँ हरियाली होगी वहीं मिलेगा। साथ ही बारिश की अगर हम बात कर रहे हैं, तो बारिश तभी होती है जब हमारे आसपास पेड़ पौधे होते हैं। तो जितना अच्छा आप पेड़ पौधे लगाएंगे, हमारे आसपास जितनी हरियाली होगी, मॉनसून भी उतना ही अच्छा होगा, और रिमझिम बरसती बारिश सभी को अच्छी लगती है। तो पेड़ पौधे लगाइए और इस महोत्सव को उत्सव बनाइए, ताकि आपके आसपास हरियाली रह सके। सखियों, यह है मनोरंजन और जानकारियों का खजाना, आपका अपना कार्यक्रम महिला जगत। कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सखियों, आज हमने बहुत सारी बातें की, डॉक्टर्स डे की भी बात की और वन महोत्सव की भी बात की। दोनों ही चीजें हमें प्राण दे रही हैं, हमारे प्राणों की रक्षा कर रही हैं। तो आप बिल्कुल इसकी और ध्यान दें और वन महोत्सव मनाएं, साथ ही बहुत सारे पेड़ पौधे लगाएं जो आपके आसपास हैं। छोटे छोटे गमलों में भी लगाएंगे तो भी वो वातावरण की शुद्धि करेंगे। अगर आपके पास जमीन नहीं है, जमीन में नहीं लगा सकते, तो छोटे छोटे पौधे लगा लीजिए, बड़े पेड़ मत लगाइए, लेकिन लगाइए जरूर इस मानसून में। सखियों, कैसा लगा आपको कार्यक्रम, जरूर लिख भेजे हमें पाती। हमारा पता है कार्यक्रम महिला जगत, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी केंद्र कोटा, पिन कोड 3240001 और हमारा ईमेल आईडी है engoyenjoyaircota@gmail.com। सखियों, हंसी हंसाइए, खुश रहिए और खुशियां बांटिए। फिर होगी मुलाकात इसी वायदे के साथ। अपनी सखी अर्चना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी हमारी बहनें सुन रही थी कार्यक्रम महिला जगत FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।
1: सुरीली धड़कन

0: एक जानी मानी शायर, एक जानी मानी गीतकार। वो कहते हैं, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से न बहाया कर। शकील आजमी जो कहते हैं, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कई मशहूर फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे। आर्टिकल 15।
1: आना आधी जाना इंतजार है तेरी।
0: फिल्म मुल्क।
2: सब सखियों का पिया पियारा, सब में है और सब सुनियारा।
0: और

0: जाने माने शायर शकील आजमी से बातें की हैं ममता सिंह ने। ये है इस कार्यक्रम का दूसरा भाग।
1: बेखबर दोस्तों, नमस्कार। रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है। उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर

0: शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है। उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी जबां देखता है। शकील आजमी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत शुक्रिया ममता जी और बहुत शुक्रिया विविध भारती।
0: इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो अनुभव सिन्हा जी देर से मिले, लेकिन मिले तो दुरुस्त मिले।
1: हाँ।
0: बहुत सारी फिल्मों की आमद हुई आपकी फिल्में दुनिया में, आर्टिकल 15, भीड़, और इन सब में गाने लिखे, थप्पड़ के सारे गाने आपने लिखे।
1: हाँ, मुल्क के सारे गाने।
0: तो मुल्क के, तो मैं चाहती हूँ कि मुल्क फिल्म का गाना, फिर आर्टिकल 15 का, क्रमवार आप बताए और रचना प्रक्रिया बताए।
1: मुल्क का गाना आप सुनाए, पिया समाए
0: जी,
1: बहुत अच्छा गाना है,
0: बहुत पसंदीदा कव्वाली।
1: हाँ,
0: कव्वाली है।
1: यस यस,
0: कव्वाली की शक्ल में है ये गाना। और हम आपको बताएं कि विविध भारती
1: उसमें हमारा पूरा हिंदुस्तान है उस गाने
0: जी
1: में।
0: बिल्कुल। हाँ। पूरी फिल्म बड़ी बेहतरीन है। हाँ। इसमें अनुभव सिन्हा जी को बधाई जाती है सबकी ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से।
1: मैं समझता हूँ कि जो मुल्क फिल्म है
0: जी,
1: या आर्टिकल 15 है, ये ऐसी फिल्म है जो हमारे हिंदी सिनेमा में जो ऐसी फिल्में बनी हैं जो याद की जाएंगी।
0: बिल्कुल, जिनका जिक्र किया जाए,
1: जिक्र किया जाए,
0: दर्ज होती है आज के समय में।
1: हाँ, वो ऐसी फिल्मों में ये फिल्में हमेशा जिंदा रहेंगी, जैसे थप्पड़ है, मुल्क है, आर्टिकल 15 है।
0: बिल्कुल।
1: और मेरी खुशनसीबी है कि मैं इन फिल्मों का हिस्सा हूँ।
0: शकील साहब, ये मुल्क फिल्म की बेहद मकबूल कव्वाली, और विविध भारती से एक प्रोग्राम होता है सुबह चित्रलोक, पहले ये भारत की गूंज के नाम से प्रसारित होता था, इसमें अक्सर हम विविध भारती से प्रसारित किया करते थे, और उसमें आपका नाम लेते हुए बड़ा फक्र महसूस होता था कि शकील आजमी ऐसे शायर गीतकार हैं जिन्हें हम निजी तौर पर भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि बात अनुभव सिन्हा जी की चली है, तो आर्टिकल 15, भीड़, कई फिल्में हैं आपके खाते में, तो क्रमवार इनका जिक्र करें, रचना प्रक्रिया बताएं इन गानों का। आर्टिकल 15, इंतजारी, जिसे आयुष्मान खुराना ने गाया भी है।
1: जी हाँ जी, इंतजारी सुनवा सकते हैं आप
0: जी।
1: बिल्कुल।
0: तो
1: आर्टिकल 15 से,
0: तो कैसे वो गाना बना, वो बनने की क्या कहानी?
1: उस गाने की कहानी ये है कि
0: कोई दिलचस्प बात हो।
1: हाँ, दिलचस्प बात है। अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे ये कहा, कहने लगे यार सिचुएशन मैं नहीं बता रहा हूँ, आप यूं समझ लीजिए कि वो गुलजार साहब का वो एक गीत था, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास
0: पड़ा है इजाजत फिल्म
1: लौटा दो। हाँ, तो इसका उल्टा गाना चाहिए मुझे।
0: अरे क्या बात है।
1: हाँ, उल्टा मतलब कि
0: तो, सामान देना है।
1: हाँ, वो कह रहे कि वो कह रहे लौटा दो।
0: हाँ,
1: और मुझे ऐसा चाहिए कि ले जाओ।
0: हाँ,
1: ठीक है,
0: संचय करना। हाँ, है यहाँ पर।
1: हाँ, तो उसमें जो गाना है वो मैंने लिखा है कि मोहब्बत में जो दो लोगों के आपसी जो मूवमेंट्स होते हैं, है ना, हंसी है, गम है, रोना है, मुस्कुराना है ना, साथ में कुछ कहीं खा रहे हैं, कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं आइसक्रीम खा रहे हैं, और कहीं किचन में थोड़ा झगड़ लिए हैं, तो ये सारे जितने भी मूवमेंट्स हो सकते हैं, तो अब हम बिछड़ गए हैं और मैं इसको अकेला जी रहा हूँ।
0: अच्छा, क्या बात है, ये सारा कुछ एक गाने में आना।
1: हाँ, तुम तो बिछड़ गए हो और खुश हो।
0: हाँ।
1: लेकिन मैं वहां से निकल नहीं पा रहा हूँ। वो साझा जो चीजें हैं हमारी, मैं उसको अकेला जी रहा हूँ और मैं दुखी हो रहा हूँ, तो तुम एक काम करो, ये आओ और इसको ले जाओ। तो ये मैंने एक मतलब स्टोरी बोर्ड बनाया और इसको मैंने शायरी में लिखा और वो इस तरह से गाना बना इंतजारी
0: जी।
1: हाँ,
0: तो वो शायरी कैसे बनी वो बताइए, मतलब वो शेर अगर याद है तो।
1: हाँ, इसी तरह से बनी वो कि आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी।
0: क्या बात है, वाह।
1: ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी।
0: वाह वाह, बहुत

0: सुंदर
1: है ना।
0: तो
1: अच्छा पहले इसमें ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी, ये लाइन पहले नहीं थी, उसमें कुछ खुमारी राइमिंग की लाइन थी। तो अनुभव सिन्हा साहब ने कहा कि शकील भाई ये इंतजारी लफ्ज बड़ा यूनिक है, इंतजार होता है, इंतजारी लोग नहीं लिखते हैं। तो हमारे बचपन में हम गांव में सुनते थे, अरे हम तुहरी इंतजारी देखत रहे हैं, है ना, इंतजारी कर नहीं रहे थे, इंतजारी देखत रहे हैं, पुराने लोग बोलते थे। तो अब हमारा जो मुल्क है ना वो बहुत विशाल, बहुत बड़ा मुल्क है,
0: रंगी है,
1: और बहुत मतलब भाषाएं बहुत हैं, तो कोई भी शब्द कुछ अलग से आता है तो वो कानों को भला लगता है,
0: बिल्कुल,
1: है ना, कुछ नया लगता है। तो मैंने इंतजारी जानबूझ के, और बोले ये इंतजारी और रेजगारी बड़े कमाल, अरे इंतजारी बड़ा कमाल लग रहा है, ये खुमारी जो है इसको चेंज करो यार, कुछ नया लफ्ज ले आओ। तब उसकी जगह पे ये आया, आना आ भी जाना, ये ट्यून पे लिखा हुआ गाना है
0: जी।
1: और अनुराग साइकिया ने म्यूजिक किया है इसका। आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी, ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी, वो जो हम रोए साथ थे वो सब आके लेके जा। तो वो उसका उल्टा गाना था जो गुलजार साहब का था, ये उसके बरक्स था। तो ये सारा मैंने एक स्टोरी बोर्ड बना लिया कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और फिर मैंने इसको लिखा और गाना इस तरह से बना।

0: जो गाना हम सुनते हैं बहुत एंजॉय करते हैं हम स्टूडियो में बैठकर और हमारे श्रोता स्टूडियो के बाहर, लेकिन उस गाने के बनने के पीछे कहानियां होती हैं और कई बार मुश्किलात भी होती हैं कि आप जैसे बता रहे हैं कि अनुभव सिन्हा जी आपको दृश्य बता रहे हैं और आप लिख रहे हैं फिर चेंजेस, तो एक कितना आसान नहीं होता है सफर। तो फिल्म मुल्क में जो कव्वाली है बड़ी हिट, पिया समय हम सबका पसंदीदा कव्वाली हम सबकी, इस गाने की बनने की क्या कहानी थी?
1: ये तो बहुत ही मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने, और वो तो चले गए शूटिंग करने। मेरे साथ अक्सर होता है यही उनकी फिर उनके गानों को लेके कि हाँ हाँ कर लेंगे, और ऐसा फिर वो शूटिंग पे चले जाते हैं और फिर जब जरूरत होती है तब कहते जल्दी करो गाना चाहिए। तो अब वो शूटिंग कर रहे हैं उधर लखनऊ के पास मलिहाबाद वगैरह में, और
0: अभी गाना लिख दो
1: जल्दी। और हम जो हैं मैं और अनुराग साइकिया ने ये इसका किया था म्यूजिक वो, और
0: थप्पड़ में भी अनुराग साइकिया का संगीत था। हाँ, आर्टिकल 15 में भी
1: थप्पड़ सोलो था
0: और मुल्क में,
1: और मुल्क में एक ही गाना था उनका ये, बाकी प्रसाद साष्ठे ने दो गाने किए थे
0: जी जी। हाँ,
1: तो हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है, वो रूट पता नहीं चल रहा है कि जाना किधर है।
0: यहाँ पर अनुभव सिन्हा जी का भरोसा भी आप पर अटूट है।
1: हाँ,
0: कि वो गाना देकर चले गए हैं।
1: हाँ, अब मैं फोन कर रहा हूँ कि इसमें लिखना क्या है। अब वो क्योंकि उधर बिजी है शूटिंग में, ध्यान उधर लगा हुआ है, कह रहे मैं बताता हूँ। अब हम इंतजार कर रहे हैं, फिर उनका फोन आया, कह रहे हैं मैंने आपको एक वीडियो भेजा है वो देख लीजिए आप, सुन लीजिए। मैंने कहा सर आप बताइए ना कि उसमें क्या है और आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि साइंस ये कहती है कि जब सारे रंगों को हम मिलाते हैं तो सफेद रंग बनता है, सारे रंगों को मिलाने से सफेद रंग बनता
0: जी,
1: है
0: जी।
1: मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है सर।
0: बिल्कुल सही बात है, सफेद रंग तो अपने आप में सफेद रंग है, उसमें कोई भी रंग मिलाएंगे तो वो तो दूसरा हो जाएगा।
1: तो,
0: हाँ,
1: तो बोले नहीं ऐसे ही होता है, यही थॉट है। और ये गाना मुझे देशभक्ति इसमें होनी चाहिए और कौमी एकजहती होनी चाहिए,
0: जी, जी, जी।
1: ठीक है, पूरा देश एक साथ चलना चाहिए इस गाने में। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उसको लिखा, मुश्किल गाना था बहुत
0: जी।
1: मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी,
0: बेहतरीन फिल्म थी,
1: डिफिकल्ट सिचुएशन थी
0: जी।
1: तो मैंने लिखा उसमें के पिया समाए जिया में मोरे पिया समय, ये हुक है, उससे पहले लाइन आती है सात रंग हैं सातों पिया के,
0: सात रंग हैं सातों पिया के।
1: हाँ, क्या सात रंग है? होते हैं
0: जी।
1: अब मुझे सफेद पर खेलना है और उसको ऐसा बनाना है उसमें पूरा देश एक साथ जुड़ना चाहिए
0: जी, जी।
1: ठीक है, सारे समुदाय जो है वो एक साथ जुड़ने चाहिए, तो वो सारे जो है एक साथ जुड़ने चाहिए। तो अच्छा, अभी इसमें जो पिया है ये वो भी पिया है जो मतलब जो जमीन पे है ना, और वो भी पिया है जो खुदा है, ईश्वर है, भगवान है,
0: खुदा है।
1: हाँ, और महबूब भी है हमारा, ठीक है, डबल मीनिंग है। इस तरह के बहुत सारे लागा चुनरी में दाग और फलाना, वो
0: छुपाऊं कैसे
1: है ना, घर जाऊं, घर जाने का मतलब वो मरने के बाद की जिंदगी है ना,
0: दो अर्थी।
1: हाँ, तो ये दो अर्थी ये भी मैंने इसको करके आगे बढ़ाया। सात रंग है सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के,
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: तो ये दूसरे वाले को वो कटाक्ष कर रही है कि तू भी कभी लगा के देख, तुझे भी वो सब पिया के ही लगे
0: रंग दिखाई।
1: हाँ, अलग अलग मत देख, हम सब एक हैं, सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के, सातों से मिलके भई मैं उजली,
0: वाह क्या बात है,
1: सातों से मिलके
0: भाई में
1: उजली, कोई हरा कोई गेरुआ बताए,
0: क्या बात,
1: पिया समाए जिया में मोरे पिया समाए। अभी देखने वालों की नजर है कि कोई मुझे हरा बता रहा है कोई गेरुआ बता रहा है, लेकिन मैं तो सातों से मिलके उजली हो गई हूँ
0: जी जी।
1: और तू भी लगा के देख कभी। तो ये बड़ा ही मतलब टेढ़ा गाना था और ऐसा वो सटीक आया है ऐसा कि एक लाइन

0: चेंज नहीं हुई, बड़े खुश हुए, बोले आगे बढ़ो।
1: तो ये जो फिल्म है वो एक संदेश देती है, ये गाना भी संदेश देता है, सब एकजुटता का संदेश है। और बेहतरीन फिल्म का बेहतरीन गाना ये सुनवाते हैं हम।

0: शकील साहब, अभी आपकी जर्नी के बारे में बहुत सारी बातें करनी है, अब यहाँ हम आते हैं आपकी फिल्म धोखा में। फिल्म धोखा,
1: हाँ,
0: M.M. करीम साहब ने गाया है और कंपोज भी किया है गाना, इसके बारे में एकदम संक्षेप में बताएं, क्योंकि
1: मतलब आप भट्ट साहब के दरवाजे पर पहुंची हैं।
0: पहुंच गए, दस्तक दे रहे हैं, और महेश भट्ट साहब के साथ आपने बहुत सारा काम किया है, और आपकी फिल्मी दुनिया में उनका बहुत बड़ा योगदान, कह ले योगदान भी है, और काफी दोस्ती मित्रता है।
1: हाँ, प्यार रहा बहुत उनका, भट्ट साहब का उस जमाने में। तो ये फिल्म उनकी जो बेटी
0: पूजा भट्ट
1: उन्होंने डायरेक्ट की थी, और ये गाना जो है M.M. करीम साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, मेरे पसंदीदा कंपोजर हैं वो, और उनको हिंदी नहीं आती ठीक से, है ना, तो भट्ट साहब के ऑफिस में उन्होंने मुझे धुन दी, ट्यून बताई हारमोनियम प्ले करके, मैंने उसको तब वो छोटे वाले जो टेप चलते थे मैंने रिकॉर्ड किया उसमें, और वहीं बैठ के मैंने गाना लिखा वो, और गाना लिखा जब उन्होंने उसको गाना शुरू किया कहीं कहीं अटके, लेकिन फिर वो रवां हो गया, जब उनके मीटर में पूरी तरह से रवां हो गया वो गाना
0: जी।
1: तो मुस्कुराहट उनके चेहरे की बढ़ती गई,
0: क्या बात है,
1: हाँ, वो जो ट्यून में पूरी तरह से वो गाना, तो वो गाना जो है वो पूजा को भी बहुत पसंद था, बहुत खुश थी उस गाने से वो। लेकिन इससे पहले भट्ट साहब के यहाँ मेरी पहली जो फिल्म थी वो थी जहर,
0: हाँ, जिसका गाना बहुत मशहूर हुआ था, फिल्म का गाना, इनकी आवाज, श्रेया घोषाल की आवाज में जो गाना था, अगर तुम मिल जाओ, बहुत बहुत मशहूर हुआ था
1: जी जी। तो ये गाना दरअसल पाकिस्तानी गाना था, ये उसको यहाँ पर अनु मलिक साहब ने रिक्रिएट किया था, रेशमा की आवाज में भी आपको मिल जाएगा वो गाना
0: जी।
1: कई लोगों ने गाया हुआ है, पुराना गाना है, और ये फिल्म मोहित सूरी की भी पहली फिल्म थी, मोहित सूरी थे इसके डायरेक्टर, वो भी मतलब उनके भट्ट साहब के भांजे होते हैं
0: जी।
1: और ये फिल्म बड़ी कामयाब रही, इसके सारे गाने सुपरहिट हुए, और सारे गामा म्यूजिक कंपनी ने इसके गाने रिलीज किए थे, और हमें जो है वो पहली बार आउटस्टैंडिंग म्यूजिक सेल नाम से हमें ट्रॉफी बांटी गई, उसका एक फंक्शन हुआ, एक तकरीब हुई उसकी, और बड़े खुश थे वो लोग, क्योंकि म्यूजिक बहुत बड़ा हिट था और फिल्म भी हिट हो गई थी, सिल्वर जुबली का भी उसका ट्रॉफी मिला था हम लोगों को
0: जी।
1: तो उसमें गाना था वो के ने गाया था, वो ऐ बेखबर ऐ बेखबर
0: जी जी, हाँ,
1: तो वो भी बहुत बेहतरीन गाना था। और एक गाना वो था जाने जा
0: जी,
1: तुझसे बिछड़ के मैं जाऊं कहां, वो भी बहुत, सारे गाने ही बहुत हिट हुए थे उसके, और बड़ी कामयाब फिल्म रही वो, तो वो पहली फिल्म थी मेरी भट्ट साहब के यहाँ
0: जी। जी, तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाया श्रोताओं को,
1: आई बेखबर
0: सुनते हैं, हाँ, ये गाना।

0: रूप कुमार राठौड़ के साथ आपने और भी काम किया है, और भी गाने उन्होंने गाए हैं, वो उनके बारे में।
1: हमारी शुरुआत ही साथ में हुई थी
0: जी।
1: रूप कुमार राठौड़ साहब के बारे में मैं बताऊं, जब मैं यहाँ नया नया आया था तो जो कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर थे, बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो पकड़ में नहीं आ रहे थे। रूप कुमार राठौड़ साहब से मेरी मुलाकात हुई
0: जी,
1: तो वो गजल सिंगर होते थे
0: जी जी,
1: और प्लेबैक सिंगर भी होते थे
0: जी, बिल्कुल
1: है ना। फिल्मों में उन्होंने कम गाया, लेकिन एज ए गजल सिंगर उनको ज्यादा
0: नाम शोहरत
1: और इज्जत है उनकी। लेकिन कुछ गाने भी उन्होंने गाए हैं, और उसमें से कई गाने बड़े हिट हैं, जैसे ऐ जाते हुए लम्हों
0: जी, जी, जी,
1: संदेशे आते हैं, या वीर जारा का गाना है ना। इस तरह के कई गाने हैं जो उनके बड़े हिट हैं।

0: तो जब मैं आया तो मेरी मुलाकात हुई तो वो मेरी गजलें सुनते थे और उसमें से चूज करते थे और गजलों को कंपोज करते थे, लेकिन वो गजल का टाइम भी जा रहा था। जब मैं आया हूँ उससे पहले गजल का एक बड़ा दौर आया था जिसमें जगजीत जी की गजलें और पंकज उदास साहब की गजलें, हरिहरन साहब, रूप कुमार राठौड़ साहब, मतलब नए गजल सिंगर भी आते थे, उनके एल्बम भी खूब चल रहे थे।
1: जी जी।
0: लेकिन जब मैं आया हूँ तो ये दौर खत्म हो रहा था।
1: जी जी।
0: गजल का मार्केट डाउन हो रहा था जब मैं आया था। तो मेरे सामने ही वो रूप भाई ने कैफी आजमी साहब का एल्बम किया मेरे सामने, मीर तकी मीर का एल्बम किया मेरे सामने, तो मेरी वो गजलें कंपोज करते थे। अच्छा, मेरे पास कोई बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर नामी नहीं था, तो मैंने सोचा कि रूप भाई इतने अच्छे कंपोजर हैं, तो ये अगर फिल्म के गाने कंपोज करें और मैं लिखूं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, और उनका नाम भी है। तो मैंने उनसे कहा कि आप फिल्म के गाने क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा भाई मैं इसलिए नहीं करता कि लोगों को पता चलेगा दूसरे म्यूजिक डायरेक्टरों को, तो जो गाने गवा रहे हैं वो भी बंद कर देंगे। ठीक है, ऐसा होता है हर प्रोफेशन में। तो थोड़े दिन तक तो वो इस बात पर टिके रहे और मैं उनके अंदर वो म्यूजिक कंपोजर को, जो फिल्म का म्यूजिक कंपोजर होता है, उसको मैं जगा चुका था, मगर
1: जी जी।
0: है ना, कहीं ना कहीं उनके भीतर भी था वो, क्योंकि हर म्यूजिशियन का वो सपना होता है
1: जी जी,
0: वो म्यूजिक डायरेक्टर बनने का। तो एक दिन उन्होंने कहा चलो ठीक है यार, लाओ मुखड़े कंपोज करता हूँ। तो मैंने लिखने शुरू किए, उन्होंने कंपोज करने शुरू किए, और हमारा आज भी 500 गानों का बैंक है, जो हमारे गाने रूप कुमार राठौड़ साहब के बैंक में मेरे लिखे हुए
1: दर्ज है।
0: हाँ, और 400-500 गाने होंगे।
1: बहुत सारे नॉन फिल्म एल्बम भी हैं आपके नाम, एक जोगिया हमें याद आता है।
0: हाँ, हाँ, हाँ,
1: जोगिया मन, तो वो कैसे बना वो गाना?
0: जोगिया मन तो अभी बात का है, वो एक नया कंपोजर है और बहुत अच्छा सुरीला है, हरीश सगा ने
1: जी
0: उनके साथ किया था मैंने, बहुत अच्छा लड़का है। और हरीश सगने के साथ हमने एक फिल्म की थी, विक्रम भट्ट साहब की एक फिल्म थी, उन्होंने मुझे फोन किया कि शकील भाई मैं फिल्म शुरू कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप गाने लिखें। तो मैं गया उनके यहाँ, तो उन्होंने मुझे हरीश सगने से मिलवाया
1: जी जी।
0: और उनकी एक फिल्म आई थी 1921 जिसमें जरीन खान थी हीरोइन, और वो फिल्म भी बहुत अच्छी चली, हिट हुई पिक्चर, और उसके सारे गाने आप सुनेंगे बहुत अच्छे गाने।
1: थोड़ा सा हम पीछे क्यों चलते हैं, 2004 में जब आपकी पहली फिल्म आई थी, तो वो फिल्म कैसे मिली आपको, पहली फिल्म तक आप कैसे गए? वो तेरा नाम था,
0: वो तेरा नाम था बिल्कुल।
1: तो यहाँ मतलब फिल्मी दुनिया में आपका प्रवेश कैसे हुआ? हम तो एंटर कर चुके हैं लेकिन आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि शायरी की दुनिया से फिल्मी दुनिया में एंट्री कैसे हुई आपकी?
0: ये बात तब की है, 2000 का जो सन है उससे पहले की बात है।
1: अच्छा,
0: तब मैं सूरत में रहता था
1: जी जी,
0: और सूरत से मैं बॉम्बे आता जाता था, पैसे जब तक होते थे यहाँ रहता था, पैसे खत्म होते थे फिर सूरत चला जाता था।
1: अच्छा।
0: फिर पैसे इकट्ठा करता था फिर आता था। तो इस आने जाने में मेरी मुलाकात दिलीप सेन समीर सेन से हुई। हाँ, दिलीप सेन से हुई और दिलीप सेन के साथ मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। तो दिलीप सेन एक फिल्म कर रहे थे, उसके गाने रिकॉर्ड कर रहे थे सहारा स्टूडियो में, जुल्मी, जुल्मी फिल्म थी अक्षय कुमार।
1: जी जी जी।
0: तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई यहाँ सहारा में आ जाओ और अपनी किताब लेके आना,
1: वहाँ तनवीर खान भी के।
0: हाँ। तो मैं वहीं आ रहा हूँ। तनवीर खान साहब तक आ रहा हूँ मैं। तो मैं सूरत से अपनी एक किताब, मेरी पहली किताब छप चुकी थी धूप दरिया, तो वो 96 में छपी थी वो किताब। तो ये 96 से 2000 के बीच की बात है। तो मैं वो किताब लेके आया
1: जी।
0: और सहारा स्टूडियो में मैं बैठा था मिलने के लिए। तो तनवीर खान साहब की नजर उस किताब पर पड़ी
1: जी।
0: उन्होंने कहा मैं देख सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल देखिए। तो उन्होंने दो चार पेज इधर उधर पलटे और वो किताब जो थी उसका इंतसाब माँ के नाम था।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो एक शेर जो है वो कैप्शन के तौर पर नीचे था कि अब भी सोते में ऐसा लगता है,
1: अब भी सोते में ऐसा लगता है, क्या बात है,
0: सर के नीचे तेरी हथेली है।
1: ओ, क्या बात है।
0: ठीक है,

0: तो ये शेर और कुछ शेर उनको बड़े पसंद आए। उन्होंने कहा यार ये किताब मुझे चाहिए। मैंने कहा ये तो मैं दिलीप सेन जी के लिए लाया हूँ, आप मुझे एड्रेस दे दें तो मैं सूरत जाऊंगा आपको भेज दूंगा। अच्छा मैं उनको नहीं पहचानता था, वो मुझे नहीं पहचानते थे, जबकि तनवीर भाई ने बहुत सारे फिल्मों के डायलॉग, बड़ी कामयाब फिल्मों के डायलॉग लिख चुके थे, इस फिल्म के डायलॉग राइटर भी वही थे। तो मैंने वो किताब उनको सूरत जाके भेजी और वो किताब पढ़ के इतने इम्प्रेस हुए, वो किताब वो मेरी शायरी दोस्ती का जरिया बनी।
1: क्या बात है,
0: तो हमारी दोस्ती हो गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको फिल्मों में काम करना है तो आपको बॉम्बे आना पड़ेगा, मुंबई में रहना पड़ेगा आपको। अब मैं डरता था कि मैं कहाँ रहूंगा, क्या करूंगा, कैसे सरवाइव करूंगा, इसलिए मैं लेट हो रहा था मुंबई आने में। लेकिन फिर मैंने सोचा यार एक ना एक दिन तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा, तो आज ही क्यों ना उठाया जाए। और इनसे मुझे बड़ी उम्मीदें थी तनवीर साहब से, क्योंकि ये बड़ी फिल्मों के डायलॉग राइटर होते थे।
1: जी जी।
0: तो एक जरिया था। तो मैं सूरत से मुंबई आ गया 2001 फरवरी में।
1: जी।
0: और फिर तनवीर भाई के साथ घूमना फिरना, उनके सेट पे जाना, शूटिंग में जाना, ये सब मीटिंग में उनके साथ जाना, ये सब हो रहा था। उसी जमाने में रूप भाई से मुलाकात मेरी थी।
1: जी।
0: तो ये दो लोग थे जिनसे मेरी उम्मीदें जुड़ी थी। तो रूप भाई मेरे गाने कंपोज कर रहे थे। अच्छा, दोनों से एक दूसरे के बारे में मैं बात करता था। मैं इनसे कहता था भाई रूप भाई को सुन लीजिए, मेरे गाने उन्होंने कंपोज किए हैं। अरे मैं सुन के क्या करूंगा, मैं ना डायरेक्टर हूं ना प्रोड्यूसर हूं। तब वो डायरेक्टर नहीं बने थे, बाद में डायरेक्टर भी बने। तो ये जो फिल्म थी वो तेरा नाम था, इसके वो डायलॉग लिख रहे थे, और इस फिल्म के डायरेक्टर थे कुकू कोहली जी, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे बहुत बड़े आदमी, अलग बिजनेस से रेमंड के मालिक विजयपत सिंघानिया साहब, उन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की थी। तो बड़े लोग बना रहे थे पिक्चर, अमरीश पुरी साहब का इसमें बहुत बड़ा किरदार था। फिल्म उन्हीं की थी सच पूछो तो, बाकी दो लड़के और दो लड़कियां थी उसमें। तो उन्होंने कहा कि भाई रूप भाई को फोन करो, उनको बुलाओ, मैं सेटिंग कराता हूँ कुकू जी के साथ, फिल्म कर रहा हूँ मैं। तो मैंने फोन किया रूप भाई को, तो उन्होंने कहा कि मैं तो स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया में कहीं थे वो, मैं तो यहाँ हूँ। अरे मैंने कहा कि भाई ये सेटिंग करनी थी तो कब आएंगे, तो कुछ 15-15 दिन बताया कि बाद आऊँगा। तो खैर जब तक वो आते तब तक उस फिल्म के कई गाने दिलीप सेन समीर सेन जी ने रिकॉर्ड कर लिए थे, और वो गाने लिखे थे निदा फाजली साहब ने। अब जब रूप भाई आए तो हमारी सेटिंग शुरू हुई, तो उनके पास एक गजल थी कतील शिफाई साहब की, जिसकी झनकार में दिल का आराम था वो तेरा नाम था।
1: क्या बात है।
0: तो वो तेरा नाम था इसी गजल से लिया गया था।
1: ओ अच्छा, क्या बात है भाई।
0: हाँ मतलब पहले से कुछ नाम भरे रहा हो पिक्चर का, लेकिन जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ ये गजल, तो वो तेरा नाम था कतील शिफाई साहब की गजल से लिया गया। ये नहीं कि गजल बाद में, गाना बाद में बना, पहले जो है गाना आया उसी में से नाम निकाला गया। जैसे मदहोशी थी उसका नाम मुमकिन था।
1: अच्छा।
0: हाँ, मदोशी के डायरेक्टर तनवीर खान साहब थे, राइटर डायरेक्टर, उसका नाम मुमकिन था। जब हमने ये गाना रिकॉर्ड किया मदोशी, तो इंदर कुमार साहब थे उसके प्रोड्यूसर, उनकी वाइफ थी और उनके साले, तो इंदर कुमार साहब ने कहा कि यार इसका नाम बदल दो, मदोशी कर दो, ये जो गाना रिकॉर्ड किए हो ये टाइटल सॉन्ग बन जाएगा। तो इस तरह से मुमकिन हटा के मुमकिन नाम से उसका प्रचार भी शुरू हो गया था। बाद में वो मुमकिन हटा के मदोशी किया गया, तो इस तरह से वो टाइटल आया वो तेरा नाम था। फिर उसमें मेरे दो गाने लिए गए, और उसमें कतील शिफाई साहब का भी गाना है, निदा फाजली साहब का है, मतलब दो बड़े शायर और गीतकारों के साथ मेरी शुरुआत हुई फिल्म में। उसमें एक गाना था जो मेरी जिंदगी का पहला गाना, वो ये था कि सुबह हो रही है, भोपाल का माहौल है, 1947 मुल्क आजाद हुआ है, और भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया जा रहा है। ये उस टाइम की कहानी थी, और समद खान कोई वहां के बड़े क्लासिकल सिंगर थे। तो सुबह हो रही है और पूरा उस जमाने की एक्टिविटी थी वो सब हो रहा है, और समद खान वो छत पे रियाज कर रहे हैं अपने महल के, और उनकी बेटी जो फिल्म की हीरोइन है वो कहीं वादियों में गा रही है। तो ये सिचुएशन थी
1: जी,
0: और फिल्म इसी गाने से शुरू होती है।

0: तो वो मैंने लिखा था, मुझे पसंद है वो जो राइटिंग है, और वो गाना इतना मतलब अलका जी ने गाया उसको और उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने अपनी माता जी को फोन करके बुलाया और उनको सुनाया कि देखो आज भी ऐसे गाने लिखे जाते हैं। फिर वो गाना रिकॉर्डेड रूप भाई ने ले जाके लता जी को सुनाया, है ना दीदी मैंने ये मेरी पहली फिल्म शुरू हुई है ये गाना रिकॉर्ड किया मैंने। तो उन्होंने गाना सुना लता जी ने, तो डांटा उन्होंने प्यार से
1: कि मुझे,
0: अरे ये गाना तो मेरा था तूने मुझसे क्यों नहीं गवाया।
1: बड़ा कॉम्प्लीमेंट था।
0: हाँ तो ये गाने में जो एक तो कंपोजिशन और दूसरे जो इसके लिरिक्स हैं के पूरे साहित्यिक, उसका मैं मुखड़ा सुनाता हूँ आपको
1: जी।
0: सुबह हुई दिन निकल रहा है, सुबह हुई दिन निकल रहा है, नदी के तट पर नहा के सूरज सुनहरे कपड़े बदल रहा है।
1: क्या बात है,
0: सुबह हुई दिन निकल रहा है।
1: वाह बहुत
0: खूब। आपके उदयपुर के रेडियो स्टेशन पर ये सुबह इसी गाने से होती है, डेली ये गाना बजता है।
1: हम यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाए,
0: मदहोशी का टाइटल सॉन्ग सुना दे, मदहोशी है मदहोशी है।

0: शकील साहब, एक बहुत जरूरी सी बात है और आपके करियर में भी बहुत ये उम्दा बात है, खास बात है, अपने श्रोताओं को बता दें कि आपने कहीं बहुत सारी जगहों पर आपके बारे में पता है कि बहुत ऊंचे दर्जे की तालीम नहीं ली, स्कूल में जाने का मौका नहीं मिला आपको, लेकिन एक ऐसी तालीम है जो आपके भीतर है, आपने खुद से ली होगी। राम के वनवास पर आपकी बहुत सारी नज़में हैं जिस पर किताब भी आई है और जिसका आप अक्सर जिक्र करते हैं, तो ये कहाँ से आइडिया आया, कहाँ से खोज की आपने, इतने बड़े फलक पर आपने कैसे कुछ कोशिश की, बताइए।
1: मेरी उर्दू में 8 किताबें हैं
0: जी।
1: मैं साहित्य से, उर्दू साहित्य से ही फिल्मों में और मंचों पर आया। 20 साल तक मैंने सिर्फ साहित्य लिखा, साहित्य के मैगजीन में छपता रहा, मैं बाद में इधर आया फिल्मों की तरफ और मंचों की तरफ। तो ये जो काम है मेरा, ये मैं जंगल पर लिख रहा था, जंगल पर लिख रहा था, और लिखते लिखते उसी दरमियान उर्मिला का जो किरदार है वो कहीं से मेरी जिंदगी में आया। उर्मिला जो लक्ष्मण की बीवी है, लक्ष्मण की जो पत्नी
0: जी,
1: है
0: जी।
1: उस किरदार ने मुझको झकझोर के रख दिया, मुझे हिला दिया उस किरदार ने, उसके बलिदान ने, उसके कुर्बानी ने,
0: कि वनवास होता है लक्ष्मण को 14।
1: हाँ, और अहिल्या, ये दो ऐसे किरदार हैं जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत बेचैन किया मुझे। और उसी जमाने में जब मैं अहिल्या के दर्द से दो चार था, उसको जी रहा था, और जब ये नज्म हुई उर्मिला, जब ये नज्म मैं लिख चुका, तो मुझे लगा कि यार जो रामायण है
0: जी,
1: वो पूरी घटना जो है वो जंगल में है, वनवास जो राम जी का है 14 बरस का, तो क्यों ना रामायण के किरदारों पर नज्में लिखी जाएं। तो मेरी जो रामायण है वो वाल्मीकि जी से लेके अब तक जितनी भी रामायणें लिखी गई हैं, तुलसीदास की जी, हाँ, तो और भी हमारे दूसरे लोगों ने लिखी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी का काम है इस उर्मिला पे,
0: उर्मिला सखी वे मुझसे कह कर जाते,
1: हाँ हाँ,
0: बहुत बढ़िया।
1: तो सभी ने मतलब कहानी के माध्यम से कहानी कही है, मैंने एक नया रास्ता निकाला, पात्रों के जरिए से, किरदारों के जरिए से मैंने रामायण कही है मैंने कहानी। तो मैंने तकरीबन सभी किरदारों पर नज़में लिखी, एक के बाद एक जीता गया और लिखता गया, इस तरह से वो पूरी एक अलग सी रामायण हुई। और पहले मैंने उसका नाम सोचा था जंगल यात्रा, उस किताब का, क्योंकि जंगल पे काम कर रहा था ना, तो उस किताब का एक बड़ा हिस्सा जंगल भी है, रामायण और जंगल दोनों है उसमें, तो वो मेरे लेखन क्षेत्र में आता था, मेरा जो टॉपिक था जंगल उसमें वो वनवास आता था वो। तो जब ये रामायण उसमें शामिल हो गया, तब मैंने सोचा कि यार क्यों ना इसका नाम वनवास रख दिया जाए, उससे बेहतर क्या नाम हो सकता है, अगर जंगल पर किताब है, रामायण पर किताब है, तो वो जो है इस तरह से उसका नाम वनवास रखा गया। और वो किताब इतनी सराही गई है, उर्दू में उसको कई अवार्ड मिले, और उर्दू के जितने भी बड़े क्रिटिक्स और पोएट हैं उर्दू साहित्य में, तकरीबन सभी ने उस किताब पर आर्टिकल्स लिखे हैं, लेख लिखे हैं, मजामीन लिखे हैं। तो किताब पर किताब का आ जाना बहुत बड़ी बात होती है, मतलब उस किताब पर इतने आर्टिकल लिखे गए कि वो अलग से एक किताब आई है, उसको प्रोफेसर कौसर मजहरी साहब हैं जो जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उर्दू के, उन्होंने वो किताब कंपाइल की है।
0: क्या बात है।
1: हाँ, तो इस तरह से उस किताब पर किताब आई, और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं,

0: पाकिस्तान के राइटरों को भी उस किताब ने बहुत इम्प्रेस किया। वहां पर एक बड़े राइटर थे, अभी उनकी डेथ हुई है, जो फिल्म के भी राइटर थे, साहित्य के भी थे और मंचों के भी थे, जिस तरह हमारे यहाँ जावेद साहब है, गुलजार साहब है, इस तरह का वो नाम थे, अमजद इस्लाम अमजद साहब, अभी इंतकाल हुआ उनका। उन्होंने इस पर आर्टिकल लिखा है और किस तरह से मतलब हिंदू माइथोलॉजी और रामायण को लेके जो उनकी मालूमात थी वो भी कमाल है, वो जो लिखा है उन्होंने, बहुत अच्छा लिखा है। ये किताब हिंदी में जब आई तो पिछले 3 सालों से बेस्ट सेलर है, कविता की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में एक है ये।
1: क्या बात है,
0: पिछले 3 साल से लगातार। और अभी को दैनिक जागरण ने बेस्ट सेलर अवार्ड दिया गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथ से मुझे।
1: क्या बात है,
0: तो हाँ बहुत शुक्रिया
1: और बहुत बढ़िया बात कही है। और आपके मुशायरों का जिक्र तो हुआ, शुरुआती मुशायरों का, लेकिन बाद के मुशायरों में हमने खुद देखा है, मेरी खुशनसीबी है कि हमने आपको खुद देखा है और कलिंगा फेस्टिवल में देखा, प्रयागराज में हमने आंखों से देखा था जहां अनुभव सिन्हा जी भी उपस्थित थे, और आपकी जो शायरी थी वो आपके खजाने से निकल रही थी और पूरा हॉल खचाखच भरा था। ऐसे तमाम अनुभव है, तमाम वाक्यात हैं जिनकी बातें हम आपसे और फिर कभी करेंगे। आज तो बस इतना हम कहना चाहते हैं, धुआं धुआं है फजा, रोशनी बहुत कम है, सभी से प्यार करो, जिंदगी बहुत कम है, आपके ही अल्फाज हैं। आप क्या कहेंगे, आप विविध भारती के श्रोताओं को क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे चलते चलते?
0: मैं यही कहूंगा कि अभी आपने जो सुनाया है, सभी से प्यार करो, जिंदगी बहुत कम है, तो प्यार बहुत जरूरी है। और दुनिया में कुछ भी हो जाए, ये जो मोहब्बत का जज्बा है ये हमेशा बड़ा रहेगा, बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा। तो मोहब्बत कीजिए, सबसे पहले तो खुद से मोहब्बत कीजिए।
1: कुछ शायर में एक शायर से हम उम्मीद करते हैं शायरी में ही कुछ बोले शेर के साथ
0: जी,
1: कोई अशार।
0: मैं अभी इधर एक नई गजल कही है मैंने, उसके 2-3 शेर सुना देता हूँ, और उसमें एक शेर है खास तौर से उसके लिए मैं ये शेर सुना रहा हूँ कि उसमें ये भी एक शेर है, सीख है कि भाई ठीक है ऊंच नीच होती है, कुछ हमारे अलग अलग सोच होती है, लेकिन उस सब को हटा के आगे की तरफ बढ़ते रहो।
1: क्या बात है,
0: मोहब्बत करते रहो। कि आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ, आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ।
1: क्या बात है,
0: मैं हो गया हूँ उसका वो मेरा नहीं हुआ।
1: वाह वाह वाह,
0: मैं हो गया हूँ उसका वो मेरा नहीं हुआ। वो शेर ये है जो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है वो आप आगे बढ़े, सांपों को मैंने रहने दिया उनके हाल पर।
1: क्या बात है,
0: सांपों को मैंने रहने दिया
1: उनके हाल,
0: उनके हाल पर, मंत्र भी सीख कर मैं सपेरा नहीं हुआ।
1: वाह वाह वाह,
0: ठीक है, मैंने उसे बदला नहीं लिया, मैंने मंत्र आता था मुझे, लेकिन ठीक है यार, तुम तुम्हारे रास्ते मैं अपने रास्ते। इसका एक शेर आखिरी खास तौर से कि देखिए ज्ञान जो है ना
1: जी,
0: शायरी में ज्ञान की बहुत जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आपके पास ज्ञान भी होता है अलग अलग, तो वो शेर में आता है रचना के तौर पर, रचनात्मक तौर पर आता है, तखलीकी तौर पर, तो बहुत असर करता है। तो एक महाभारत का एक इल्म है, एक ज्ञान है जो इस शेर में आता है, मैं सुनाता हूँ। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है।
1: क्या बात है, ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है। वाह,
0: ये सीख है हम सबके लिए, ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है
1: जी।
0: लड़ते रहो शकील, अंधेरा नहीं हुआ।
1: क्या बात है, वाह वाह। तो अब अपने श्रोताओं से, हमारा तो दिल नहीं कर रहा है कि हम इजाजत लें, और लग रहा है कि आपसे गुफ्तगू जारी रहे, और बहुत सारी अभी बातें हैं जो बाकी हैं आपसे पड़ताल करनी। आजमगढ़ जैसे छोटे से शहर से आप मुंबई जैसे महानगर में आकर और इतना नाम रोशन किया है, शायरी की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में आपने नाम रोशन किया है, इसके लिए आपको पूरे विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद हम दे रहे हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब। नमस्कार,
0: ममता जी।
2: जाने माने शायर और गीतकार शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और आखिरी भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

फिल्म ताजमहल की ये कवाली आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी, आशा भोसले, मन्ना डे और मीना कुमारी की आवाजों में। साहिल ध्यानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था।

0: यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। तो उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूर नहीं रह सकता एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे।

0: नशा एल्बम से ये गीत आप सुन रहे थे, ये गजल आप सुन रहे थे बिनाज मसानी की आवाज में। कतील शिफाई का कलाम था, पेलोडी मसानी की तर्ज थी।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आयुष्मान खुराना की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे विकी डोनर फिल्म से। आयुष्मान खुराना और रोचक कोहली का लिखा ये गीत था। रोचक कोहली आयुष्मान खुराना की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम रंग तरंग।

0: आप सुन रहे थे अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजों में ये गजल, रफीक हुसैन और रफीक जयपुरी की लिखी ये गजल थी, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की तर्ज थी।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने क्यों ना
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

0: पामेला सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे सईद राही का कलाम।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

0: विजु शाह का सर्वधिकिया ये गीत आप सुन रहे थे। इंदिवर की रचना थी, आवाजें थी पंकज उदास और साधना सरगम की। मोहरा फिल्म का गीत आपने सुना।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर।

0: स्मृति आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई गांवों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम FM 102, 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग कड़ी संख्या 1318।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। नए महीने जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम उमंग में। आइए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे हमें भेजा है आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
1: धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धनवंतीन बाई जी का। लिखते हैं, जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति लगाव वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से। अजय देवता मुरिया, तुषार देवता मुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
1: और पुणे से सुयोग बटवे।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
1: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
1: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है, कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं, और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
2: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
1: चलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ।

0: श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए, हिंट है ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है
1: जी,
0: मूल्यवान भी है। रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
1: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
0: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है।
1: जी।
0: तो विमलेश जी, आप जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
1: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
0: कोयला तो पृथ्वी पर बना लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं, ये क्या बात हुई?
1: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति

0: जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है।
1: जी।
0: तो विमलेश जी, आप जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
1: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
0: कोयला तो पृथ्वी पर बना लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं, ये क्या बात हुई?
1: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
0: तो ये बात है। शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं।
1: जी।
0: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
1: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं, इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
0: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है। अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
1: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार मीटरॉइड बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुँचा है।
0: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए।
1: जी।
0: इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है।
1: जी जी जी, सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगी और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोद कर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
0: जी, सच्चाई ये है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
1: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ। पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा असफल रहे, क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को सोने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था।
0: जी, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से सोना बना सकते हैं। लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
1: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी, जस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है।
0: और वो ये है श्रोताओं कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं तो याद रखिए, ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है।
1: जी।
0: इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में,
1: आपके हाथ के सोने की अंगूठी कभी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी।
0: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से, प्रश्न है, सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमें हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलिए। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की,
0: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, अरावली की कहानी।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
0: अरावली की कहानी।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर।
0: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
2: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
2: वाह, क्या बात है
4: मैम।
2: हाँ बेटी,
4: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
2: बिल्कुल कहा।
4: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं। क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
2: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते? पहाड़ी कहते हैं।
4: जी, पहाड़ी।
0: अरे वाह, अच्छा। लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
2: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
3: यस मैम।
2: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
3: अच्छा।
2: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
3: अच्छा।
2: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती है।
3: अच्छा, मैंने भी देखा है।
0: आरा और वली यानि अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
5: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
2: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
4: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
2: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
3: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
0: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
2: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
4: जी मैम,
6: हमेशा याद रखेंगे।
0: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
2: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गयी।
4: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
2: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
3: सॉइल इरोजन,
2: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं जो राजस्थान में ही है।

0: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है।
1: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों, जानना चाहोगे ना?
2: हाँ, जी मैम।
3: यस मैम।
1: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
3: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
1: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
4: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
1: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
0: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
1: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
0: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
1: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
0: ओह,
1: अब जैसे जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना
0: जी,
1: और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
0: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
0: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैम।
5: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
0: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है बांगुई।
6: ये कार्यक्रम अफ्रीका की एक लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम एक सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती है, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई।
2: इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
1: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
2: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
1: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बांगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
2: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
1: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए है ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
2: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूँ कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है, इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
1: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
2: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
1: हाँ भैया और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं, मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजूरी भी अच्छी देते हैं।
2: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
1: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे हैं ना, मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे हैं।
2: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
1: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
2: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं, अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
1: अरे भैया बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना, ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला, फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूँ, बड़ी देर हो गई।
2: अच्छा भाई मैं भी चलता हूँ।
1: ए, कहाँ बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
3: जानते हैं भाई जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
1: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
3: अरे भाई, ये भी
1: इस समय कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी, अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
3: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
1: अच्छा भाई बोलो क्या बात है, बोलो।
3: मैं बोलो। अच्छा देखो भैया, तुम भी तो हम ही में से एक हो, गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी जहाँ खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
1: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं।

0: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है। अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो
1: अच्छा। और मुखिया जी क्या फाके करे, मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
2: एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग 4 दिनों तक चलती रही।
3: मुखिया जी
4: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
3: माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि
4: ओ, आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
3: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
4: तो भरने दो।
3: गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं।
4: अरे तो जाने दो।
3: लेकिन मुखिया जी, इस मकान के चारों तरफ भी पानी है, अगर हम निकलकर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते।
4: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने 3 मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है, और ये हमारी बांसुरी भी है।
3: लेकिन मुखिया जी,
4: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
3: जी मगर
4: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
5: मुखिया जी,
4: अब क्या है?
5: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
4: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ, और हम 3री मंजिल पर जा रहे हैं।
0: मुखिया जी
4: चैन नहीं लेने देंगे, अब क्या है?
0: जी वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
4: चढ़ रहा है। अरे तो 3री मंजिल किस लिए है? देखो सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
0: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी है। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है, हम तो जा रहे हैं, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
4: नालायक, डरपोक, अरे भाग रहे हो? इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ तुम लोग, मैं यही रहूंगा।
0: जैसी आपकी मर्जी।
4: अरे ये तो सचमुच चला गया, कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? हाँ, छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है, दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी ही पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर अगर मेरे इस मकान की 3री मंजिल में पानी में डूब गई तो ये क्या हो रहा है? नहीं, ये इतना मजबूत मकान भी गिर रहा। हे भगवान, मैं क्या करूं? अरे कहां जाऊं मैं? ये पानी में डूब रहा हूं मैं। अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊं? अरे कोई है? अरे बचाओ मुझे, अरे मैं डूब रहा हूं मैं। ये क्या? ये लगता है कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ूंगा किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं। लेकिन ये पानी तो मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा, उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा मैं। वो पेड़,
0: आखिर पहुंच ही गया। यहाँ तो इस तरह के कितने ही पेड़ थे।

जो मैंने कटवा दिए, लेकिन ना जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद शायद मेरी मेरी आंखें खोलने के लिए, हाँ शायद मेरी आंखें खोलने के लिए

0: बांगुई। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग उमंग उमंग
1: उमंग। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, कड़ी संख्या 1318। FM 102.103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

0: पोविन अय्यर के संगीत निर्देशन में कश्मीरी का लिखा ये गीत आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। फिल्म थी ये रात फिर ना आएगी।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: बख्शी का लिखा सूरज और चंदा फिल्म का गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी की आवाज में। तर्ज थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

0: मोम की गुड़िया फिल्म का दो गाना आपने सुना लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की तर्ज थी।
1: कहूंगा एक बार नहीं हजार बार कहूंगा तुम चोर हो चोर हो चोर हो।
2: क्या चुराया है मैंने तुम्हारा? बोलो क्या चुराया है?
3: मेरा दिल।
2: क्या

कान में झुमका जाल में ठुमका कमर पे चोटी लटके हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके हो तेरा रंग है नशा

इन जुल्फों में उलझ उलझ कर कई मुसाफिर भटके, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके। हो तेरा रंग है न

पछताने, ओ जाने जरा नजरे मिला ले समझी। अरमानों के खुले दरीचे आया जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके। हट तेरा रंग है।

खरे खरे जाती है क्यों परे परे, तेरी जिंदगी में आ जा प्यार को बसा दूं मैं। पास अगर तू आ जाए सांस सांस टकरा जाए, दिल क्यों धड़कता है तुझको दिखा दूं मैं। तीर पे तीर चला के मुस्का के शर्मा के मुझे पास बुला ले, वहीं पे मेले लग जाए तू देखे जहां पलट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके। हो तेरा रंग है नशे।

खुमार बारावंकवी की रचना आपने सुनी, नौशाद का संगीत था, साज और आवाज फिल्म में यह आवाज थी मोहम्मद रफी की। अब यादों की महफिल के कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न हो

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। थोड़ी देर में होगा
1: जयपुर अजमेर केंद्र है, 1 बजने वाला है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा है कि डिजिटल इंडिया विकसित और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। उन्होंने आज सोशल मीडिया पर कहा कि पिछले 11 वर्षों में डिजिटल इंडिया अभियान ने गरीबों और वंचितों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा देशवासियों के जीवन को अधिक सुगम बनाया है। उन्होंने कहा कि ये पहल देश में सुशासन, पारदर्शिता और डिजिटल सशक्तिकरण को नई दिशा दे रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि ई गवर्नेंस से प्रशासन और जनसेवाओं की पहुंच में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान और यूपीआई जैसी पहलों से आम नागरिकों को बहुत सुविधा मिली है तथा छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी कारोबारियों को भी इसका लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री आज जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एआई और साइबर सिक्योरिटी प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा की गई कई महत्वपूर्ण पहलों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि राज्य में एआई और मशीन लर्निंग एआईएमएल नीति लागू की गई है। साथ ही राजस्थान संपर्क पोर्टल जन शिकायतों के निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
3: राजस्थान संपर्क आज प्रदेश भर में जन अभियोग निवारण का प्रभावी मंच बन चुका है। इस प्लेटफॉर्म पर हर महीने 2.5 से 3 लाख शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण हो रहा है। मैं खुद राजस्थान संपर्क पर आने वाली जन शिकायतों को सुनता हूं और हर शिकायत का प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित भी करता हूं। हमारा मानना है कि डिजिटल तकनीक कामकाज को केवल आसान ही नहीं बनाती है, बल्कि नागरिकों के जीवन को सुविधाजनक और बेहतर भी बनाती है।
2: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्मार्ट परियोजना, ई मित्र व्हाट्सएप सेवाओं तथा राजस्थान इनोवेशन चैलेंज पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कॉफी टेबल बुक का भी अनावरण किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है। इस पहल में विश्वास व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे गांव में आजीविका के नए अवसर पैदा होंगे, महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबी ग्रामीण भारत के लक्ष्य को

बढ़ावा मिलेगा। दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर आज सुबह हुए हादसे की विस्तृत जांच के लिए जिला प्रशासन ने जांच दल का गठन किया है। जिला कलेक्टर डॉ सौम्या झा ने दल को दुर्घटना के सभी पहलुओं की गहन जांच कर जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि आज अल सुबह धनावड़ा के पास एक स्लीपर बस और ट्रेलर की टक्कर के बाद आग लगने से बस में सवार 8 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए थे। घायलों का उपचार विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यान आज से पर्यटकों के लिए बंद हो गए हैं। मॉनसून और वन्य जीवों के प्रजनन काल को देखते हुए 30 सितंबर तक पर्यटन गतिविधियों पर अस्थायी रोक रहेगी। इस दौरान वन्य जीवों के लिए अनुकूल वातावरण बनाए रखने और वन क्षेत्रों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पाली जिले के जवाई वन्य जीव क्षेत्र में 1 अक्टूबर से फिर से सफारी का संचालन हो सकेगा। इसी तरह

पर्यटन गतिविधियों पर अस्थायी रोक रहेगी। इस दौरान वन्य जीवों के लिए अनुकूल वातावरण बनाए रखने और वन क्षेत्रों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पाली जिले के जवाई वन्य जीव क्षेत्र में 1 अक्टूबर से फिर से सफारी का संचालन हो सकेगा। इसी तरह सरिस्का टाइगर रिजर्व का कोर एरिया भी पर्यटकों के लिए बंद होगा, हालांकि बफर क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियां जारी रहेंगी। उधर सवाईमाधोपुर स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पिछले वर्ष 1 अक्टूबर से शुरू हुआ पर्यटन सत्र कल समाप्त हो गया। बीते पर्यटन सत्र में 6,77,000 से अधिक देशी विदेशी पर्यटकों ने राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण किया, जिससे राज्य सरकार को लगभग 70 करोड़ रूपये की आय प्राप्त हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

अभिनेत्री नंदा और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया ये गीत था द ट्रेन फिल्म से। हमारे श्रोताओं ने इस गीत के बारे में लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, आर डी बर्मन की तर्ज थी और आनंद बख्शी का लिखा ये गीत था। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि हम खुशफहमी और गलत फहमी के माया जाल में जकड़े हुए हैं, हमें लगता है जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और हम तारीफ के काबिल हैं, जब भ्रम टूटता है तो गलत फहमी का सत्य स्वीकारना पड़ता है। और इन्होंने गीत जो चुना है जब दीप चले आना, तो देखते हैं कि कौन कौन से गीत आज के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। वैसे आज की फिल्में भी आप जरा ध्यान दीजिए श्रोताओं, ये फिल्में भी कुछ इसी तरह की हैं, द ट्रेन और आगे भी जो फिल्में आप जिनके गीत आप सुनेंगे उन्हें आप ध्यान दे सकते हैं। अगर आपने वो फिल्में देखी हैं तो उनके बारे में आप बता भी सकते हैं कि उनमें क्या गलत फहमियां थी। और एक और श्रोता ने लिखा है कि गलत फहमियां भ्रम भ्रांति यानी जीवन का एक छुपा हुआ राज जो प्यार मोहब्बत में बहुत खूबसूरत लगता है, जो रेत का समंदर यानी अधूरी चाहतें पूरी कर देता है, सुहाने सपने सजाता है, मन की उम्मीदें बढ़ाता है, कल्पना रम्य सुख देता है, प्यार का कोमल मोहक आनंद लुटाकर खुश कर देता है। गलत फहमी को खुश फहमी बना देने वाली आज की सकारात्मक इबारत है। और वो चांद मुस्कुराया और पलकों के पीछे क्या तूने कह डाला मुझसे भला काजल तेरा रंग महल के दस्तरवाजे, बहुत सारे गीत इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत का मुख्य विषय भ्रम और यथार्थ तथा प्रेम की अनुभूति है, यहाँ तार्किक सत्य के बजाय खुश फहमियों के रोमांटिक संसार की को तरजीह दिया गया है, क्योंकि यही जीवन और प्रेम को जीने का हौसला देते हैं। भाषा बेहद काव्यात्मक संवेदात्मक और उर्दू हिंदी के खूबसूरत मिश्रण जैसे जज्बात ताबीरें बदगुमानी इबारत ऐसे सजी है, इसमें गद्य होते हुए भी एक लय और संगीत है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज कहीं जाना है लेकिन गीत तो सुनती रहूंगी, एक गीत जिसका मुझे बहुत इंतजार रहेगा आपकी इबारत में ये शब्द रंग महल के दस्तरवाजे, तो देखते हैं। और पलकों के पीछे भी इन्होंने चुना है, देखते हैं कौन कौन से गीत आज होते हैं शामिल। और एक और श्रोता ने चांद तो जब भी मुस्कुराता है पलकों के पीछे से कचरारे कचरारे ये दिल ना होता बेचारा रंग महल। और एक और श्रोता जिन्होंने कुछ शब्द इसमें से चुने हैं, ये शब्द हैं कि चांद पलकों के पीछे रंग महल हसीना चोरी चोरी चुपके चुपके शबनम रेशम की डोर दीप हो सकते हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि नैनों में दर्पण है चांद आहें भरेगा पलकों के पीछे से और लाखों हैं निगाह में, इन्होंने भी बहुत सारे गीतों को पसंद किया है। तो अगला गीत आपको सुनवा देते हैं और आपको बताना है कि ये जो फिल्म है श्रोताओं इसमें मुख्य अभिनेत्री कौन है। और कई बार आपको भी बहुत सारी गलतफहमियां हो जाती होंगी, कभी दो अगर जुड़वा बच्चे हैं तो उनके कपड़ों को लेकर, कभी कोई गिफ्ट अदल बदल जाता है, कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं, या फिर बहुत बड़ी गलतफहमियां देखने को मिलती हैं जब हम रेलवे के सफर पर होते हैं। तो ऐसी कुछ यादें अगर आपकी हैं तो आप हमसे ज़रूर साझा करें।

देवानंद साहब की एक बड़ी अजीब अदा इस गीत में नजर आती है श्रोताओं। उनके हाथ में एक चीज है, क्या आप ने ध्यान दिया है? तो आप हमें जरूर लिखकर बताएं। और एक अभिनेत्री जो नजर आ रही हैं वो तो तनुजा हैं, दूसरी अभिनेत्री के बारे में हमने आपसे पूछा है, तो आप हमें जल्दी से इसका जवाब भेज दें। और वैसे जो सवाल हमने पूछे हैं उसके बहुत सारे जवाब भी हमारे पास आए हैं। बहुत बहुत हम शुक्रिया करते हैं अपने सभी श्रोताओं का हमारे गद्यांश को पढ़ने के लिए और उस पर कमेंट्स करने के लिए, अपने गीत और अपनी बातें हमसे साझा करने के लिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गद्यांश में जीवन दर्शन की बहुत ही गहरी बात को एक रूपक के रूप में दर्शाया गया है। जिंदगी कोई गणित या सीधा समीकरण नहीं, बल्कि भावनाओं, उम्मीदों और एहसासों से बुना हुआ एक ऐसा कैनवास है जहाँ खूबसूरत गलत फहमियां ही इसके रंग को जीवंत बनाती हैं। जीवन की कला इन्हीं कोमल भावनाओं और गलत फहमियों को संजोने में है। कभी कभी किसी बात को सकारात्मक रूप से मान लेना भले ही वो पूरी तरह से सच न हो, जीवन को जीने योग्य और खूबसूरत बना देता है। गलत फहमियां अक्सर वे उम्मीदें और सपने होते हैं। तो एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि विविध भारती का सुरीला सफर, ये एक सफर कल कौन सी इबारत आएगी? कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, जिंदगी का सफर भी गलत फहमी और खुश फहमी के दो पहियों के बीच पिसता फंसता चला जाता है, चलता रहता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां विचारों, शब्दों या इरादे का गलत अर्थ गठन होता रहता है। कभी धूप तो कभी छांव। और इन्होंने एक और हमारी एक और श्रोता लिखती है कि चांद जाने कहां खो गया, आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं, हुस्न से चांद भी शर्माया है। और कुछ गीत इन्होंने पसंद किए हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आदमी की जिंदगी खुशफहमी और गलत फहमी से भरी हुई है। मुझे खुशफहमी रहती है कि मेरी कमेंट अच्छी है और आप पढ़ेंगे जरूर, लेकिन पूरा कार्यक्रम समाप्त हो जाता है, आप कमेंट नहीं पढ़ती, तब महसूस होता है कि मैं कितनी बड़ी गलत फहमी में था। तो ये भी गलत फहमी हो सकती है आपको भी और मुझे भी, क्योंकि मैंने ऐसा मुझे याद पड़ता है मैंने कई बार आपकी कमेंट पढ़ी है, तो हो सकता है कि यहाँ भी कुछ गलत फहमी हो। बहरहाल जो गलत फहमियां हैं उन्हें मिटा देना ही ज्यादा अच्छा होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि बहुत आज की इबारत की पहली लाइन, क्या सचमुच चांद मुस्कुराता है? आपका जवाब इन गानों में मिल गया। जी हाँ, ये चांद सा रोशन चेहरा, शम्मी कपूर का रोमांस और चांद, क्या बात है। इन्होंने अपनी तरह से गीतों को चुना है। एक और श्रोता लिखती है कि अजीब कश्मकश है ये यकीन और गुमान के बीच, मैं खुद को तुझ में ढूंढती हूँ या तो मुझ में ठहर जाता है। अजब बंदिश, अजब आजादी के दरमियान हूँ किताब।

अब मैं तुझे पढ़ती हूँ कि तू मुझे पढ़ता है, क्या बात है। और इसी तरह का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओं, शशि कपूर इस फिल्म में हैं और क्या रोल है उनका इस फिल्म में, क्या आप बता सकते हैं?

इंद्र के किरदार में होते हैं श्रोताओं सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का ये गीता। इस फिल्म में बड़ी अजब सी गलतफहमी थी जो चेहरे को लेकर थी, और अगर आपने ये फिल्म देखी हो तो बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। वल्लभ भाई पटेल का लिखा ये गीत था, लता मंगेशकर भूपेंद्र की आवाजें थी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वो चांद खिला वो तारे हंसे आंखों में काजल नैनों में बदरा छाए, और बहुत सारे गीतों को इन्होंने चुना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि रिश्तों की डोर को हकीकत से ज्यादा गलतफहमियां कमजोर करती हैं, सच्चाई और बातचीत के अभाव में पनपी ये अजब फहमियां करीबियों में दूरियां पैदा करती हैं। गलत फहमी ने बातों को बढ़ा डाला यूं ही, वरना कहना कुछ था वो कुछ समझे और मुझे कुछ और कहना था। जी हाँ, लेकिन अगर ये गलत फहमियां हो जाएं तो आप एक काम कर सकते हैं कि मोबाइल पर बात कर सकते हैं या फिर अपनी तरफ से ही कुछ मना सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अगर आपके बीच कोई अनबन हो जाए तो आप एक दूसरे को किस तरह से मनाते हैं, ये गलतफहमियां किस तरह से दूर करते हैं, क्योंकि ये भी समझदारी की ही बात होती है श्रोताओं। गलतफहमियों में कुछ रखा नहीं है, जो खुशफहमियां हैं वो और गलतफहमियां, इन दोनों में बड़ा बारीक सा रेशम के सा अंतर होता है, इसे पहचानने की जरूरत है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आज के गाने एक जब दीप जले आना जब शाम ढले जाना, दो दिल के टुकड़े टुकड़े करके, और इन्होंने भी अपनी जो एक लिस्ट है वो बनाई है। एक और श्रोता लिखती हैं, गलत फहमियां रिश्तों में दूरियां बढ़ाती हैं जबकि खुशफहमियां मुस्कुराने का एक बहाना बन जाती हैं। जब मन की धुंध छट जाती है, बदगुमानी के बादल हट जाते हैं और विश्वास के दीप जल उठते हैं, तब मोहब्बत अपने असली रंग में खिलती है। लेकिन हर गलत फहमी बुरी नहीं होती, कुछ खुशफहमियां रिश्तों में महक बनकर रहती हैं, विरेत के समंदर में दूर दिखाई देती हैं, उस नमी की तरह जो भले ही हाथ में ना आए लेकिन सफर को उम्मीद और दिल को मुस्कान दे जाती है। जब रेत की बात है श्रोताओ, तो रेत में अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि नदी है या समंदर है, इसे क्या कहते हैं, अगर आप बताना चाहें तो जरूर बताएं। और एक और बात है कि कस्तूरी मृग जो है उसे हमेशा ये गलतफहमी होती है कि कस्तूरी कहीं और है, इस बारे में आप क्या जानते हैं तो हमें जरूर बताएं। इस फिल्म में एक्ट्रेस के दो रोल को आपको बताना है नाम।

जुड़वा लड़कियों को लेकर जो ये फिल्म बनी थी, इसमें गजब का सस्पेंस था। श्रोताओं, मेरा साया फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। राजा मेहदी अली खां के बोलते मदन मोहन का संगीत था। और हमने आपसे पूछा था कि दो नाम कौन से थे अभिनेत्री साधना के, तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, और जिन श्रोताओं ने नहीं लिखा है वो भी जरूर हमें बताएं। और गीता और निशा, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। और आपने अगर ये फिल्म देखी है तो इस फिल्म का कौन सा गीत आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? श्रोताओं, अगर आप चाहें तो आप बता सकते हैं। और हमने आपसे ये भी पूछा था कि रेल के सफर के दौरान बड़ी सारी गलतफहमियां होती हैं, तो इस बारे में भी आप हमें जरूर लिख सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की हमारी जो इबारत है, मैं हमको तो पता भी नहीं चला कि हम चांद से रेत पर आ गए और बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार भी हो गए। इस साजिश में कब फंसे पता भी नहीं चला। एक और श्रोता लिखते हैं कि ज्वेलथीफ का जो गीत हमने आपको सुनाया, उसमें मछली पकड़ने का कांटा और साथ में उसमें फंसी मछली है। जी हाँ, एक सवाल और पूछा था कि कौन है उसमें मुख्य अभिनेत्री, तो वैजयंती माला थी। एक और श्रोता ने लिखा है, अगर दिल से एहसास, उम्मीदें और ये प्यारे भ्रम निकाल दिए जाएं तो जीवन एक अंतहीन रेत के समुंदर जैसा बंजर हो जाएगा। जहां फैलाव तो बहुत होगा पर सुकून की एक बूंद भी नसीब नहीं होगी। वास्तव में हमारी कल्पनाएं ही इस रसीन जिंदगी में रस घोलती हैं, जैसे कस्तूरी अपनी खामोश खुशबू से पूरे माहौल को महका देती है। ठीक वैसे ही जज्बात इंसानी रिश्तों को जो है जिंदा रखते हैं। कभी कभी जिंदगी को मरुस्थल बनने से बचाने के लिए तर्कों को परे रखना पड़ता है, क्योंकि जब इंसान दिल की गहराइयों से जुड़ता है तभी वो रिश्तों के असली रूप को जी पाता है और जीवन में प्रेम के दीप जलते हैं। क्या ही सुंदर बात इन्होंने लिखी है। एक और श्रोता लिखते हैं, इबारत के लिखने के दायित्व को सौंपने के क्रम में अग्रसर हो रही प्रस्तुत आज की इबारत मन के भेदों में निहित अंतर्द्वंद को भली भांति स्पष्ट कर रही है, और इस दृष्टिकोण से ही आज की ये इबारत स्वयं में ही इबादत करने योग्य है। एक और श्रोता लिखती हैं कि मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं, ख्वाहिश अधूरी, मगर जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमियां भी जरूरी हैं।

इस गीत में श्रोताओं और इस फिल्म में सांपों के बारे में बहुत कुछ है या सांप के बारे में बहुत कुछ है। वैसे रस्सी और सांप, इनमें तो बहुत गलतफहमियां होती हैं। क्या आपको हुई हैं?

नागिन फिल्म का ये गीत आपने सुना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि खुशफहमियां और गलत फहमियों में के बीच क्या क्या होता है, दो दिलों में कैसी कैसी शरारतें पैदा होती हैं, तरह तरह के गीतों का मजा लेते हैं इस कार्यक्रम में। एक और श्रोता लिखते हैं कि गलत फहमी जिंदगी में अक्सर गलत फहमियां हो जाती हैं, कभी हम व्यर्थ की खुशफहमी पाले रहते हैं, परिणाम जब इसके विपरीत आते हैं तो पता चलता है। एक और श्रोता लिखते हैं कस्तूरी सुख है, हिरण रूपी चैतन्य आत्मा में कस्तूरी सुख है और नाभि यानी वर्तमान पर्याय में है। जी हाँ, ये तो है ही है, काव्यात्मक तरीके से आपने लिखा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। लेकिन हमने आपसे ये पूछा था कि कस्तूरी मृग क्यों वन वन घूमता है। जी हाँ, वो तो कस्तूरी की सुगंध के पीछे घूमता है श्रोताओं, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो कस्तूरी है वो कहीं और है, लेकिन ये तो कोरा भ्रम होता है, वो तो उसकी नाभि में होती है। इसलिए हमने आपसे ये सवाल पूछा था और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस सवाल के जवाब को दिया भी है, देने की कोशिश भी की है। एक और श्रोता लिखते हैं कि कई दिनों से घरवाली के साथ शीत युद्ध चल रहा है, सिर्फ इन्होंने बड़ी ही बड़े प्यार से कह सकते हैं कि कमेंट लिख दिया है कि घरवाली के साथ शीत युद्ध चल रहा है, सिर्फ मूछों को लेकर संसार आसार है, छोटी छोटी बातों पे बवाल होते रहते हैं। जी हाँ, लेकिन ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं ये गलत फहमियां पैदा करती हैं, और कभी कभी ये जब खुश फहमियां बन जाती हैं तो कभी थोड़ा सा हम खुश भी हो लेते हैं। एक और श्रोता लिखती

हैं कि गलतफहमी पे मैं बताना चाहूंगा, मेरी धर्मपत्नी जुड़वा है, अपनी जुड़वा बहन से सिर्फ 10 मिनट छोटी हैं, दोनों एक ही स्कूल में हैं और एक ही क्लास में पढ़ती थी। धर्मपत्नी ने मुझे सगाई के बाद बताया कि उन्हें टीचर्स ने गलतफहमी से बचने के लिए कह रखा था कि स्कूल जब भी आए तो साली साहिबा एक चोटी बनाए और धर्मपत्नी पत्नी दो चोटी रखें। मैं बताना चाहूँगा कि मुझे दोनों को पहचानने में गलतफहमी नहीं होती, तो ये तो अच्छी बात है। और इस तरह से जुड़वा बच्चों में भी होता है श्रोताओं, तो जो एक गलतफहमियां जीवन में होती हैं वो तो होती रहती हैं, लेकिन हमें किस तरह से इससे निपटना है और कुछ एक तरीका तो गोलमाल फिल्म में जो अमोल पालेकर हैं उन्होंने भी बताया है। तो आप हमें बताएं कि ये दो नाम कौन से थे, और संजीव कुमार की एक फिल्म थी जो गलत फहमियों पर आधारित थी, जिसमें देवेंद्र वर्मा भी थे, मौसमी चटर्जी भी थी और बहुत सारे कलाकार थे। तो आप बताएं उस फिल्म के बारे में।

कटी पतंग फिल्म का ये गीत था जो गलत फहमियों पर आधारित ये फिल्म थी श्रोताओं, और अभी तक जो गीत हमने लिए हैं वो ऐसी ही फिल्मों से हमने लिए हैं। तो ये जो फिल्मों के गीत आप सुन रहे हैं इनमें कौन सी फिल्म आपको ज्यादा पसंद है ये आप चाहें तो बता सकते हैं। और गोलमाल फिल्म के कैरेक्टर जो हैं उनके बारे में हमने आपसे पूछा था, अमोल पालेकर के बारे में, और एक फिल्म संजीव कुमार की थी जिसमें देवेंद्र वर्मा और ये शेक्सपियर के उपन्यास पर थी। तो आप इसके बारे में भी अगर आपको याद हो तो लिख सकते हैं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि गलतफहमी और भ्रम दोनों ही मानसिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से भ्रामक स्थितियां हैं, लेकिन दोनों के मूल कारणों और प्रभावों में गहरा अंतर है। जहां गलतफहमी दो लोगों के बीच विचारों के आदान प्रदान में कमी का परिणाम है।

वहीं भ्रम व्यक्ति की स्वयं की समझने की क्षमता में त्रुटि या मानसिक विकार है। एक और श्रोता ने लिखा है, फिल्म ज्वेल थीफ देवानंद अशोक कुमार वैजयंती माला पूरी फिल्म में लगता है कि देवानंद ही हैं जो असल जो चोर हैं, लेकिन वैजयंती माला का पहचान की इन्होंने मतलब फिल्म की जो बात की है। एक और श्रोता लिखते हैं कि अक्सर हम जागते हुए भी सपनों को देखते हैं और कल्पना लोक में पहुंचकर बहुत कुछ देखते हैं पर असलियत में वहां कुछ भी नहीं होता। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी हमें गलतफहमी होती है। जी हाँ, कई बार। और एक और श्रोता ने लिखा है कि साधना जो दो रोल में है, मेरा साया फिल्म में एक सुनील दत्त की पत्नी और दूसरी डाकू के गिरोह की सदस्य थी। एक सवाल आपसे पूछते हैं श्रोताओं कि दो जो गायिकाएं हैं उनके नाम आप पहचानिए और सोचिए कि जब आप उनके गीत सुनते हैं तो क्या आपको कोई गलतफहमी होती है कि ये गीत किसने गाया है, इन्होंने गाया या इन्होंने गाया।

ये दो सहेलियां हैं, वो बातें कर रही हैं, बता रही हैं कि उनके महबूब की क्या पहचान है, क्योंकि गलतफहमी ना हो जाए इस वजह से। एक और श्रोता ने लिखा है कि झुमका गिरा रे, ये गीत बहुत अच्छा लगता है मेरा साया फिल्म का। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरा साया फिल्म के तो सभी गीत बहुत अच्छे हैं, लेकिन नैनो में बदरा छाए गीत सुनो तो अनुभूति का स्तर जो होता है वो अलग होता है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि इसी सवाल के लिए जो हमने आपसे पूछा था कि मृग तृष्णा के बारे में उन्होंने लिखा है कि जो रेत में अक्सर या रेत के समंदर की तरह नजर आती है, ऐसा लगता है कि दूर पानी है लेकिन पानी वहां होता नहीं। और जो सवाल हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, दो गायिकाएं हैं, क्या उनके गीत में आपको कुछ गलतफहमियां आवाज में होती हैं? तो अगर आप पहचान रहे हैं इन्हें तो आप जरूर

लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर जी की बात हम कर रहे थे, क्योंकि इनके गाए हुए बहुत सारे गीत ऐसे हैं जिसमें बड़ी सारी गलतफहमियां हो जाती हैं कि किस गीत को किसने गाया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि संजीव कुमार मौसमी चटर्जी अभिनीत फिल्म इतनी सी बात का इन्होंने जिक्र किया है। जी हाँ, हम लेकिन बात कर रहे हैं फिल्म अंगूर की। और एक और श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक सामाजिक ज्वलंत विषय पर आधारित फिल्में हैं ये, ऐसी गलतफहमी अगर आ जाए तो बैठकर सुलझा लें, नहीं तो कितनी जिंदगियां जिंदगी जो होती है वो बर्बाद हो जाती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरे महबूब फिल्म के बारे में कि अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म ये थी, साधना पर फिल्माया गया गीत था और साथ ही अमिता भी नजर आती हैं श्रोताओं, और इस गीत के बारे में भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि शब्दों से ज्यादा हमारी बॉडी लैंग्वेज और लहजा माने रखता है, यदि कहे गए शब्द और बोलने का तरीका मेल नहीं खाते तो गलतफहमी हो जाती है। कई बार लोग बातचीत के दौरान सिर्फ अपनी बात रखने का इंतजार करते हैं या आधा सुनकर ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं। आपको फिल्म और कलाकार बताने हैं।

की कसम फिल्म का ये गीत था मुमताज पर फिल्माया गया, लता मंगेशकर की आवाज थी और श्रोताओ दो जो कलाकार हैं गायक कलाकार उनके बारे में हमने आपसे पूछा था।

सुनिश्चित शोर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं और हमने जो आपसे सवाल पूछा था श्रोताओं, इस फिल्म में सुनील और विनोद के बीच एक बड़ी गलतफहमी होती है। गोलमाल फिल्म में राम प्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद हैं और अंगूर में संजीव कुमार और देवेंद्र वर्मा क्रमशः अशोक और बहादुर की भूमिका में।

मलिकर और जरीना बहापर फिल्माए गए ये गीत आप सुन रहे थे चितचोर फिल्म से। आवाज़ें थी यशुदास और हेमलता की। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपकी सभी कमेंट्स के लिए आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं संपन्न होता है श्रोताओं।

दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज त्रिवेणी की धाराएं मिल रही हैं डॉक्टर्स डे पर। आज पहली जुलाई कैलेंडर की वो तारीख जो हमारे जीवन को स्वस्थ बनाने में अहम भूमिका निभाती है। आज की तारीख उन डॉक्टर्स के नाम है जो हमें बीमार होने पर नया जीवन देते हैं। मरीज के अटूट विश्वास और एक चिकित्सक के निपुण प्रयास के बीच जो अदृश्य सेतु बनता है वही संसार की सबसे सुखद अनुभूति होती है। डॉक्टर्स तमाम दवाइयों के साथ साथ जब अपनी दुआ की पोटली थमाते हैं और कहते हैं चिंता की कोई बात नहीं है, आजकल मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो चुका है, जल्द ही स्वस्थ हो जाओगे, तो आपकी आधी बीमारी उड़न छू हो जाती है। आप सबके मन की चिंताएं दूर हो जाती हैं जब सफेद कोट में एक चिकित्सक आपसे मुस्कुराकर नसीहत की पोटली थमाते हैं, तब आप और हम यही कहते हैं।

ईश्वर के बाद जीवन दायक हमारा डॉक्टर ही होता है। ये दिन देश के सभी डॉक्टर्स के प्रति आभार जताने का एक खास मौका है। डॉक्टर विधान चंद्र राय को चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए 1961 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म और उनकी याद का दिन भी 1 जुलाई है। उन्हीं की याद में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर्स की अनिद्रा और अथक परिश्रम में ही जाने कितने परिवारों की चैन की नींद और अधरों की खोई हुई मुस्कान महकती है। जब डॉक्टर आपको मुस्कान देते हैं तो बदले में उन्हें भी आप

जब कोई डॉक्टर मुस्कुरा कर कह दे कि फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दवाएं तो सिर्फ साइंटिफिक फॉर्मूला हैं, असली जादू तो उस डॉक्टर के भरोसे और उनकी डांट में होता है जो अपनों जैसी लगती है। अपनी खुशियां, अपने त्योहार, यहाँ तक कि अपनी नींद भी कुर्बान कर देते हैं डॉक्टर्स। ये हौसला सिर्फ डॉक्टर के पास ही होता है जब डॉक्टर कहते हैं कि आप स्वस्थ हो जाओगे। कहते हैं कि विज्ञान जब करुणा से हाथ मिलाता है तब एक चिकित्सक का जन्म होता है। अस्पताल के शांत गलियारों से लेकर आपातकाल की उन तनावपूर्ण रातों तक डॉक्टर के स्टेथोस्कोप की हर धड़कन में किसी बेबस परिवार की उम्मीद मुस्कुराती है। तो आज डॉक्टर्स डे पर देश के और दुनिया के सभी डॉक्टर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं पूरे विविध भारती परिवार की ओर से।

कहा जाता है कि ईश्वर हर जगह खुद नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने धरती पर फरिश्ता यानी डॉक्टर को भेज दिया। रात के 3 बज रहे हो या सुबह के 4, जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब कोई डॉक्टर किसी की जिंदगी बचाने के लिए जाग रहा होता है। किसी ने कहा है, मर्ज का खौफ मिट जाता है पल भर में,

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में UPI के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन GRAMJI अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि VBGRAMJI अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
2: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत GRAMJI अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत GRAMJI के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और

0: केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
2: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए, अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
1: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
3: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
1: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
3: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
1: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं, जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
4: आई एम प्लीज टू नो दैट दिस यूनिवर्सिटी हैज

0: developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
2: India's engagement.
3: भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है।
2: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
1: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर GST ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। GST से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में ISIS के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में ISIS और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया। इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन GRAMJI अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना

0: के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। बहुत बहुत स्वागत है सभी श्रोताओं का।

0: दुल्हन एक रात की फिल्म का गीत था लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में, राजा मेहदी अली खान का लिखा।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।

0: फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। तो उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

चित्रगुप्त की तर्ज थी मजरू सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी किशोर कुमार की आवाज में एक राज फिल्म से। और श्रोताओ, इस गीत के पहले हमने आपको सुनवाया था दुल्हन एक रात की फिल्म का नगमा। उस गीत में संगीत था मदन मोहन जी का। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

धवन का लिखा गीत आपने सुना, रवि का संगीत था, आशा भोसले की आवाज, फिल्म एक फूल दो माली से ये नगमा आप सुन रहे थे। ये गीत है जब जब फूल खिले, फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज है श्रोताओ, और यही है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार।
2: और मेरा भी यानी कि आरती श्रीवास्तव का भी आप सभी सखियों को, सभी सखाओं को, सभी श्रोताओं को और साथ में मंदाकिनी जी को
1: जी
2: नमस्कार।
1: नमस्कार आरती, कैसी हो?
2: बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो मौसम बदला है ना, सच में इसने बिल्कुल पूरा माहौल बदल दिया।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे ही मौसम बदलता है तो मन का मौसम भी बदल जाता है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ जगह तो अभी मौसम नहीं बदला है, वहाँ का मन का मौसम तो वैसा ही है।
2: बिल्कुल, हम प्रार्थना करेंगे जल्दी से वहाँ का भी
1: मौसम बदल जाए। लेकिन हाँ, मुंबई का जो मौसम है वो बिल्कुल बदल गया है। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक बरसात हो रही है और मन भी कुछ भीगा भीगा सा है ना?
2: जी हाँ, बिल्कुल।
1: और बहुत अच्छा लगता है, अपना एक आनंद अलग ही है आरती
2: जी। बिल्कुल,
1: कभी याद आते हैं वो दिन जब तुम बचपन में भीगा करती थी या कॉलेज के दिनों में जब जाती थी और रस्ते में भीग कर आती थी? मुझे तो याद है
2: बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता ना कि हम जान बूझ के भीगते हैं, फिर अगर ऐसा जरूरत हो तो भी निकलेंगे। वैसे भी थोड़ा सा भीगना बनता भी है जब बारिश का मौसम आता है, तो थोड़े समय के लिए सही छातों को एक तरफ रख दीजिए और थोड़ा बारिश में निकल के तो देखिए
1: उसका एक अलग ही मजा है।
2: बिल्कुल,
1: बचपन की यादें हमें है कि हम कितना भीगा करते थे और कभी माता पिता भी नहीं कुछ कहा करते थे, जैसे आजकल कह देते अरे बेटा मत भीगो, जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, खांसी हो जाएगी। हमारे माता पिता भी हमें नहाने देते थे बारिश में और हम नहाया करते थे और इतनी इम्यूनिटी मजबूत हुआ करती थी कि मुझे याद नहीं कि कभी बीमार पड़े हूँ बारिश में भीग के। हाँ, कभी कभार ऐसा हो गया होगा कि सर्दी लग गई है, लेकिन बड़ा मजा आता था स्कूल कॉलेज के दिनों में भी जब भीग कर साइकिल चलाते हुए आते थे, वो दिन बहुत याद आते हैं।
2: बहुत, सच में बारिश जो होती है ना एकदम सब कुछ बदल देती है, सब कुछ हरियाली सब जगह छा जाती है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे पूरा आप देखें जंगल हो या कहीं भी छोटा सा भी पेड़ होगा ना वो भी एकदम खिल उठता है जब बारिश की बूंदे पड़ती
1: है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसे ही जब मन पर कुछ बूंदे ऐसी गिरती हैं तो मन भी खिल उठता है। संगीत की कुछ बूंदे जब गिरती हैं तो हमारा मन खिल उठता है। लेकिन हाँ, उससे पहले हमें ये भी बताना है कि आज हम अपनी सखियों और सखाओं के लिए क्या क्या लेकर आए हैं।
2: तो आज हम लेकर आए हैं, सबसे पहले हम बात बता दें आपको, हम साड़ियों का जो संसार, जो बहुत जिसके बारे में महिलाएं सोचती हैं कि हम कौन सी नई साड़ी खरीद लें, हर महीने खरीद लें या हम थोड़ी थोड़ी बचत करते रहें और खरीदें, तो उन साड़ियों के संसार के अंतर्गत हम लेकर आए हैं टसर या घिचा सिल्क साड़ी, जो कि झारखंड की पहचान है।
1: अरे वाह, झारखंड की साड़ी पहनेंगे आज हम?
2: जी बिल्कुल। और अब हम बात कर लेते हैं, आज हम लेकर आए शब्द हमारा विचार आपके, इसके अंतर्गत हम बात

0: करेंगे प्रतियोगिता पर।
1: आहा, क्या बात है, जो आपके और मेरे बीच भी चलती है।
0: बिल्कुल लेकिन हमारे बीच स्वस्थ जो
1: प्रतिस्पर्धा चलती है। बिल्कुल, हमारे सखी और सखाओं से हम कहना चाहेंगे कि इस प्रतियोगिता का आपको अर्थ नहीं लिखना है कि जैसे हम एक निबंध लिख देते हैं ना, निबंध नहीं लिखना है कि प्रतियोगिता क्या है। आपको ये बताना है कि आपके जीवन में इस शब्द पर क्या विचार है। आपने कभी जीवन में कोई प्रतियोगिता जीती? आपने जो पढ़ाई से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें आपने

0: मतलब एक होती ना कि स्वस्थ प्रतियोगिता, यानी कोई बात नहीं, चलो उसने आगे किया अब हम भी अच्छा करेंगे, एक होती है कि उसने कैसे किया,
1: मैं करके बता,
0: पीछे खींचे। आप बताइए कि मतलब कौन सी मतलब, आप प्रतियोगिता के बारे में
1: आपके कहने का मतलब ये है आरती कि कई बार क्या है कुछ लोग जो है प्रतियोगिता के चक्कर में किसी की टांग खिंचाई कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, है ना। और ये जो ईर्ष्या और जलन हमारे अंदर होती है ना, किसी को बढ़ता हुआ देख करके उसकी शर्ट मेरी सफेद, मेरी शर्ट से सफेद क्यों वाली जो जलन है वो हमें थोड़ा परेशान भी कर देती है,
0: पीछे भी खींचती है,
1: पीछे भी खींचती है। आप एक ना एक दिन फिर पीछे हो जाते हो आप उस दौड़ में, खरगोश और कछुए वाली कहानी हमने देखी है ना। तो इसलिए आप प्रतियोगिता तो करें लेकिन स्वस्थ प्रतियोगिता रखें। तो बताइए आपके जीवन से जुड़े कुछ
0: आप अपना नजरिया हमें बताइए। और साथ ही आज हम बात करने वाले हैं पारिवारिक चिकित्सक के ऊपर।
1: अच्छा,
0: देखिए चिकित्सक के पास हम सभी जाते हैं लेकिन हमारा एक फेवरेट डॉक्टर होता है जो घर का डॉक्टर कहते हैं, ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं कि कुछ भी हो, सर्दी जुकाम या कुछ बड़ी बात कुछ भी हो, सबसे पहले हम उनके पास जाते हैं, उनकी राय मांगते हैं। फिर वो जब हम कहते हैं कि नहीं आप इसको आप बड़े डॉक्टर को दिखाइए या इसके लिए आप और टेस्ट वगैरह कराइए, तो फिर अब जब हम और दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं जिस पे सबसे पहले हम विश्वास करते हैं तो वो पारिवारिक डॉक्टर, उसके बारे हम बात करेंगे।
1: बताइए आपके पारिवारिक डॉक्टर कौन है, कैसे हैं और आपका जीवन में, आपके जीवन में उनका क्या स्थान है, कब क्या ऐसा घटा कि पारिवारिक चिकित्सक आए और आपकी उन्होंने मुसीबत को हल किया।
0: जी है ना, आप बताइए।
1: तो इन सभी पर हम विचार करेंगे, एक गीत सुन ले और
0: देखो ये आप बस मेरे साथ ना ऐसा मत करिए।
1: व्यंजन लेके आई
0: है। बिल्कुल, मैं व्यंजन इतना अच्छा लेकर आई हूँ और हमारे जो श्रोता है वो भी सब सखियां सखा सब लिख रहे हैं पकौड़ों के बारे में। सोचिए कितना, कहां बारिश का मौसम आते ही पकौड़ों की तो मतलब ऐसा लगता है कि बारिश के साथ में जो एक मिट्टी की सुगंध होती है ना उसके साथ पकौड़ों की
1: गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए। बिल्कुल सही कहा
0: जी।
1: तो बताइएगा आप अपने घर में इस वक्त या बारिश के मौसम में किस तरह से पकौड़े बनाते हैं, कई तरह के पकौड़े,
0: कौन से पकौड़े बनाते हैं,
1: कौन सी बेसन के, और
0: ताकि हम उसको एकदम उसको सोच के कल्पना करके उसको हम खा लें।
1: नहीं भी हमारे लिए भेजेंगे हमारे सखी और सखा और हम उसे खा भी लेंगे, ठीक है, क्योंकि मुंबई का जो मौसम है वो पकौड़ों का ही मौसम।
0: बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो मन तो भीग गया है, रिमझिम गिरे सावन।
1: जी बिल्कुल, इतना प्यारा गाना है ना, एकदम सावन की खुशबू आती है, इससे मिट्टी की खुशबू आती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और वही बात की मिट्टी की सौंधी खुशबू हम पसंद करते हैं और बरसात में भीगना पसंद करते हैं। पर कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि भाई बरसात में भीगे थे इसलिए बीमार हो गए, है ना, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, सर दर्द हो गया, और ऐसी स्थिति में हमें कौन याद आता है,
1: डॉक्टर।
0: हमारा डॉक्टर जो हमारा पारिवारिक डॉक्टर है,
1: जहाँ मतलब कभी भी जा सकते हैं।
0: हाँ।
1: और तुरंत हमें लगता है कि हम अभी बाहर नहीं जा सकते या बहुत दूर नहीं जा सकते, ढूंढ नहीं सकते, तो बस हम सबसे पहले अपने पारिवारिक डॉक्टर के पास जाते हैं।
0: जाते ही उन्हें फोन पर बताते हैं भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है और आप क्या कहते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि कुछ हल्का फुल्का है तो वो फोन पर ही बता देते हैं, अन्यथा वो घर आकर अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो वो भी घर आके,
1: अक्सर ऐसा होता है कि आ जाते हैं, मतलब जो पारिवारिक डॉक्टर होते हैं क्योंकि वो हमें जानते हैं, मतलब पहचान होती है तो आ जाते हैं।
0: बिल्कुल, तो तेज रफ्तार जीवन और बदलती जीवन शैली और बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं के इस दौर में आरती पारिवारिक चिकित्सक की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है, है ना
1: जी। बिल्कुल,
0: आज लोग छोटी सी परेशानी के लिए भी अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं उनके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन एक ऐसा डॉक्टर जो पूरे परिवार के स्वास्थ्य का, आदतों का, आवश्यकताओं को जो समझता हो, उसकी भूमिका आज भी बहुत महत्वपूर्ण है,
1: बहुत ज्यादा। क्योंकि देखिए कभी ऐसा होता है ना कि हालत इतनी अच्छी नहीं होती कि हम बहुत दूर तक जाएं, या कभी बहुत तेज बुखार है, इस तरीके की चीजें, तो जब बहुत छोटी मोटी सी कुछ चीजें होती हैं तो हम फोन पर बात कर लेते हैं डॉक्टर से, तो पूरा हालचाल वो पूछ लेते हैं, कभी वीडियो कॉल पर देख लेते हैं, तो कहते हैं कि अच्छा आप ये मेडिसिन हमें वो बता देते हैं कि आप ये दवाइयाँ ले लीजिए, तो हम ले लेते हैं तो हमें फायदा हो जाता है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत समय से चल रही है, तो वो डॉक्टर खुद ही बताते हैं कि नहीं अब आप दूसरे डॉक्टर को दिखाइए, जो आप इस जो इस चीज का विशेषज्ञ है, तो आप वो उसको दिखाइए, तो वो अपने आप ही सलाह देते हैं।
0: हाँ, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो बीमारी हमें हुई है उसका इलाज किसी और डॉक्टर के पास जाकर संभव है, तो हमारा पारिवारिक जो चिकित्सक है वो हमें सलाह देता है कि ये आपको, और कई बार वो भेज भी देते हैं नाम और पता लिखकर कि उन डॉक्टर से मिलिए, मेरा नाम बताइएगा
1: जी,
0: और मेरा रेफरेंस देकर आप उन डॉक्टर से मिलकर अपना इलाज करवाइए। ऐसी स्थिति भी होती है कई बार
1: जी।
0: तो पहले के समय में क्या होता था, लगभग हर परिवार का एक निश्चित चिकित्सक होता था, घर में किसी को बुखार आ जाए, चोट लग जाए, और कोई भी हमारी पारिवारिक जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती थी तो हम उसी चिकित्सक से संपर्क भी करते थे, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, वो हमारे को दवाई देने के अलावा मानसिक सपोर्ट भी करते थे।
1: बिल्कुल,
0: मतलब हमारा मानसिक इलाज भी कर देते, अरे डरो मत, ठीक हो जाओगे, सब ठीक होगा, कुछ नहीं हुआ है
1: जी। ये एक जो चीज होती है ना, जो आप हम मानसिक जो आधार दे देते हैं ना, तो वो बहुत फायदेमंद भी होता है ना। हाँ। कि आधी जो बीमारी होती है ना, क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है कि पता नहीं क्यों नहीं बुखार उतर रहा है, पता नहीं क्या परेशानी है, तो जब हम डॉक्टर को दिखाते हैं, जब हमें वो बताता है कि नहीं आप इतनी कोई बड़ी परेशानी नहीं है, आप ये दवा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, तो लगता है कि हाँ चलो हमें डॉक्टर को दिखा दिया, अब हम ठीक हो जाएंगे।
0: बिल्कुल सही कहा, और जो पारिवारिक चिकित्सक है वो केवल वही की बीमारी का इलाज नहीं करते बल्कि हमें मार्गदर्शक के रूप में भी वो होते हैं हमारे। और बच्चों के टीकाकरण से लेकर अगर बुजुर्गों की देखभाल तक देखा जाए, परिवार के हर सदस्य के स्वास्थ्य पर वो नजर रखते हैं, और उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो रोगी को केवल एक केस के रूप में नहीं देखते बल्कि एक व्यक्ति के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में समझते।
1: बिल्कुल, क्योंकि बहुत समय से इलाज हम करा रहे होते हैं तभी वो हमारे फैमिली डॉक्टर बनते हैं, तो वो जो डॉक्टर होते हैं तो वो अच्छे से समझ के करते हैं कि हाँ वो जानते हैं इतिहास हमारा कि हम क्या परेशानी हमें रही है, क्यों रही है, कोई एलर्जी तो नहीं है, तो वो हमारे जो फैमिली डॉक्टर है, जो पारिवारिक डॉक्टर है, वो इस चीज को अच्छे से समझता है, तो जो हम कहीं बाहर दूसरे डॉक्टर को दिखाने जा रहे होते हैं तो वो भी बताता है कि आप ये चीजें उनको पहले बता दीजिएगा, जिससे कि उस हिसाब से वो आपको दवा दे सकेंगे।
0: बिल्कुल सही कहा, और जैसे आरती आजकल जो है मधुमेह की बीमारी है, उच्च रक्तचाप हो गया है, तनाव है, हृदय रोग जैसी जीवन शैली संबंधी बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ भी रही है, तो ऐसे में पारिवारिक जो चिकित्सक है हमारा वो समय समय पर सलाह देकर इन बीमारियों को गंभीर होने से पहले ही रोक भी देता है कि भी आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये अपनी दिनचर्या रखनी है, इस तरह से एक्सरसाइज करनी है, इस तरह से

0: खाना खाना है
1: जी,
0: इस तरह की चीजें नहीं खानी
1: बिल्कुल
0: है।
1: और वो डॉक्टर जो है वो हमारी दिनचर्या पर नजर भी रखते हैं कि ऐसा तो नहीं आपने कुछ लापरवाही करी हो या आपने कुछ इस तरह से कुछ ऐसा खा लिया है, तो वो पूरा ध्यान भी रखते हैं। तो उनको पता होता है कि इनको हमें अभी हम इसको इनकी बीमारी को संभाल सकते हैं या नहीं संभाल सकते। अगर वो नहीं संभाल सकते हैं तो फिर वो हमें दूसरे डॉक्टर को रेफर कर देते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और आज भी क्या है, हमें बहुत जरूरत है एक ऐसे डॉक्टर की जो हमें समझ सके, है ना, हमारे परिवार के सदस्यों को समझ सके। और विश्वास का जो रिश्ता होता है डॉक्टर मरीज के बीच, सबसे बड़ी बात क्या होती है आरती, कि हमें डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको ये जो बीमारी है उसमें ये चीजें नहीं खाना है। कई बार मैं कुछ डॉक्टर्स के इंटरव्यू सुनती हूँ तो वो कहते हैं कि मेरे पास वही व्यक्ति आएगा जो खाने का कंट्रोल करेगा।
1: जी हाँ,
0: आपने अगर खाने पर कंट्रोल नहीं करना सीखा है तो फिर डॉक्टर भी लाचार हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे बीपी की समस्या है तो कहते हैं नमक कम खाइए। अब आप क्या कहते हैं, नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो नमक के बगैर खाना ही अच्छा नहीं लगता, मैं तो नमक ऊपर से और लेती हूँ। तो फिर डॉक्टर सोचिए क्या कहेंगे, वो कैसे आपको ठीक करेंगे। और फिर जब आप उनका कहना नहीं मानेंगे तो वो आपका कहा भी कैसे मानेंगे।
1: बिल्कुल, और जो फैमिली डॉक्टर होते हैं वो हमें थोड़ा डांट डपट भी देते हैं कि नहीं आपको ऐसा करना ही है, और वो समझ जाते हैं कि हमने कोई परवाही की है इस बात के बारे में भी। अगर हम कोई हम ज्यादा बीमार हो जाते हैं या उनकी बात नहीं मानते या कोई लापरवाही करते हैं तो फिर जाते हैं उनके पास, तो वो समझ जाते हैं कि नहीं आपने ये लापरवाही जरूर की होगी या आपको तला हुआ मना किया है तो आपने इसे खाया होगा तभी आपको ये परेशानी हुई है। तो क्योंकि वो हमारी बीमारी का इतिहास जानते हैं, हमारे बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो वो अच्छे से हमारा इलाज भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए उनका विश्वास हमें नहीं तोड़ना चाहिए। छोटी छोटी चीजों का जो स्वाद जीभ को लग गया है ना उस पर हमें कंट्रोल रखना चाहिए। जैसे अब आप तुम आज पकौड़े खिलाएंगे ना हमारे शहर तो मैं थोड़ा कम खाऊंगी।
1: बिल्कुल, और कभी कभी ऐसा नहीं कि आप रोज पकौड़े बनाने बैठ जाएं या रोज इस तरीके की तली हुई चीजें खाएं। कभी कभी चलती हैं ये सब चीजें, लेकिन हर समय नहीं।
0: बिल्कुल, अच्छा, आपको सीधा साधा खाना मौसम के अनुरूप खाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि स्वच्छ खाना, ताजा पका हुआ भोजन खाइए।
1: ये जो मौसम रहता है ना इसमें थोड़ा बैक्टीरिया भी पनप जाते हैं, तो इसलिए बेहतर होगा कि हम ताजा खाना खाएं, रखा हुआ खाना ना खाएं, और बेहतर होगा कि हम तला हुआ ना खाएं, सादा जो भोजन होता है वही सादा भोजन।
0: फ्रूट खाएं, ज्यादा से ज्यादा सैलेड खाने की कोशिश करें, अंकुरित अनाज खाएं, तो थोड़ा सा हमारा जो है स्वास्थ्य है अच्छा रह सकता है।
1: थोड़ा सा उसको रोस्ट कर सकते हैं, भून सकते हैं,
0: बहुत तरीके हैं खाने के,
1: बहुत अच्छा लगता है।
0: तो हमारे जो पारिवारिक डॉक्टर है ना आरती, वो भी खुश रहते हैं। वो नहीं चाहते कि जिस परिवार से वो जुड़े हैं वहाँ के परिवार के सदस्य बीमार रहे या उनके पास इलाज के लिए आए। उनकी सफलता भी तभी होती है जब उस परिवार के सदस्य सब सही रहे, स्वस्थ रहे।
1: तो हमारे जो श्रोता है वो भी लिख रहे हैं, तो उन्होंने एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि पारिवारिक चिकित्सक यानी फैमिली डॉक्टर की वजह से हमारे परिवार में सब स्वस्थ और सेफ महसूस करते हैं। उन्होंने हम सबको बिना जरूरी दवाइयों से बचाया है। उनका निदान सटीक रहता है। अगर रोग 5 दिन में काबू में नहीं आए तो वो उचित मार्गदर्शन देते हुए किसी सीनियर के पास भी भेज देते हैं। तो ये कहते हैं ये।
0: बिल्कुल, और भी किसी ने कुछ लिखा है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि फैमिली डॉक्टर अब ये इसके बारे में बात करें तो ना के बराबर ही रही है। अब नाखून से लेके सर के बाल तक हर अवयव का अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अलग विशेषज्ञ डॉक्टर होता है। और फिर ऐसी हालत हो जाती है कि मेरे बचपन में एक ही डॉक्टर बड़ी आत्मीयता से पूरे परिवार की वैद्यकीय देखभाल, उपचार, दवा पानी करते थे। कुटुंब का पूरा इतिहास उन्हें मालूम रहता था, और कठिन जो परिस्थिति होती थी उसमें मैत्री भरा जो सेकंड ओपिनियन होता है वो जो मैत्री भरा व्यवहार भी करते थे, और जो सेकंड ओपिनियन होता है वो जरूर लेना चाहिए। लगता है अब कि वैद्यकीय क्षेत्र में वो नैतिकता नहीं हो पा रही जो अत्यंत जरूरी है।
0: जी, एक श्रोता लिखते हैं कि सभी को डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। पारिवारिक चिकित्सक ये एक बहुत अच्छा विषय रखा है। डॉक्टर दिवस मनाया जाता है डॉक्टर के प्रति हमारे मन में जो व्यवहार या सम्मान है उसको व्यक्त करने के लिए ये आज का दिन है। और ये भगवान जैसे होते हैं पारिवारिक चिकित्सक हमारे लिए भगवान समान है। और मैंने भी एक पारिवारिक चिकित्सक को रखा हुआ है, मतलब उनके परिवार में भी पारिवारिक चिकित्सक है। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक चिकित्सक वो प्राथमिक देखभाल विशेषज्ञ होता है जो सभी उम्र, लिंग और बीमारियों के लोगों को निरंतर और व्यापक सेवाएं प्रदान करता है। ये चिकित्सक किसी एक बीमारी के बजाय पूरे परिवार के संपूर्ण स्वास्थ्य का ध्यान भी रखते हैं।
1: एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि ये चिकित्सक पद्धति मुख्य रूप से डॉक्टर और मरीज के बीच दीर्घकालिक संबंधों पर आधारित होती है, क्योंकि पारिवारिक चिकित्सक पूरे परिवार के स्वास्थ्य इतिहास को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो बीमारी के अनुवांशिक और पारिवारिक कारणों को अधिक सटीकता से समझ भी पाता है।
0: और देखिए, हमारे एक श्रोता हैं जो हमारे नियमित श्रोता भी हैं, वो लिखते हैं कि आज डॉक्टर्स डे पर हमारे दोनों बेटों को सुबह सुबह ही हैप्पी डॉक्टर्स डे

0: हमने विश किया है, सखी सहेली की सखी यानी मेरी धर्म पत्नी ने और मैंने और बेटियों ने, यानी उनकी दोनों बच्चे जो हैं डॉक्टर हैं। बड़े बेटे का MBBS कोर्स कंप्लीट हो गया है और छोटा बेटा MBBS थर्ड ईयर में है। बड़े बेटे की आज इमरजेंसी कैजुअल यूनिट गवर्नमेंट हॉस्पिटल अजमेर में ड्यूटी है। हमने बेटे को ये समझाया कि सभी पेशेंट से प्यार से बातें करे, अच्छी तरह चेकअप करे और जल्दी ही ठीक होने की हिम्मत भी बढ़ाए।
1: बहुत अच्छी बात है। और एक मशहूरता है जो लिखते हैं कि जैसे पारिवारिक मनोरंजन के लिए विविध भारती है, उसी तरह पारिवारिक स्वास्थ्य के लिए चिकित्सक होता है, यानी कि फैमिली डॉक्टर होना भी जरूरी है। विविध भारती जैसे हमारे दिल के मनोरंजन का ख्याल रखता है, उसी तरह फैमिली डॉक्टर हमारे आपके परिवार समेत सभी का सेहत का ख्याल रखते हैं, जो पूरे परिवार का प्राथमिक स्वास्थ्य बिंदु होता है। नवजात शिशु से लेकर मेरे जैसे बुजुर्ग तक सभी का इलाज करते हैं। इसके चलते आपको अलग से डॉक्टर खोजने की भागदौड़ से राहत मिलती है। आपके पूरे परिवार के स्वास्थ्य से जुड़ी हिस्ट्री उनके पास रहती है, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट की त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं। और साल 1995 से लेकर आज तक हमारा भी एक फैमिली डॉक्टर है, छोटी मोटी बीमारियों में सबसे पहले उनकी विजिट करते हैं, यानी उनके पास जाते हैं, अगर जरूरत हो तभी वो आगे के ट्रीटमेंट करवाने के लिए किसी और डॉक्टर को रेफर करते हैं।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात। और वही एक श्रोता ने लिखा है कि हर सफल इलाज के पीछे केवल दवा नहीं, डॉक्टर का धैर्य और समर्पण भी होता है। डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और डॉक्टर का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? मरीज का स्वस्थ होकर मुस्कुराना। वही हमने कहा ना कि हमारे फैमिली डॉक्टर कभी नहीं चाहते कि फैमिली के लोग बीमार है, वो चाहते हैं जितने स्वस्थ रहेंगे वो उनकी उतनी ही सफलता होती है। तो हमें भी अपने डॉक्टर की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए कि वो हमसे क्या चाहते हैं।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज भले ही अस्पताल और विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन पारिवारिक चिकित्सक की आवश्यकता आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वो अनावश्यक जांचों और दवाइयों से बचाते हुए उचित समय पर सही उपचार की दिशा दिखाते हैं। उसकी सलाह से स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल संभव होती है। वो परिवार के प्रत्येक सदस्य के स्वास्थ्य, उनकी पुरानी बीमारियों, जीवन शैली और आवश्यकताओं से भली भांति परिचित होते हैं, इसीलिए वो केवल दवाइयां नहीं देते बल्कि सही सलाह, समय पर सावधानी और मानसिक संबल भी प्रदान करते हैं।
0: क्या बात है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के दिन की डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर दिवस के प्रति जो सम्मान है, डॉक्टर के प्रति जो सम्मान या जो डॉक्टर की महत्ता है, हमारे जीवन में उसको याद करने और डॉक्टर के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज का दिन है। विषय बहुत ही अच्छा है, पारिवारिक चिकित्सक। बहुत सारे ऐसे पारिवारिक चिकित्सक हैं जो डॉक्टर कम लेकिन अपने से ज्यादा हमारा ध्यान रखते हैं। उनसे इतना अच्छा रिश्ता बन जाता है कि वो अपने हो जाते हैं। और मेरे जीवन में भी एक ऐसे डॉक्टर थे जो डॉक्टर से ज्यादा मेरे अपने हो गए थे, इसलिए मैं इस चीज को बहुत बेहतर समझ सकती हूँ। हालांकि वो डॉक्टर 2-3 सालों से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जब भी हमें कुछ होता है, हमें कुछ भी बताना होता है, तो हम डॉक्टर साहब को कॉल करते हैं और वो हमें हमारा चेकअप करने आ जाते हैं। इसलिए ये कितने खास होते हैं ये हम ही समझ सकते हैं
1: जी। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि चिकित्सक बहुत सारे पारिवारिक चिकित्सक बहुत सारे ऐसे पारिवारिक चिकित्सक होते हैं जो डॉक्टर कम लेकिन अपने ज्यादा बन जाते हैं। उनसे इतना अच्छा रिश्ता बन जाता है कि वो अपने हो जाते हैं। और मेरे जीवन में भी ऐसे डॉक्टर थे जो डॉक्टर से ज्यादा मेरे लिए अपने हो गए, इसीलिए मैं इस चीज को बहुत बेहतर समझ सकती हूँ। हालांकि वो डॉक्टर से कुछ 2-3 सालों से मेरी जो मुलाकात है वो नहीं हो पाई है, लेकिन मुझे जब भी कोई परेशानी होती है, मैं कुछ भी खाती हूँ, कोई भी दवाई खाती हूँ, तो उस डॉक्टर का ये ध्यान आता है। इसलिए मैं ये चीज समझ सकती हूँ कि फैमिली डॉक्टर कितने ज्यादा हमारे लिए खास हो जाते हैं, वो अपने हो जाते हैं जैसे घर के सदस्य।
0: बिल्कुल सही कहा। और चलिए अब संगीत भी तो एक चिकित्सक का काम करता है
1: जी, तो एक गीत सुनते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ तो मंदाकिनी जी, एक हमारे श्रोता हैं जो जो लिख रहे हैं कि उनका विविध भारती से उनका जो साथ है वो लगभग 25 से 30 साल पुराना है और कहते हैं कि बचपन में मेरी माँ नियमित रूप से विविध भारती सुना करती थी और उन्हीं के साथ मैंने भी रेडियो सुनना शुरू किया था। और अभी आते हैं अपने विषय पे, तो कहते हैं कि आज का विषय पारिवारिक चिकित्सक सुनकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। हमारे मोहल्ले के एक डॉक्टर अंकल थे जो घर के हर सदस्य को नाम से जानते थे। जब भी कोई बीमार पड़ता वो सिर्फ दवा ही नहीं देते थे बल्कि हौसला भी देते थे। मुझे लगता है कि एक पारिवारिक चिकित्सक परिवार के सदस्य जैसा ही होता है। तो इस तरह से अपने बारे में इन्होंने बताया।
1: बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी और हमने अपने कितने ही सारे श्रोताओं के विचार पढ़े हैं और अब एक संदेश सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: और अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल
0: जी।

0: इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है आरती
1: जी। और अब हम बात कर लेते हैं साड़ियों के संसार में, थोड़ी देर के लिए चलते हैं।
0: इतने सुंदर संसार में महिलाओं का बड़ा पसंदीदा संसार है ये।
1: जी बिल्कुल, महिलाओं का तो पसंदीदा संसार है ही, और साथ ही जो हमारे सखा है उनके लिए थोड़ा सा उनकी जेब खाली करने का संसार है।
0: उनके लिए सिर दर्द है।
1: जी बिल्कुल जी। आज हम आज लेकर आए हैं टसर यानी कि तुसार भी कहते हैं जिसे, घीचा सिल्क साड़ी जो कि झारखंड में होती है उसे।
0: बिल्कुल।
1: तो तुसार या टसर रेशम जो होता है जिसे कोसा रेशम भी कहा जाता है, भारत के जंगली रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है जो मुख्य रूप से झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। और घीचा जो होता है वो घीचा रेशम के कोकून का बुना हुआ अवशेष होता है, मतलब बिना बुना हुआ अवशेष होता है वो, जो अपनी अनूठी खुरदरी बनावट और प्राकृतिक आकर्षण के लिए जाना जाता है। वो रेशम की जो होती है ना उससे थोड़ा अलग होता है ये कोकून से बना होता है, तो ये थोड़ा सा अलग होता है उससे जो रेशम होती है।
0: तभी तो इस साड़ी की जो विशेषता है वो और साड़ियों से अलग होती है। कई बार हमने देखा है टसर साड़ी कुछ हमारी बहने पहनती है, जब हमें अच्छा लगता है हमारी सखियों को हम देखते है ना पहने हुए, कभी शादी समारोह में सहेलियां मिलती है, अरे भाई कौन सी साड़ी पहनी है आपने, अरे ये तो टसर साड़ी है, तो लगता है अरे वाह कितनी सुंदर साड़ी। तो बस यही है कि वो अन्य साड़ियों से थोड़ा सा भिन्न होती है। और तुसार रेशम जिसे जंगली रेशम या वन रेशम या तसर रेशम या फिर तुसार रेशम भी कहा जाता है, ये पीले और भूरे रंग के चौड़े पंखों वाले पतंगे से प्राप्त एक उत्कृष्ट धागा माना गया है। और ये रेशम उन रेशम के कीड़ों से बनता है जो जंगली वन वृक्षों पर प्रजनन करते हैं, शहतूत के वृक्षों पर नहीं करते। झारखंड में रेशम निकालने की प्रक्रिया का एक नाजुक हस्तशिल्प है ये।
1: जी, और जो टसर रेशम होता है उसकी साड़ियों में हल्की सुनहरी कढ़ाई के साथ साथ प्रकृति से प्रेरित प्रिंट होते हैं, फूलों के पैटर्न के साथ साथ पेड़, बेल, कलियां, पत्तियां और छोटे पत्तों के आकार के पैटर्न होते हैं। तुसार रेशम अन्य सभी प्रकार के रेशम की तुलना में कहीं अधिक बनावटदार होता है। ये कपड़ा अन्य किस्मों की तुलना में ठंडा और अधिक छिद्र युक्त होता है जो पहनने में बहुत आरामदायक लगता है, मतलब आप गर्मी में आराम से पहन सकते हैं इसको।
0: बिल्कुल सही कहा। और सबसे पहले रेशम के कोकून को चीनी, पानी और सोडा के मिश्रण में भिगोया जाता है और फिर इसे उबाला जाता है। तो उबालने की जो प्रक्रिया है उससे रेशम क्या होता है आरती, नरम हो जाता है थोड़ा, जिससे उसे खोलना थोड़ा आसान हो जाता है। कोकून को जितनी देर तक उबाला जाता है रेशम उतना ही नरम और महीन होता जाता है।
1: बिल्कुल। और परंपरागत रूप से रेशम को सुलझाने की ये प्रक्रिया महिलाओं द्वारा की जाती है। इस बेहद मेहनत के काम में बहुत ज्यादा विशेषज्ञता और धैर्य की जरूरत होती है। रेशम को कोकून से निकालने के बाद अगले चरण में धागों को धूप में सुखाया जाता है और उन्हें नटुआ नामक उपकरण पर अच्छे से लपेटा जाता है।
0: और इस प्रक्रिया के बाद रेशम को रेहती तक पहुंचाने से पहले एक बार फिर से सुखा लिया जाता है। रेहती एक कताई का यंत्र होता है जो धागों को कुंडलित करके सूत बनाता है। तो रेशम के धागे तैयार जब हो जाते हैं तो पारंपरिक हथकरघे का उपयोग करके जटिल पैटर्न बनाए जाते हैं और असली तुसार धागे की प्रामाणिकता साबित करने के सबसे सरल और पुराने तरीकों में से एक है इसको जलाकर देखा जाता है।
1: बिल्कुल। और ये असली जो धागा होता है उसके एक छोटे से टुकड़े को जलाएंगे तो उसमें जले हुए बालों जैसी गंध आती है और लौ अदृश्य होती है, लौ नहीं दिखती है।
0: अच्छा
1: जी। और जलने के तुरंत बाद बुझ जाती है जिससे वो सूख कर काली राख में बदल जाती है। इसकी प्रकृति जो होती है वो सुनहरी चमक, जो प्राकृतिक चमक होती है इसमें वो सुनहरी चमक होती है जो बहुत सुंदर दिखती है और ये बहुत हल्की और आरामदायक भी होती है।
0: और साथ ही इन्हें गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में आप पहन सकते हैं और इन साड़ियों को ड्राई क्लीन करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही इन्हें लंबे समय तक नई सी बनाए रखने के लिए सीधे धूप में लंबे समय तक नहीं रखना है आपको, और कॉटन के कपड़े में इसको लपेट कर रखें, जो हमारी बहनें जानती हैं
1: जो साड़ी इतना ज्यादा पहनता है वो समझता
0: है कि कैसे इसको रखना है। और ध्यान रखना है कि परफ्यूम को सीधे साड़ी पर नहीं छिड़कना है, उसके धब्बे जो है स्पॉट्स पड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल। और घीचा सिल्क साड़ी को समय समय पर खोलकर हवा भी लगाते रहें। इन सावधानियों से साड़ियां लंबे समय तक उत्सवों की शान बनी रहती हैं और आप भी जो जितने भी फंक्शन होते हैं उनमें आपकी शान बनी रहती है। और जो तुसार और घीचा सिल्क की साड़ियां हैं वो केवल धागों से नहीं

0: नहीं जाती। इनमें बुनकरों के सपने, परंपराओं की खुशबू और संस्कृति की गरिमा भी पिरोई होती है।
1: बिल्कुल,
0: ये हाथ से और मेहनत से
1: बनाई जाती है और इनके रेशों में प्रकृति की सादगी और भारतीय कला की भव्यता होती है। और इन्हें पहनना केवल फैशन नहीं होता बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का एक माध्यम भी होता है। ये
0: बिल्कुल बहुत ही अच्छी होती है साड़ियाँ। हाँ। एक गीत सुन लेते हैं ना।
1: गीत तो सुन लेते हैं लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब जब तुम शॉपिंग करने जाओगी ना तो मेरे लिए ये साड़ी भी लेते आना, ठीक है?
0: मुझे मालूम था ये आप कहने वाली है।
1: चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ, तो बेहद ही सुंदर गीत सुनवाया था आरती अभी आपने
1: जी। अब हम प्रतियोगिता की बात कुछ करना चाह रहे हैं ना।
0: करी
1: बिल्कुल। तो हमारे जो पहले तो हम उस जो हमारे श्रोता ने लिखा है, मैं जो श्रोता लिख रहे हैं,
0: हाँ।
1: जो हमारी सखियां लिख रही हैं, जो हमारे सखा लिख रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि हाँ। वो क्या लिख रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो उनके बारे में हम जान लेते हैं कि हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि प्रतियोगिता को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विकास का नियम है, हालांकि इसे जानलेवा रेस बनने से रोकना जरूरी है। हमें खुद की तुलना दूसरों से करने के बजाय अपने कल से करनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली और परिवारों को भी केवल नंबरों के बजाय बच्चों के कौशल और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। और साथ ही एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमें प्रतिस्पर्धा को एक युद्ध के रूप में नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने के माध्यम के रूप में देखना चाहिए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमें सहयोग करना और मानसिक रूप से मजबूत बनना सिखाती है। इसका वास्तविक उद्देश्य दूसरों को नीचा दिखाना नहीं है बल्कि स्वयं की कमियों को दूर करके अपने आप को उत्कृष्ट बनाना होता है।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और वही बात कि आप प्रतियोगिता को लेकर क्या सोचते हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक बार प्रतियोगिता की बात पे लिखते हैं कि ये जो कंपटीशन है

0: बराबरी पर स्वस्थ रूप से किसी कंपटीशन को जीतना, आगे बढ़ने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है वो ज्यादा अच्छा है। ये ठहराव को खत्म करती है, हमें लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती है, आलस्य से दूर करती है और जीवन को एक सही दिशा प्रदान करती है। प्रतियोगिता हमें योग्यता परखने का भी मौका देती है, जिससे हम सीखते हैं कि कैसे अपने काम में हम सुधार कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, और देखा जाए तो प्रतियोगिता जीवन की वो पाठशाला है जहाँ व्यक्ति संघर्ष करना सीखना और आगे बढ़ना सीखता है। ये सफलता की मंजिल तक पहुंचने का एक सशक्त माध्यम है। इसलिए प्रतियोगिता को केवल परिणाम की दृष्टि से नहीं बल्कि आत्म विकास और अनुभव प्राप्ति के अवसर के रूप में देखना चाहिए। यही दृष्टिकोण हमें जीवन में सच्ची सफलता और संतोष भी प्रदान करता है।
0: बिल्कुल, वही एक श्रोता लिखते हैं कि प्रतियोगिता हमें जीवन में अपना लक्ष्य सेट करने में सहायता करती है। जीवन में हमें कभी भी प्रतियोगिता से पीछे नहीं भागना चाहिए, चुनौती लेना सीखना चाहिए और जीतने की कोशिश करनी चाहिए। प्रतियोगिताएं वर्षों से एकत्रित ज्ञान और कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक शानदार मंच हमें प्रदान करती है।
1: बिल्कुल, एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतियोगिता का उद्देश्य दूसरों को हराना नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना होना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: और साथ ही हमारे जो एक और श्रोता है वो लिखते हैं कि हम लोग बता रहे हैं कि प्रतियोगिता स्पर्धा कंपटीशन बराबरी पर स्वस्थ रूप में किसी कंपटीशन को जीतना, जीवन में आगे बढ़ने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा अत्यंत आवश्यक है।
0: हाँ,
1: ये ठहराव खत्म करती है, हमें लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती है और आलस को दूर करके जीवन को एक सही दिशा प्रदान करती है। प्रतियोगिता हमें अपनी योग्यता को परखने का मौका देती है, जिससे हम सीखते हैं कि कैसे अपने काम में हम सुधार करें।
0: हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि प्रतियोगिता हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हम किसी न किसी रूप में प्रतियोगिता का सामना करते हैं। विद्यालय हो, खेल हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, कला हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रतियोगिता जरूरी है और ये हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने, उन्हें निखारने और निरंतर बेहतर बनने की प्रेरणा भी देती है।
1: बिल्कुल, और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतियोगिता हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हम किसी न किसी रूप में इस चीज को देखते रहते हैं।
0: और एक श्रोता लिखते हैं कि आजकल हर क्षेत्र में प्रतियोगिता लगातार बढ़ रही है। शिक्षा हो, करियर हो, व्यापार हो, तकनीक हो, अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत और नवाचार आवश्यक हो गया है। ये बढ़ती प्रतिस्पर्धा हमें बेहतर बनने और अपने कौशल को निखारने का एक अवसर देती है।
1: बिल्कुल, और प्रतियोगिता केवल जीत और हार का नाम नहीं है, ये स्वयं को पहचानने, अपनी क्षमताओं को निखारने, लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली प्रक्रिया होती है। और जीवन के हर क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र है, हर क्षेत्र में प्रतियोगिता का अपना विशेष महत्व होता है। ये मनुष्य को आलस से दूर रखती है और परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाती है।
0: बिल्कुल, वही श्रोता का कहना है कि प्रतियोगिता को पूरी तरह खत्म तो नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विकास का नियम है, हालांकि इसे जानलेवा रेस बनने से रोकना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा कि जानलेवा रेस हमें नहीं बनाना है इसको, है ना।
1: प्रतियोगिता एक स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए जिससे कि हमें भी उससे सीख मिले या हम अपना विकास, अपना जो आत्म विकास है हम वो कर सकें, न कि हम उसमें लग के अपने को नुकसान पहुंचाएं,
0: अपने जीवन को हम बर्बाद कर लेते हैं, अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं कई बच्चे, और की कंपटीशन में हम पिछड़ गए या फेल हो गए। ये जो असुरक्षा की भावना हमारे भीतर है, ऐसी प्रतियोगिता किसी काम की नहीं। अगर आपने अपने जीवन को गंवा कर किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया होगा, क्या मतलब उस प्रतियोगिता के, जहां आप अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए। और या हम नौकरी करते हैं या घर में भी होता है कि हम भाई बहन एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं या पड़ोसी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा।
1: ऐसा होता है मंदाकिनी जी की प्रतिस्पर्धा के चक्कर में हम अपने भाई बहन हो या रिश्ते हो, जो अपने रिश्ते हैं उनसे भी हम हाथ धो लेते हैं।
0: हाँ।
1: क्योंकि जब हम आपस में प्रतियोगिता करने लगते हैं ना, तो हम बहुत चीजों को गलत भी करने लगते हैं।
0: हाँ।
1: फिर हमें हम कोई वो जो एक बारीक सी रेखा होती है ना कि सही और गलत की, उसको हम पहचानना भूल जाते हैं। बस हमें रहता है कि हम किसी भी तरह से आगे निकल जाएं।
0: ये जो हमारे अंदर भावना होती है ना, असुरक्षा की भावना कहते हैं। और आरती, सबसे बड़ी बात ये है कि जरूरी नहीं कि हम जीत ही जाएं, कई बार हारने में भी बहुत मजा होता है।
1: बिल्कुल,
0: आप हार कर भी जीत जाते हैं।
1: किसी आप कभी किसी के चेहरे पे एक खुशी दे सके,
0: हाँ,
1: तो सबसे बड़ी बात ये होती है,
0: प्रतियोगिता
1: उसके चेहरे की हंसी देख के ही आपको लगेगा कि
0: मजा हमने। अब बच्चों से हम प्रतियोगिता करते हैं, मान लीजिए हमारे माता पिता, तो वो हार जाते थे कि हमारा बच्चा जीत गया है।
1: बिल्कुल।
0: तो वो खुशी बहुत बड़ी खुशी है जी। और जीवन में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें हम हिस्सा भी लेते हैं और हमारे जीवन में भी आ जाती हैं, लेकिन उसमें हमें बहुत ही सकारात्मक तरीके से हिस्सा लेना है, वो कोई भी प्रतियोगिता।

0: अपने आप को मानसिक रूप से दृढ़ रखिए कि हारना वो नहीं होता कि हम किसी चीज में खेल में या किसी चीज में हार गए। हारना वहां होता है जब हम अपने दिमाग से अपने मानसिक जो संतुलन होते हैं वहां से हारते।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो उसको मजबूत रखिए।
1: और मन के हारे हारे मन के जीते जीत जी। अगर आप हार कर भी आपका मन नहीं हारा है जब भी आप जीत जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है हमारे खिलाड़ी खेलते हैं लास्ट तक हमारी निगाहें होती की जीतने वाले हैं जीतने वाले हैं जीतने वाले हैं और वो हार जाते हैं, लेकिन हार कर भी पूरी टीम जीत जाती है। कैसे कि उनका बेहतर जो शानदार प्रदर्शन होता है वो हमें
0: वो मनोबल जो होता है ना वो मनोबल अगले मैच में काम आ जाता है।
1: बिल्कुल, इसलिए प्रतियोगिता अगर हम करते हैं अपने जीवन में जो जरूरी भी है तो स्वस्थ प्रतियोगिता करें, किसी को पछाड़ने के बजाय खुद को आगे लेकर जाएं।
0: बिल्कुल।

0: हाँ तो मंदाकिनी जी हाँ। अब हम लोग को जिससे 100 साल पहले ही प्यार था अभी भी प्यार है
1: और आगे है, भी रहेगा।
0: हाँ जी हाँ, आगे भी रहेगा। वो है बढ़िया बढ़िया से स्वादिष्ट व्यंजन और जिसमें से आज हम लेकर आए हैं पकौड़े। हम क्या लेकर आए हैं, हम तो ये गलत कह रहे हैं, हमारे श्रोता लेकर आए हैं पकौड़े,
1: बनाकर लेकर आए हमारे लिए।
0: बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी भेजी है उन्होंने, तो बात करते हैं। पहले तो एक छोटी सी बात कर लेते हैं, जो हमारे जो जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि जैसे ही आसमान में काले बादल छाते हैं और पहली बूंद गिरती है, भारतीय इंसानों के दिमाग का एक खास हिस्सा एक्टिव

0: वेट हो जाता है, वो सिर्फ एक ही सिग्नल भेजता है, किचन में जाओ, बेसन गोलो और कढ़ाई चढ़ाओ। खोलते हुए गर्म तेल की कढ़ाई मुश्किलों में डूबने के बाद ही एक साधारण सा बेसन और प्याज क्रिस्पी और शानदार पकौड़ा बनकर बाहर निकलता है। इसलिए जब भी जिंदगी आपको मुश्किलों के खोलते तेल में डाले तो घबराइए मत, समझ लीजिए कि आप और भी ज्यादा मजेदार बनने वाले। क्या
1: बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार,
0: ऐसे तो मतलब सोच नहीं सकते।
1: बिल्कुल, इन्होंने देखिए कितना इसको काव्यात्मक तरीके से, क्लासिक तरीके से पेश किया है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लिख भी सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो ये लेखन जारी रखें, आगे भी हमें इसी तरह से है ना अपने विचार प्रकट करें, तो कार्यक्रम का मजा जो है मजा दोगुना हो जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि भारत के सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा स्नैक्स में से एक है पकौड़े। ये मुख्य रूप से बेसन, मसाले और अपनी पसंद की कटी हुई सब्जियां जैसे कि प्याज, आलू, पालक को मिलाकर बनाया जाता है, और बारिश के मौसम और शाम की चाय के साथ इनका आनंद लिया जाता है। पकौड़े बनाने की उन्होंने विधि भी डाल दी है कि आपको ओनियन लेना है, मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा बनाना है तो, और सब्जियां तीन चार तरह की लेनी है, प्याज लंबे कटे हुए, एक दो कटे हुए, आलू, पालक, बेसन लीजिए, और चावल का आटा ले लीजिए 2 बड़े चम्मच कुरकुरेपन के लिए, मसाले ले लीजिए, हल्दी है, मिर्च है, और कुटा हुआ साबुत धनिया है, अजवाइन है, हींग है, और नमक आपके स्वाद के अनुसार ले लीजिए। और इसके अलावा इन्होंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट भी बनाया है तलने के लिए, और कहते हैं कि सब्जियां तैयार करें, एक बड़े बर्तन में कटे हुए प्याज, आलू और पालक ले लें, इसमें नमक, अदरक, लहसुन का पेस्ट, कटी हुई हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिला लें और 5 मिनट के लिए रख दें ताकि सब्जियां पानी छोड़ दें। मसाले और बेसन मिलाएं, अब इसमें सभी सूखे मसाले डाल दें, और इसके बाद बेसन और चावल का आटा मिला लें, घोल बनाएं बिना पानी डाले, और जरूरत हो तो थोड़ा सा डाल लें पानी, एक गाढ़ा और खुरदरा मिश्रण तैयार करें, तले एक कढ़ाई में मध्यम आंच पर, और इसमें छोटे छोटे बॉल्स बनाकर पकौड़े डाल दें, कुरकुरा होने तक इसको पकाएं मध्यम आंच पर, दोनों तरफ से इसको हिलाकर पकाते रहें, अंत में कुछ सेकंड के लिए आंच तेज करके निकालें ताकि पकौड़े अतिरिक्त तेल न सोखें। अरे वाह, ये अच्छी बात बताई है, अक्सर तेल आ जाता है पकौड़ों में साथ में ना, और गर्म गर्म पकौड़ों हरे धनिया की चटनी के साथ खाइए आंटी जी।
0: मैं उसमें कल्पना में लग गई थी कि
1: खाने भी लग गई थी पकौड़े ना।
0: एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि गुजरात में पकौड़े यानी कि भजिया सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही हर गुजराती घर और नुक्कड़ पर पकौड़े तलना अनिवार्य हो जाता है। यहाँ आलू प्याज के अलावा मेथी गोटा, डकन भजिया, मिर्च के भजिया और केला पकौड़ा जैसी अनोखी वैरायटी मिलती है। गुजराती पकौड़ों में बेसन के साथ हल्की चीनी, नींबू और तीखी मिर्च का बेजोड़ संतुलन होता है। चटनी का जादू भी होता है इसमें कि इन पकौड़ों का स्वाद कढ़ी या बेसन घोल और तीखी मीठी चटनियों के बिना अधूरा माना जाता है। और शाम की चाय के साथ पकौड़े खाना यहाँ का पारिवारिक जो उत्सव होता है उस तरह से माना जाता है।
1: हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा इन्होंने।
0: और हमारे जो एक है हमारी जो श्रोता है वो लिखते हैं कि बरसात आई छाई बहार, पकौड़ों की महकी है फुहार, गर्मा गर्म जब थाली आए मन खुश होकर गीत सुनाए, आलू प्याज या पालक वाले सबको लगते बड़े निराले, चाय की प्याली साथ में हो मजा दुगना हर पल हो, दादी की रसोई की खुशबू भर देती है मन में जादू, मिल बैठकर जब सब खाते हंसते गाते पल बिताते, सादा भोजन हो या दावत, पकौड़ों की रहती है चाहत, स्वाद और अपनापन देते हर मौसम में दिल को।
1: क्या बात है, देखिए मतलब मौसम बदलते ही मन का मौसम बदल गया इनके, है ना।
0: मैंने कहा ना
1: और कवि और शायर बन गए हमारे श्रोता। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा पकौड़े का जो शौकीन है गुजराती पकौड़े के शौकीन है जिसे भजिया कहा जाता है, और ये सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही हर गुजराती के घर में ये बनता है, तो ऐसे इन्होंने पकौड़े बनाने की विधि भी बताई है। और देखिए एक श्रोता लिखते हैं कि बेसन के घोल में अजवाइन, हींग, हरी मिर्च, धनिया का सही मिश्रण इसके स्वाद को दोगुना बना देता है। पुदीने की तीखी चटनी भी होनी चाहिए, मीठी की इमली चटनी टोमेटो केचप के साथ इसका कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट होता है, और ये मौसम का साथी है। भारत में बारिश के मौसम हो, सर्दियों का हो और किसी भी तरह का हो तो पकौड़े हमारे घर में सबसे पहले बनाए जाते हैं। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि सब्जियों की जो एक साथ इकट्ठे करके आप पकौड़े बना सकते हैं, जैसे प्याज है, आलू है ना, इनको काट लें, हरी मिर्च है इसके भी काट लें, अदरक को भी, अदरक भी पकौड़ों के बीच में जब मुंह में आती है ना बहुत स्वादिष्ट लगती है, और आधा छोटा चम्मच हल्दी, अजवाइन, नमक और पाउडर मिर्च का पाउडर ले लें। पकौड़ों को कुरकुरा तलने के लिए एक चम्मच चावल का आटा लेना बहुत जरूरी, या फिर कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं। और तलने के लिए सरसों का तेल ले लें। साथ ही उन्होंने कहा, घोल को तैयार करें, एक बड़े बाउल में बेसन, हल्दी, अजवाइन, नमक, लाल मिर्च और कटी

0: हरी मिर्च डाल दें, अदरक डाल दें, सब्जियां मिलाएं, इसमें कटे हुए प्याज आलू डालें, पानी डालें, थोड़ा थोड़ा थोड़ा पानी डालें, थोड़ा गाढ़ा और चिकना घोल बनाएं। ध्यान दें कि घोल ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए ताकि ये सब्जियों पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। और फ्राई करें कढ़ाई के माध्यम से, आंच गर्म रखें। तेल गर्म होने पर चम्मच से छोटे छोटे पकौड़े तलें और कुरकुरा होने तक इन्हें रखें। पकौड़ों को टिश्यू पेपर पर निकालें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए और छमाछम बारिश में गर्मा गर्म खाएं और खिलाएं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता है वो एक बहुत अच्छा सा, उन्होंने दाल के पकौड़े का बताया है रेसिपी। तो चना का दाल 4-5 घंटे के लिए भिगो लें, इसमें थोड़ा चावल भी भिगा लें। अब इन्हें दरदरा पीस लीजिए, इसके साथ लहसुन मिर्च अदरक भी पीस लीजिए। पीसते समय कम पानी, जब पीस रहे हो तो कम पानी का प्रयोग करें, नहीं तो ये पतला हो जाएगा तो बढ़िया बनाने में मुश्किल होगी। अब इसमें हल्दी, नमक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कलौंजी, अजवाइन मिलाकर रख लें। धनिया पत्ती भी काट कर मिला सकते हैं, पर बारिश के दिनों में हरी पत्तियों का प्रयोग कम ही करें। कड़ाही में सरसों का तेल गर्म करें, इसमें थोड़ी सी हींग का टुकड़ा डाल दीजिए। अब छोटी छोटी दाल की पकौड़ियों को तेल में तल लीजिए, इसे किसी भी चटनी के साथ परोसें। और बिहार में इस दाल की पकौड़ी को कचरी बोला जाता है, इसे सरसों की चटनी, आम की खटाई की चटनी के साथ परोसा जाता है। दाल में आप चना की दाल के अलावा मसूर की दाल, मूंग की दाल का भी आप पकौड़ा बना सकते हैं। और किसी भी दाल को भिगोते समय उसमें 2 चम्मच चावल, जो 2 चम्मच रहता है चावल, वो जरूर डालें आप।
0: तो अब पकौड़े बहुत खाली हैं, गीतों का आनंद
1: लेते हैं पकौड़े खाते खाते।

0: जी तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों के शहर में झिरझिर झिरझिर बरसा बरखा जो है बरसे और उनका मन भी इसी तरह से हर्षे है ना।
1: बिल्कुल।
0: और इसी उम्मीद के साथ अब कार्यक्रम का समय तो हमें समाप्त करना होगा
1: जी।
0: तो कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी और
1: आरती श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने लेखक हरिशंकर राठी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक और अनुवादक संपादक हरिशंकर जी राठी साहब को। हरिशंकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका मंदाकिनी जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
1: जी, कैसे हैं आप?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
1: हम भी अच्छे हैं और आज एक लंबी बातचीत आपसे करने वाले हैं।
2: जी अवश्य।
1: आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई?
2: जी, मेरा जन्म सन 1964 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक पिछड़े क्षेत्र में हुआ था। मेरी माता जी अध्यापिका थी और उन्होंने शिक्षा पर शुरू से ही बड़ा जोर दिया। मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई, उसके बाद मैंने 12वीं तक की शिक्षा पास के कस्बे के इंटर कॉलेज में किया। उच्च शिक्षा के लिए मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय की तरफ गया, वहां से मैंने बीए किया और सन 1988 में मैंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। 1989 में मैंने पूर्वांचल विश्वविद्यालय से बीएड किया और उसके बाद दिल्ली में मेरी सरकारी विद्यालय में नियुक्ति हो गई। वहाँ मैं शिक्षण कार्य करता रहा और अभी 2 साल पहले मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
1: जी, तो आप एक अध्यापक के रूप में कार्य करते रहे।
2: जी,
1: तो इस अध्यापन के दौरान ही आपकी जो है साहित्य के प्रति रुचि पैदा हुई या ये रुचि पहले से ही थी, बचपन से ही?
2: मुझे जहाँ तक याद आता है कि मैं किशोरावस्था से ही साहित्य में रुचि लेने लगा था और कुछ तुकबंदियाँ, कुछ कविताएं, विद्यालय के लिए कुछ नाटक, इस तरह की चीजें लिखने लगा था। वो किशोर मन की अभिव्यक्ति थी। देशभक्ति के गीत होते थे, विकास के गीत होते थे। लेकिन उसके बाद मैं गंभीर साहित्य से जुड़ा, पढ़ने लगा, बहुत सारे साहित्यकारों को पढ़ा और दिल्ली में आने के बाद मैंने औपचारिक लेखन शुरू कर दिया था।
1: जी, तो हरिशंकर जी, आप एक प्रखर भाषाविद हैं, अनेक पुस्तकों की लेखनी आपने की है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के आप ज्ञाता हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कोई विशेष भाषा आपके विचारों की गहराई को सीमित करती है या भाषा हमेशा विचारों की विस्तारक होती है?
2: जी नहीं मंदाकिनी जी, मुझे लगता है कि जितनी ही भाषाओं का ज्ञान हो मनुष्य उतना ही मजबूत, उतना ही सुदृढ़ और उतने ही बड़ी सोच का हो जाता है।
1: जी,
2: तमाम भाषाओं को जानने की मेरी इच्छा थी। 3 भाषाओं पर ही मेरी कुछ पकड़ हो सकी है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पर। मुझे बल्कि इस बात का कई बार मलाल होता है कि मैं 4-6 भाषाएं और क्यों नहीं जान सका। कुछ देसी बोलियों को भी मैं जानता हूँ ठीक से, उनको बोलता भी हूँ। तो भाषाएं पुल का काम करती हैं, जोड़ने का काम करती हैं और हर भाषा में कुछ न कुछ अतिरिक्त ज्ञान होता है, उसे प्राप्त करके अपने विचारों को, अपने साहित्य को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमेशा जोड़ती हैं, तोड़ने का काम नहीं करती हैं भाषाएं।
1: तो हरिशंकर जी, आपने तो व्यंग्य विधा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण लिखे हैं, ये लेखक बनने की शुरुआत कब और कैसे हो गई?
2: जी, जब मैं दिल्ली में आया तब तक मैं साहित्यिक पत्रिकाएं पढ़ता था। हरिशंकर परसाई को पूरा पढ़ चुका था।
1: अच्छा।
2: धर्मयुग, कादम्बिनी जैसी पत्रिकाएं मैं नियमित रूप से पढ़ता था, पत्रिकाओं को पत्र लिखता था। सामान्यतः लेखन की शुरुआत यहीं से होती है। यहाँ पर मुझे लगा कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए और मैंने सबसे पहले एक कहानी लिखी और वो कहानी उस समय की प्रसिद्ध पत्रिका जो महिलाओं की थी, मनोरमा में प्रकाशित हुई सन 1994 में। मनोरमा पत्रिका की उस समय 1 लाख से कम प्रतियां नहीं निकलती थी और वो पढ़ाई लिखाई का युग था। तो उसमें जब पहली कहानी प्रकाशित हो गई तो मुझे लगा कि नहीं, जब मैं लिख सकता हूँ, मेरा बड़ा उत्साह वर्धन हुआ और वहां से मैं कहानियां लिखना शुरू कर दिया। बाद में दूसरी विधाओं में आ गया।
1: तो पहली कहानी कौन सी थी आपकी?
2: मेरी पहली कहानी थी जो मनोरमा में छपी थी, उसका शीर्षक था अपराजेय और वह

0: एक ऐसे मुद्दे पर थी कि एक पीड़िता जो किसी संबंधी से बलात्कार का शिकार होती है और उसका एक रिश्तेदार बाद में उसको स्वीकार कर लेता है और उनका जीवन बड़ा सुखद निकलता है, कहीं न कहीं से यह महिला के उत्थान के की ओर लेके जाती थी।
1: जी जी, जी। हरिशंकर जी, आपने लगभग 500 रचनाएं लिखी हैं, तो ये 500 रचनाएं अलग अलग विधाओं में हैं
0: जी,
1: और बहुत सारी राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में आपकी कहानियां छपी हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए।
0: जी, कहानियां मैंने जो लिखी वो बड़े लंबे दौर में लिखी, मैं कहानी विधा का इतना बड़ा प्रसारक तो नहीं हो पाया, लगभग 20 कहानियां लिखी मैंने, लेकिन जो कहानियां मैंने लिखी हैं वो कहानियां देश की प्रमुख पत्रिकाओं में जैसे हंस
1: जी,
0: वागर्थ, आजकल और तमाम दूसरी लोक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। उन कहानियों को स्वीकृत मिली है, उस पर पत्र आए, पाठकों के फोन आए और वे कहानियां कहीं न कहीं स्त्री विमर्श से जुड़ी हुई हैं। ज्यादातर मेरी लिखी हुई कहानियां जो समाज को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ले जाती

0: विधाओं में है
1: जी,
0: और बहुत सारी राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में आपकी कहानियां छपी हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए।
1: जी, कहानियां मैंने जो लिखी वो बड़े लंबे दौर में लिखी। मैं कहानी विधा का इतना बड़ा प्रसारक तो नहीं हो पाया, लगभग 20 कहानियां लिखी मैंने, लेकिन जो कहानियां मैंने लिखी हैं वो कहानियां देश की प्रमुख पत्रिकाओं में जैसे हंस
0: जी,
1: वागर्थ, आजकल और तमाम दूसरी लघु पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। उन कहानियों को स्वीकृति मिली है, उस पर पत्र आए, पाठकों के फोन आए, और वे कहानियां कहीं न कहीं स्त्री विमर्श से जुड़ी हुई हैं। ज्यादातर मेरी लिखी हुई कहानियां जो समाज को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ले जाती है, नकारात्मकता को दूर करके।
0: जी, तो आपने जिन पत्रिकाओं को नाम लिया ये लगभग राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाएं हैं, और मुझे ध्यान है कि हमारे घर में ये पत्रिकाएं आती थी और इन पत्रिकाओं को पढ़ा करते थे। उस समय हम जब कहानियां पढ़ते थे तो हमारी समझ से ऊपर निकल जाती थी, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि राष्ट्रीय स्तर की बहुत ही सारगर्भित कहानियां इन पत्रिकाओं में स्थान पाती है। तो आपकी कौन सी कहानी आपके सबसे करीब है?
1: मेरे सबसे करीब कहानी या तो जो पहली कहानी थी अपराजेय जो मनोरमा में छपी थी, या फिर दूसरी कहानी जो हंस में छपी थी जिसका शीर्षक था उसका आकाश।
0: उसका आकाश
1: जी, ये कहानी मुझे बहुत प्रिय रही है, और इस कहानी ने पाठकों में एक विमर्श पैदा किया था। उस पर पत्रिका में भी अगले अंकों में उस पर समीक्षाएं आई थी, उसका जिक्र हुआ था, और कुछ पाठकों ने मुझे निजी तौर पर पत्र लिख करके या फोन करके उस पर बात की थी।
0: जी, तो कहानी लिखते लिखते अचानक व्यंग्य विधा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण की ओर आना कैसे हुआ?
1: जी, ये सब मुझे लगता है कि एकदम स्वाभाविक रूप से हुआ था। कहानी लिखना मैंने शुरू किया, लेकिन कहानियां मेरी यथार्थ पर आधारित होती थी। किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था
0: जी।
1: हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। भाषा पर 3 भाषाओं को पढ़ने से मुझे लगा कि थोड़ी पकड़ मेरी हो गई है, और जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से मैं व्यंग लिखने लगा। और ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई
0: जी।
1: और व्यंग में ही मैंने सबसे ज्यादा लिखा है, और व्यंग में सबसे ज्यादा मेरी पुस्तकें आई हैं, और व्यंग के विमर्श पर भी मैंने काम किया है
0: जी। तो समाज में इतनी विसंगतियां हैं राड़ी जी, लेकिन व्यंग लिखने का विचार आपके मन में सबसे पहले कब और कैसे आया होगा?
1: जी, एक घटना हुई थी राजनीतिक। उत्तर प्रदेश में एक सरकार गिरी थी, और 2-3 राजनीतिक दलों को जोड़ करके, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी मुख्यमंत्री ने एक सरकार बना ली, और उसमें मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई
0: जी।
1: कहीं न कहीं ये विसंगत थी कि हमारे प्रदेश के, हमारे देश के जो संसाधन हैं उन सबका प्रयोग इतने बड़े मंत्रिमंडल पर होगा, और ये जोड़ तोड़ करके बनाया गया संगठन कभी चलेगा नहीं। वहीं से मेरा पहला व्यंग शुरू हुआ था, और उसके बाद जब उसकी प्रशंसा हुई, उत्साहवर्धन हुआ, तो मैं और आगे लिखता गया
0: जी। यानी वो प्रोत्साहन आपको उस घटना के बाद
1: जी,
0: मिला
1: जी।
0: तो राडी साहब, बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है, इस बीच एक आपकी पसंद का गीत सुन लिया जाए।
1: मुझे थोड़ा सा मेलोडी वाले गाने बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, तो लता मंगेशकर जी का एक गीत है फिल्म ममता से, रहे ना रहे हम महका करेंगे, बड़ा सकारात्मक गीत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: बहुत सुंदर क्लासिक गीत है ये, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हरिशंकर जी, बात चल रही थी आपके व्यंग्य लेखन पर, और आपने व्यंग्य विधा पर काफी लिखा है, जैसे कि युधिष्ठिर का कुत्ता और गिद्धों का स्वर्णकाल, अंधे पीसे और साहित्य के शनिदेव, ये सबकी लेखन यात्रा के बारे में आप हमें थोड़ा बताइए।
1: जी, मैंने व्यंग्य लेखन 1998 से शुरू कर दिया था और मैं व्यंग्य में सबसे अधिक प्रभावित था हरिशंकर परसाई से।
0: जी,
1: व्यंग्य के पितामह है वो, और उनके रचनावली के 6 खंड है वो मैं सारे पढ़ चुका था। पहले जब मैं व्यंग लिखना शुरू किया तो मेरे व्यंग बड़े विस्तृत होते थे, 3,000 से 3,500 शब्दों के। ज्यादातर वो व्यंग मेरे पहले व्यंग संग्रह युधिष्ठिर का कुत्ता में संग्रहित हैं। इसमें युधिष्ठिर का कुत्ता एक व्यंग है जिसमें कुत्ते को एक तरफ रख करके उससे तुलना करते हुए मानवीय स्वभावों की खिंचाई की गई है। कुत्ते में बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं, लेकिन मनुष्य उन गुणों को ना लेकर के उनके दूसरे गुणों को लेता है, जैसे एक कुत्ता किसी दूसरे अपरिचित पर भौंकता है।
0: जी।
1: ये सीधी सी बात होती है, अगर उसकी मानसिकता को समझा जाए तो जब वह नए कुत्ते पर भौंकता है तो उसे डर होता है कि कहीं ना कहीं ये मेरे साम्राज्य पर, मेरी टेरिटरी पर कब्जा करने आया है। यह प्रवृत्ति मनुष्य में भी पाई जाती है। और दूसरी बात यह होती है मनुष्य में कि थोड़े से स्वार्थ के लिए वे ये नहीं देखते कि किसके आगे पूंछ हिला रहे हैं। मनुष्य को मेरा मानना है कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, और यह बात कि आप कहीं न कहीं से कुछ कुत्ते के दुर्गुणों को ले लें तो आपको सत्य के पथ से हटाती है। वैसे युधिष्ठिर का कुत्ता अपने आप में धर्म का प्रतीक है, लेकिन उससे हमारा कितना विचलन हुआ है, यह व्यंग जो मेरा है उसी को दिखाता है। इस व्यंग को मैंने पूरे पुस्तक का शीर्षक बनाया, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस व्यंग संग्रह को पसंद किया गया।
0: जी।
1: उसके बाद दूसरा व्यंग संग्रह मेरा आया गिद्धों का स्वर्णकाल। इसके आप संकेत समझें, क्योंकि व्यंग जो होता है वह अभिधा में नहीं, लक्षणा में भी नहीं, बल्कि शब्दों की तीसरी शक्ति होती है व्यंजना, जो बहुत कुछ संकेतों में कह जाती है या कई बार उल्टा अर्थ निकलता है उसको प्रदर्शित करता है। एक बड़ा त्रासद समय हमने देखा कोरोना काल का, जिसमें एक तरफ तो महामारी थी, दूसरी तरफ हमने मनुष्य का बड़ा विकृत चेहरा देखा, जिसमें लोग एम्बुलेंस में कमाई कर रहे हैं, दवाइयों की चोरबाजारी हो रही है।

0: लाशों के यहाँ वहाँ फेंका जा रहा है, लाशें एक तरफ गिर रही हैं, तो उस समय मेरे मन में यह विचार आया था कि ये तो हम गिद्धों के स्वर्ण काल में रह रहे हैं, ये गिद्धों का काल है, मनुष्यों का काल नहीं है। चारों तरफ मौतें हो रही थी और हम उस आपदा को अपने लिए अवसर में बदल रहे थे। तो ये पूरा संग्रह गिद्धों का स्वर्ण काल कोरोना काल में लिखे गए मेरे सारे व्यंग जितने उनका संग्रह है और उस त्रासद स्थिति पर क्या क्या दृष्टिकोण रहे हैं इसको दिखाने का प्रयास किया गया है।
1: जी, जी।
0: तीसरा जो है वो सांधे पीछे हैं, ये हमारी व्यवस्था में मशीनरी में एक परंपरा है, ये शीर्षक अपने आप में व्यंग है। पूरा मुहावरा है कि अंधे पीछे कुत्ते खाएं। अंधे पीछे किस लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं। प्रतीकात्मक रूप से किसी परिपाटी को चलाया जाना है, काम करने के लिए काम किया जाना है, उद्देश्य का पता नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: और उसका दुरुपयोग करने वाले दूसरे हैं, जो कि कुत्ता जी ने समझा गया है या कहा गया है। तो इसमें आपको छोटे आकार के व्यंग मिलेंगे, क्योंकि अब तक आते आते पूरा साहित्यिक परिदृश्य बदल गया, हम आ गए मोबाइल युग में जिसमें लोगों पास समय नहीं है, छोटी रचनाएं पढ़ना चाहते हैं, कोई तीन पेज चार पेज का व्यंग या कोई भी रचना नहीं पढ़ना चाहता है। अखबारों ने पत्रिकाओं ने स्पेस कम कर दिया, अखबार और उसमें कालम खत्म हो गए, पत्रिकाएं बंद होती गईं, तो थोड़ी थोड़ी जगह लगे देने लगे। तो इसलिए इस कारण से भी हमें एक रणनीतिक बदलाव करना पड़ा कि हम अपने आकार को समेटें। अब तो इसमें आपको जो व्यंग मिलेंगे 800-1200 शब्दों के मिलेंगे, उसमें इसका है। और साहित्य सनिदेव मेरा चौथा व्यंग संग्रह है जो भी 2026 में ही आया है। इसमें सबसे बड़ी विसंगति यह है कि हम कह सकते हैं कि अगर चिकित्सक ही बीमार हो जाएगा तो रोगी का क्या इलाज करेगा। बहुत सारी विसंगतियां हम साहित्यकारों में भी हैं और वही विसंगतियां हैं जो मनुष्य में पाई जाती हैं, पाखंड की, उतार चढ़ाव की, गिराने की, जगाड़ने पछाड़ने की, उसको केंद्रित रखते हुए है व्यंग साहित्य का संदर्भ। यह भी इस पूरे संग्रह का एक व्यंग है, उसमें और भी जो व्यंग है वो राजनीतिक सामाजिक घटनाक्रमों पर है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगा, व्यंग ये देखता है कि समाज में क्या होना चाहिए और क्या है,
1: हो रहा है,
0: आदर्श और यथार्थ के बीच की जो स्थिति है उस खाई को थोड़ा सा कड़े शब्दों में पाटने का प्रयास जब किया जाता है तो व्यंग होता है और उसकी झलक आपको साहित्य के सनिधि में मिलेगी।
1: जी, तो व्यंग्य में अगर हम बात करें परसाई युग से अब तक कितना बदलाव आया है, आप क्या महसूस करते हैं?
0: जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। व्यंग देखिए परसाई के पहले से है, लेकिन परसाई को हम व्यंग का औपचारिक अधिष्ठाता कह सकते हैं। व्यंग सबसे अधिक मिलता है कबीर में और हम व्यंगकार दावा करते हैं हम कबीर के वंशज हैं, हालांकि कबीर का वंशज होना आसान काम नहीं है। जिस निर्भीकता से कबीर ने कहा है वो निर्भीकता बहुत कम लोगों में मिलती है। कबीर ने कहा, तुलसीदास के ग्रंथों में भी व्यंग मिलता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी व्यंग लिखा है, लेकिन परसाई ने व्यंग को स्थापित किया।
1: जी।
0: उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी, उस समय सामाजिक पतन इतना नहीं हुआ था जितना अब हो गया है।
1: जी।
0: राजनैतिक विसंगतियां इतनी नहीं बढ़ी थी जितनी अब बढ़ी है, लेकिन परसाई ने उस समय बहुत दूरदर्शिता दिखाते इन चीजों को पकड़ा था। परसाई के समय में एक आजादी थी कि व्यंग को लंबा लिख सकते थे। कितना भी लंबा आप लिखेंगे, पत्रिकाएं छापेंगे, उस समय धर्मयुग जैसी पत्रिकाएं थी जिन्होंने व्यंग को नियमित रूप से प्रकाशित किया। धर्मवीर भारती जैसे संपादक थे जो साहित्य के बहुत बड़े जौहरी थे, बहुत बड़े पारखी थे। अब तो दुखद वैसी चीजें नहीं रह गई।
1: पाठक भी वो एक बड़ा वर्ग था पाठक का।
0: हाँ, बहुत बड़ा वर्ग था। बहुत बड़ा वर्ग था पाठक का। और व्यंग साहित्य में उन दोनों स्थापित हो रहा था, लोगों को नई चीज मिल रही थी, मनोरंजक चीज मिल रही थी। तो परसाई के समय में एक तो व्यंग की लंबाई ज्यादा हुआ करती थी, उस समय की स्थितियां कुछ दूसरी थी। अब धीरे धीरे विसंगतियां बढ़ी हैं, विसंगतियों के प्रकार बढ़े हैं, समय कम हुआ है तो व्यंग का आकार कम हुआ है। और एक चीज मुझे थोड़ा सा नकारात्मक लगती है, समाज का शिक्षित होना तो बहुत ही आवश्यक है, लेकिन उच्च स्तरीय साहित्य सभी लोग नहीं लिख पाते हैं।
1: जी।
0: जैसे साहित्य की हर विधा में शौकिया लेखकों की भीड़ बढ़ी है, उसी तरह व्यंग में भी लोग आ गए हैं जिनको व्यंग की समझ नहीं है। तो थोड़ा सा एक चुनौती बढ़ी है कि व्यंग को आप परसाई के स्तर पर क्या रख पा रहे हैं, वो अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है।
1: जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। क्योंकि जगह जगह एक लेखक वर्ग इकट्ठा हो गया है, हर शहर में लेखक वर्ग है और व्यंग विधा में हाथ आजमा रहा है। अब कितना वो व्यंग्य है, कितना क्या है, कई बार डिजिटल दुनिया में जब हम देखते हैं मीम्स बनते हैं, हम उसे भी व्यंग्य समझ लेते हैं और लेखन यात्रा शुरू कर देते हैं।
0: जी।
1: तो आपसे अगला सवाल मैं कर रहा हूँ कि, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का एक गीत हम सुन लेते हैं राडी जी।
0: जी जरूर जरूर, मुझे गीत बहुत पसंद है, मैं संगीत

0: प्रेमी व्यक्ति हूँ और मुझे एक गीत बहुत पसंद है, किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी का, आराधना फिल्म से, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम
1: इसमें तेरा। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: एक कोरा कागज लेखक के सामने भी होता है और तभी वो अपने मन की बात उस कागज पर लिखता है। राडी साहब, व्यंग की बात हम कर रहे हैं तो व्यंग में हास्य की उपस्थिति कितनी जरूरी है, क्या मानते हैं आप, और क्या व्यंग हास्य के बिना नहीं हो सकता?
1: जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मंदाकिनी जी। यह हमारे व्यंगकारों में भी विमर्श का विषय रहता है। आप अगर कबीर के व्यंग देखें, जो कि स्वतंत्र व्यंग नहीं है, तो कबीर के व्यंग में कहीं आपको हास्य नहीं मिलेगा, बड़ी चुभन मिलेगी।
0: जी,
1: भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के व्यंग हैं, उसमें हंसी मिलती है, हास्य है। परसाई के कुछ व्यंग ऐसे हैं जिसमें खूब हास्य है।
0: जी,
1: जैसे आप रानी नागफनी की कहानी ले लीजिए, वो उपन्यासिका है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, उसमें भी खूब व्यंग है। इंस्पेक्टर माता दीन के बाद इंस्पेक्टर राम बाबू की राम सिंह की ट्रेनिंग, उसमें भी हास्य है। लेकिन परसाई के भी यही ऐसे कई व्यंग हैं जिसमें हास्य नहीं है।
0: जी,
1: प्रारंभिक दौर में हास्य व्यंग के साथ जुड़ा था तो अच्छा लगता था, धीरे धीरे हास्य का स्तर गिरता गया। हालांकि मैं हास्य को बड़ा जरूरी मानता हूं जीवन के लिए। हास्य एक मान्यता प्राप्त रस है हमारे यहाँ साहित्य में, हास्य होना जरूरी है। हास्य अगर उचित नहीं है, उसकी संगति ठीक नहीं है, तो वह व्यंग की तीव्रता को, गहनता को कम करता है।
0: जी,
1: आपने मीम्स की बात की है। मीम्स हमको एक सेकंड के लिए मुस्कुराने के लिए विवश करते हैं, लेकिन हम अगले मिनट भूल जाते हैं। व्यंग वही बहुत दिन तक प्रभावशाली रहता है जिसमें गंभीरता होती है और हास्य कम होता है। अगर स्वाभाविक हास्य आ गया तो उससे परहेज नहीं करना चाहिए, लेकिन यह जबरदस्ती हास्य डाला गया है या यह समझा गया है कि व्यंग हास्य के बिना नहीं हो सकता है, तो मेरे ख्याल से यह भ्रम है। हास्य और व्यंग दो चीजें अलग अलग हैं, ये एक हो सकती हैं, लेकिन इनकी संगति, इनका साज ठीक होना चाहिए।
0: जी, बहुत बड़ी बात कही आपने, बिल्कुल सही कहा। तो राडी साहब, जब अभी हम बात कर रहे थे कि डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया पर मीम्स और छोटे छोटे व्यंग हमें देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिल रहे हैं, वहां छोटे छोटे व्यंग चल रहे हैं, ऐसे में पारंपरिक व्यंग के लेखन का भविष्य ये कैसा लगता है आपको?
1: जी, पारंपरिक व्यंग का भविष्य, यानी हम जिसे कहें कि लंबाई वाले व्यंग,
0: जी,
1: जो 4,000-5,000 शब्दों के होते थे या उससे बड़े भी होते थे, या 3,000 का भी मान लें, उनकी मांग घटती जा रही है। और खास करके कोई भी लेखक सोचता है कि जो लिख रहा है वो पाठकों के सामने जाए, क्योंकि लिखा जा रहा पाठक के लिए, जनता के लिए। उन तक पहुंचाने वाले जो माध्यम है, खास करके समाचार पत्र, उन्होंने इसकी लंबाई कम कर दी है। अब वो यहां तक हो गया है कि 250-300 शब्दों का व्यंग मांगते हैं। और कोई व्यक्ति अगर व्यंग लिख करके रखता जाएगा, पाठक तक नहीं पहुंच रहा है, तो उसके लिखने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए जो लंबे व्यंग हैं वो कुछ पत्रिकाएं छाप तो रही हैं, या फिर आप उनको संग्रहों में डाल सकते हैं। आज का जीवन इतना तेज हो गया है कि लोग लंबी रचनाएं देखकर पढ़ने से कतराते हैं।
0: जी,
1: हालांकि असली व्यंग उन लंबी रचनाओं में ही होता है, ठीक उसी तरह से जैसे टेस्ट मैच होता है।
0: जी,
1: आप लंबी रचना में व्यंग कितना संभाल पाते हैं, ये देखने वाली बात होती है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत लंबे व्यंग भविष्य में ज्यादा चल पाएंगे। हाँ, यह है कि बहुत छोटे भी उसकी तीव्रता को कम करते हैं, मध्यम आकार के व्यंग चलते रहेंगे। एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि व्यंग में उपन्यास काफी लिखे गए हैं, लेकिन आज तक श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी का मुकाबला कोई कर
0: नहीं पाया। जी,
1: ऐसा लगता है कि यह व्यंग अपने आप लिखा गया था, क्योंकि वैसा व्यंग उपन्यास कोई लिख नहीं पाया। कुछ और लोगों ने, हमारे समय के व्यंगकारों ने व्यंग उपन्यास लिखे हैं। ज्ञान चतुर्वेदी ने 7-8 व्यंग उपन्यास लिखे हैं। कई और लोगों ने लिखा है, नाम किसका ले किसका ना ले, वो श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी की तीव्रता उसमें नहीं आ पाई है। इसलिए मुझे लगता है कि उपन्यास तो चल जाएंगे अगर उसमें व्यंग के तत्व होंगे, लेकिन स्वतंत्र व्यंग बहुत लंबे भविष्य में चलने वाले नहीं है, थोड़ा मध्यम आकार के व्यंग चलते रहेंगे। मेरा अनुमान ऐसा है,
0: क्योंकि समय कम है लोगों के पास। और आप जैसे एक कैरिकेचर आता था या कार्टून एक कोने में अखबार के आता है, तो हम उसे देखकर और उसमें जो लिखा गया उसे पढ़कर मुस्कुराकर ही हम इतिश्री कर देना चाहते हैं।

0: क्योंकि गागर में सागर हमें उस कार्टून में मिल जाता है। तो आजकल का समय कुछ ऐसा आ गया है। तो हरिशंकर जी, जब बात चल रही है व्यंग्य की, आप व्यंग्य लेखक हैं, क्या व्यंग्य सभी पर लिखा जा सकता है या इसमें कुछ विषय वर्जित हैं या कुछ विशेष आवश्यक विषय होते हैं जिस पर लिखा जाना चाहिए?
1: जी, ये आपने वाकई बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। व्यंग बहुत अधिक विवेक मांगता है। मुझे लगता है कि साहित्य की सभी विधाओं में सबसे चुनौतीपूर्ण, सबसे मुश्किल व्यंग लिखना होता है। इसमें विवेक की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि यह भी कहा जाता है कि व्यंग दोहरी मार करता, दुधारी तलवार है। व्यंग हमेशा सत्ता के विरुद्ध लिखा जाता है, लेकिन आजकल कुछ लोगों को भ्रम है कि सत्ता का अर्थ केवल किसी राजनीतिक दल से है जो किसी देश या प्रदेश में सत्तासीन है। वह सत्ता तो है निसंदेह, लेकिन राजनीतिक सत्ता के अलावा बहुत सारी सत्ताएं हैं। धर्म की सत्ता है, पाखंड की सत्ता है, अंधविश्वास की सत्ता है, सांप्रदायिकता की सत्ता है, यहाँ तक कि पंचायतों की भी सत्ता है और कई बार परिवार में मुखिया की भी सत्ता हो जाती है
0: जी।
1: तो अगर सत्ता कोई विसंगतिपूर्ण कार्य कर रही है, जो समर्थ है वह विसंगतिपूर्ण कार्य कर रहा है, तो व्यंग उस पर लिखा जाएगा। व्यंग कभी भी किसी शोषित, वंचित, पीड़ित पर नहीं लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी चुरा लेता है तो वह व्यंग का पात्र नहीं है, वह सहानुभूति का पात्र है। जो लोग समाज को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, अगर उनके चरित्र में कहीं विसंगति है, पाखंड है, उनके विरुद्ध व्यंग लिखा जाना चाहिए। व्यंग सत्ता के खिलाफ होगा, लेकिन वह सत्ता जो जनता के या आम जन के खिलाफ होती है उस पर व्यंग लिखा जाना चाहिए। कमजोर पर कभी भी व्यंग नहीं लिखा जाना चाहिए।
0: जी, जी। यानी कि विषय का चयन भी इसी आधार पर होता है कि हमने क्या चुना है।
1: जी, और मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि आप जो व्यंग लिखा है उसका उद्देश्य क्या है? व्यंग हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। आप किसी ऐसी चीज पर व्यंग लिख दें, बादल पर व्यंग लिख दें, बादल उसको सुनने नहीं आ रहा, समझने नहीं आ रहा है। किसी पशु पर लिख दें, वो सुनने नहीं आ रहा, समझने, उसमें सुधार नहीं होना है।
0: मतलब वैचारिकता होनी चाहिए और वैचारिक बातचीत होनी चाहिए।
1: उसको आप प्रतीक मान करके लिख सकते हैं। किसी पशु को या किसी भी तत्व को आप प्रतीक बना करके व्यंग लिख सकते हैं और वो संकेतों में अपनी बात को गंभीरता पूर्वक कह जाए। तो व्यंग हमेशा उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, निरर्थक, निर्देश नहीं होना चाहिए। साहित्य तो कोई भी नहीं होना चाहिए निर्देश।
0: जी, हरिशंकर जी, बात चल रही थी आपकी व्यंग्य लेखन पर और बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है
1: जी।
0: तो एक गीत सुन लिया जाए इस बीच।
1: जी जरूर, कुदरत फिल्म का गीत है, किशोर कुमार जी का ही। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना।
0: क्या बात है,
1: ये मैं चाहूंगा कि आप सुनवाएं।
0: आइए।

0: हरिशंकर जी, तो आप शुरू में कहानियां लिखते थे, आपने कहा कि आप महिला प्रधान कहानियां लिख रहे थे, तो आपने एक गंभीर साहित्य के बजाय व्यंग्य विधा को क्यों चुना?
1: यह आपकी बात सही लगती मुझे कि यह भी एक विसंगति है या विडंबना है कि समाज में कुछ लोग अभी ऐसे हैं, साहित्यकारों में हैं, आलोचकों में हैं, जो व्यंग्य को गंभीर कर्म नहीं मानते। और मंदाकिनी जी, आपको जानकर के हैरानी होगी कि साहित्य में अभी व्यंग्य पर कोई बड़ा विमर्श या कोई बड़ा आलोचक नहीं हुआ है।
0: जी।
1: व्यंग का अभी कोई आलोचना शास्त्र नहीं बना है, क्योंकि कई बार तो कहा जाता है कि व्यंग बिरादरी से बाहर है, लेकिन व्यंग मेरा मानना है कि बहुत ही गंभीर किस्म का लेखन होता है, बहुत गंभीर साहित्य होता है। उसमें आपको भाषा की पकड़, कहने का ढंग, और जो व्यक्ति समाज को हानि पहुंचा रहा है उसको इस प्रकार से प्रहार करना होता है कि वो तिल मिला करके सुधार की तरफ अग्रसर हो।
0: जी, जी।
1: तो मुझे लगता है कि समाज को, साहित्य को सुधारने के लिए व्यंग का होना बड़ा जरूरी है, बशर्ते उसकी भाषा संतुलित हो, गहन हो और अपने लक्ष्य पर सीधा प्रहार करती हो, लेकिन वो प्रहार व्यक्तिगत रूप से नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि व्यंग एक बहुत गंभीर साहित्यिक लेखन है, वो किसी विधा से कमजोर नहीं है।
0: जी, तो हम समझ लेते हैं कि व्यंग्य केवल एक हास्य की विधा है।
1: जी।
0: और स्त्री प्रधान कहानियां या एक गंभीर लेखन अलग किस्म का लेखन होता है।
1: जी।
0: तो इस भ्रम जाल को आपने हटाया है और मुझे लगता है कि जो श्रोता वर्ग आपको सुन रहा है इस बदलाव को, इस अंतर को समझ पाएगा।
1: जी, जी।
0: तो क्या पाठकों का व्यंग्य को समझने का नजरिया बदला है?
1: पाठकों के साथ एक समस्या ये होती है कि पाठक लेखक तो होता नहीं है, उसे हम जो देंगे वो वही लेगा। अगर उसके सामने अच्छे व्यंग जाएंगे तो अच्छे व्यंग पढ़ेगा, अगर उसके सामने खराब व्यंग जाएंगे, खराब व्यंग की श्रेणी में मैं उन व्यंग को रखता हूँ जो कि सीधे सीधे किसी पर आरोप लगा देते हैं, सीधे शब्दों में शिकायत कर देते हैं, सीधे किसी दल, किसी पार्टी का नाम लेकर के उस पर आक्षेप लगाते हैं, ये व्यंग नहीं होता है। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग आजकल ऐसा व्यंग लेखन कर रहे हैं। व्यंग हमेशा अंदर की सतह में जाके मार करता है, व्यंग प्रवृत्ति पर होता है, व्यक्ति पर नहीं होता है। यह बात पाठक को समझाना होगा और समझाने की जिम्मेदारी हम व्यंगकारों की है, पाठक की नहीं है। हम उसका स्तर उठा रहे हैं कि गिरा रहे हैं, यह हमें देखना है। दूसरा, थोड़ा सा मैं जो हमारे समाचार पत्र के संपादक हैं, पत्रिकाओं के संपादक हैं, उनको भी जिम्मेदारी देना चाहूंगा, वो किस तरह का व्यंग उनके पास पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पाठक तो पहुंचाने सीधे जाएगा नहीं, वो संपादक को देगा। तो ये विवेक संपादक में होना चाहिए कि वह जिस व्यंग को प्रकाशित कर रहा है उसकी भाषा, उसकी शैली, उसका प्रहार कितना है। हाँ, ये जरूर है कि आज के जमाने में जब पाठक के सामने मोबाइल है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, उसको अपनी पसंद की चीज तुरंत मिलती जा रही है, तो वह उतना महत्व लिखित साहित्य को नहीं देता है, लेकिन अगर उसको अच्छा साहित्य मिलेगा तो वो पढ़ेगा।
0: जी, जी। एक लेखक को कहते हैं कि यायावर होना चाहिए।
1: जी।
0: और उसकी जो यायावरी है, उसका जो घुमक्कड़पन है, उसे उसके दिमाग को खोलता है, उसकी लेखनी को खोलता है। तो क्या एक लेखक को यायावरी का शौक होना चाहिए?
1: जी, मंदाकिनी जी ने

0: आपने तो मेरी बात का आधा उत्तर खुद ही दे दिया। लेखक नहीं, मुझे लगता है कि मनुष्य मात्र को यायावर होना चाहिए, घूमना चाहिए। हम किसी चार दीवारी में कैद होकर रह जाएंगे तो हमारे विचारों का, हमारे दृष्टि का विकास नहीं होगा। और हमारे यहाँ एक मुहावरा है और वो व्यंग्यात्मक मुहावरा है कि कुएं का मेढक होना।
1: जी,
0: ये मुहावरा अपने आप में व्यंग है, कुएं का मेढक होना। तो जब तक आप अपने परिवेश से बाहर नहीं निकलेंगे, यात्राएं नहीं करेंगे, दूसरी संस्कृति का आदान प्रदान नहीं करेंगे, तब तक आपका वैचारिक प्रवाह गतिमान नहीं होगा। आप जब घर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं, समझते हैं, घूमते हैं, तो आपको नई संस्कृति, नए लोग, नई भाषा का दर्शन होता है और वहां पर आपको बहुत सारे विचार मिलते हैं। उन्हीं विचारों का पल्लवन हम साहित्य के रूप में करते हैं। हम कैद होकर के केवल मानसिक उड़ान से इतना अच्छा साहित्य नहीं लिख सकते हैं जितना कि हम घूम करके, देख करके कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि एक लेखक के लिए यायावरी बहुत ही आवश्यक है।
1: लेकिन जो लोग यायावरी नहीं कर पाए, जो लेखक यायावर नहीं बन पाए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका लेखन किस तरह का रहा होगा? क्या उन्होंने उस बात को महसूस किया होगा, उस अभाव को, कि अगर वो यायावरी करके ये लेखन करते या ये रचनाएं करते तो शायद और ज्यादा दर्शकों के या पाठकों के करीब होते?
0: हमारे विश्व साहित्य की बात करूं मैं, तो कुछ लेखक या कवि हम कहें बहुत ही मेधावी हुए हैं, या उनको आप कह सकते हैं उनको प्रकृति प्रदत्त वरदान था। दिव्यांग थे, जैसे हमारे यहाँ सूरदास
1: जी,
0: होमर जैसे कवि, इन लोगों ने तो यात्राएं नहीं की थी, लेकिन निश्चित रूप से इनकी जो छठी इंद्रिय थी वह कहीं हम लोगों से बहुत आगे थी।
1: जी, जी।
0: ऐसे लोग अपवाद स्वरूप होते हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अगर उनको हटा दिया जाए, ऐसे लोगों को हटा दिया जाए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो जो लोग समाज में खुले रहे हैं, घूमते रहे हैं, यात्राएं करते रहे हैं, उनके लेखन में जो विविधता मिलती है वो उन लोगों के लेखन में नहीं मिलती है। प्रायः अपवाद हो सकते हैं जो एक जगह स्थिर रहे हैं। यायावरी साहित्य में आप महापंडित राहुल सांकृत्यायन का नाम जरूर लेना चाहेंगे।
1: जी, जी।
0: जिन्होंने अथातो घुमक्कर जिज्ञासा लिखी, जिन्होंने पूरे तिब्बत से लेकर के दक्षिण भारत यूरोप तक यात्राएं करके ग्रंथों को इकट्ठा किया, और मुझे लगता है कि यायावरी का उनसे बड़ा प्रेरणा स्रोत दूसरा कोई नहीं हो सकता है, और यायावरी के कारण ही उनको इतनी भाषाएं आई और उन्होंने इतना बड़ा साहित्य लिखा। तो मुझे लगता है कि विचारों का पल्लवन
1: से होता है। दैनिक जीवन में भी हम जितना ज्यादा घूमते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग नौकरी करते हैं और जगह जगह ट्रांसफरेबल जॉब होती है, वो लोग ज्यादा खुलेपन से जी पाते हैं बजाय पूरी जिंदगी एक ही शहर में जो लोग निकाल देते हैं।
0: निश्चित रूप से, निश्चित रूप से।
1: तो जब बात रचनात्मकता की आती है तो घूमना और घूमने के साथ साथ आपको हर एक चीज को समझना बहुत ज्यादा मदद करता है। तो राडी साहब, आपकी यायावरी पर भी अब हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं।
0: जी, जरूर।

0: के तले।
1: आपकी जो किताब आई है दर्शन दृष्टि और पांव
2: जी,
1: आपकी यायावरी है इसमें, एक यात्रा संस्मरण है आपका ये, इसके बारे में आप बताइए हमें।
2: जी, यायावरी मेरी प्रारंभिक प्रवृत्ति रही है और घूमना मुझे शुरू से पसंद था। यहाँ तक कि जब मैं अनौपचारिक यात्राएं करता था या मैं लेखक नहीं था, लेखक बनने के बाद मुझे लगा यात्राएं करता रहा कि इनको लिखना चाहिए, संस्मरण के रूप में इनको दर्ज किया जाना चाहिए। और जब मैंने यात्रा संस्मरण लिखना शुरू किया था तो आज की तरह तकनीक नहीं हुआ करती थी, तब यात्राएं मुश्किल थीं और गूगल बाबा नहीं थे, या रहे भी होंगे तो सामान्य जन तक पहुंच नहीं थी उनकी
1: जी।
2: किस जगह जाना है उसके लिए बड़ा श्रम करना पड़ता था, कैसे जाएंगे कैसे पहुंचेंगे ये सब देखना पड़ता था। और दूसरी बात यह थी कि जैसे आजकल है तो आप देख लें तमाम ऐसे टीवी चैनल्स हैं जो जगहों को दिखा देते हैं, तमाम लोग व्लॉगर्स हो गए हैं जो यात्राएं दिखाते हैं।
1: बिल्कुल,
2: इसमें आप ऐसे भी सोच सकते हैं फिर इस जमाने में यात्रा संस्मरण की क्या जरूरत है। लेकिन मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि यात्रा संस्मरण एक साहित्यिक विधा है और साहित्यिक विधा केवल मनोरंजन नहीं करती है, मनुष्य को सिखाती है, उसके हित की बातें बताती है। जब एक साहित्यकार यात्राएं करता है खास करके, तो वहां वो जिस जगह पे गया है वहां की संस्कृति, वहां की सभ्यता, वहां के खान पान, वहां के लोग को समझता है और समझ करके वह उनको अपने संस्मरण में दर्ज करता है। अगर हम उनको आज के जो सोशल मीडिया के साधन उनसे जोड़े तो आपको सूचनाएं तो मिल जाएंगी
1: जी,
2: लेकिन वह रस जो है जो संस्मरण में मिलता है, साहित्यकार के संस्मरण में मिलता है, वो इसमें नहीं मिलेगा। मेरा मानना है कि यात्रा संस्मरण को सूचनात्मक नहीं होता है, वो रचनात्मक होता है। वह लोगों को एक दृष्टि देता है और जो उसको पढ़कर की यात्रा करता है उसकी भी दृष्टि खुलती है कि मैं जिस जगह पे जा रहा हूं मुझे क्या देखना है, मुझे क्या समझना है। तो इस तरह के जो यात्रा संस्मरण होते हैं वो संस्कृति को जोड़ते हैं, सभ्यता को जोड़ते हैं और जोड़ते हुए साहित्य को समृद्ध करते हैं। ये काम मैंने अपने यात्राओं में किया है और यात्रा संस्मरण किया है मैंने, मतलब हर तरह की यात्राएं की हैं मैंने, प्राकृतिक स्थलों की यात्राएं की हैं और धार्मिक स्थलों की यात्राएं की हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सनातन धर्म के चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्राएं कर चुका हूं
1: जी।
2: और वहां पर जाकर के मैंने केवल आस्था की पूजा नहीं की है, वहां के जन समुदाय को, वहां की संस्कृति को समझने का प्रयास किया है। और मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि वो लोग कितने महान थे जिन्होंने पूरे देश में धार्मिक स्थानों को जगह जगह पर बनाया जिससे लोग इसके वशीभूत होकर के पूरे देश की संस्कृति को समझ सकें। नहीं तो ये स्थल एक जगह पर भी बनाए जा सकते थे। 12 ज्योतिर्लिंग जगह जगह फैले हुए हैं, चारों धाम जगह जगह फैले हुए हैं और इसके जो प्राकृतिक स्थल हैं उनका तो अपना आनंद होता है, प्रकृति जितना तो हमें कुछ दे ही नहीं सकता है
1: जी।
2: जी,
1: तो दर्शन दृष्टि और पांव में आपने इन्हीं ज्योतिर्लिंगों का पूरा लिखा है।
2: हाँ, इसमें केवल ज्योतिर्लिंग नहीं है, आप जैसे शीर्षक से देखेंगे

0: ये दर्शन दृष्टि और पांव। दर्शन इसमें मेरा श्लेष है, दर्शन उस ज्योतिर्लिंग या चारों धाम के जो विग्रह है मूर्ति उसके दर्शन से भी है, और जो जीवन दर्शन है वह दर्शन विष में आता है। और उस स्थान को देखने की दृष्टि क्या है, उसको देखने की, उसको समझने की दृष्टि क्या है? क्या आप गए यात्रा किए, धार्मिक स्थल पर गए हैं तो वहां आपने दर्शन पूजन किया और आ गए, प्राकृतिक स्थल पर गए हैं तो आपने एंजॉय किया और आ गए, चलते गए चलते आगे, क्या यही है? नहीं, मेरा मानना है कि जहां आपने दर्शन किया वहां का जीवन दर्शन क्या है इस चीज को देखिए। आपने किसी पर्वतीय या किसी मनोरम स्थल का भ्रमण किया है तो उस पर आपकी दृष्टि क्या है? और पांव यात्राओं से जुड़े होते हैं, बेसिक चीजें हैं। आप जब यात्रा करते हुए अपनी मूल चीजों से जुड़े रहते हैं उसको संकेतित करता है पांव। इन सब चीजों को मिलाकर के मैंने धार्मिक स्थलों से लेकर के प्राकृतिक स्थलों की यात्राओं का वर्णन इसमें किया हुआ है।
1: काफी जगह आप गए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मदुराई सिक्किम वगैरह, इन सभी जगहों पर आप गए, अजंता एलोरा पंचमढ़ी, इन सभी का आपने इसमें वर्णन किया है। बस एक काम आपने नहीं किया होगा जो आम जनता करती है कि कहीं भी हम जाते हैं और अपनी सेल्फी खींच लाते हैं।
0: जी जी जी जी
1: आज हमारा जितना भी उद्देश्य है वो यही है कि हम किसी भी धार्मिक या बड़े जगह जाकर सेल्फी जरूर खींच के आते हैं, इतना हमने कमाया है मुझे लगता है।
0: बड़ा आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। मैं देखता हूँ कई बार धार्मिक स्थलों पर जाता हूँ, ज्योतिर्लिंगों में जाता हूँ, जहाँ पर मोबाइल फोन अलाउड है, कैमरा अलाउड है, वहां पर लोग लेके जाते हैं, एक मिनट दो मिनट के उनको दर्शन मिलता है, लेकिन वो खुद दर्शन करने के बजाय मोबाइल को दर्शन कराते रहते हैं। मैं कहता हूं भाई आपको ये चीज तो घर पे टीवी पे मिल जाएगी, आप दर्शन करने गए हैं, आस्था माने तो दर्शन करिए। दूसरी बात, अगर मैं पर्यटक स्थलों की बात करूं तो मैं कहीं प्रकृति में जाता हूं तो प्रकृति में मैं खो जाता हूं। प्रकृति मुझे बहुत प्रिय है, मुझे इस बात की आपको शायद मंदाकिनी जी विश्वास ना हो, मुझे भूल जाता है कि यहां फोटो भी खींचनी चाहिए।
1: जी
0: आते आते टाइम एक दो फोटो खींच लेता हूं मैं, क्योंकि कहीं अपने यात्रा संस्मरण डालना होता है, दिखाना होता है, तो मैं प्रकृति को अपनी आंखों से देखना ज्यादा पसंद करता हूं बजाय मोबाइल कैमरे के।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और बस चलते चलाते एक गीत का और सुनना चाहेंगे हम।
0: जी जरूर।

था जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधन, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई का प्रसारण। यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है, एफएम 102 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के आधिकारिक मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। सायंकाल के 5 बजे हैं, अब हमारी युवा श्रोताओं का कार्यक्रम होगा युववाणी।

0: तो हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके मन पसंदीदा शो में जिसका नाम है युववाणी। मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त स्वर्णिम
1: और मैं हूं चेष्टा।

दोस्तों आज एक जुलाई है, एक नया महीना शुरू हो रहा है, एक नई पॉजिटिविटी के साथ शुरू हो रहा है। तो चलिए हमारे आज के कार्यक्रम को भी शुरू करते हैं और आपको ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनाते हैं आज का ये पहला गीत।

जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

0: दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके मनपसंद इवनिंग शो जिसका नाम है युववाणी में। मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त स्वर्णिम
1: और मैं हूं चेष्टा।
0: दोस्तों आज हम आपसे एक ऐसी बात साझा करना चाहते हैं जो सुनने में बहुत सरल लगेगी, पर अगर इसे हम अपने जीवन में उतार लें तो जीवन और रिश्तों की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी।
1: और इसीलिए दोस्तों हमारे आज के संवाद का जो विषय है वो है धन और पद अस्थाई है, स्थाई आपका व्यवहार होता है।
0: बिल्कुल। दोस्तों जरा सोचिए, आज किसी के पास बहुत पैसा है, बड़ा घर है, ऊंचा पद है, पर क्या ये उसके पास हमेशा रहेगा? इस बात की कोई गारंटी नहीं है।
1: और दोस्तों समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है और कभी कभी पद और संपत्ति भी बदल जाते हैं। लेकिन एक चीज है जो लोगों के दिलों में हमेशा बनी रहती है और वो है आपका व्यवहार।
0: दोस्तों कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बहुत साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन उनका अपनापन, उनकी विनम्रता और दूसरों के प्रति सम्मान उन्हें खास बना देता है। वहीं कुछ लोग बहुत सफल होने के बावजूद अपने व्यवहार के कारण लोगों से दूर हो जाते हैं।
1: और स्वर्णिम कहा भी तो जाता है ना कि मीठे बोल और अच्छा व्यवहार वो दौलत है जिसे खर्च करने पर भी वो कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता ही जाता है।
0: बिल्कुल चेष्टा, बिल्कुल सही बात कही तुमने। और अगर हम इतिहास पर नजर डालें ना तो इतिहास ऐसे अनेक उदाहरणों से भरा हुआ है। महान व्यक्तियों को केवल उनके पद या उपलब्धियों से नहीं बल्कि उनके सरल स्वभाव, विनम्रता और मानवीय व्यवहार से उन्हें याद किया जाता है।
1: तो दोस्तों जीवन में सफलता पाना जरूरी है हर युवा, साथ ही हम भी इस सपने के पीछे दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं। मेहनत करके धन कमाना अच्छी बात है, ऊंचे पद पर पहुंचना कौन नहीं चाहता आखिर, लेकिन इन सब के साथ आपके व्यवहार को भी मत बदलिए, उसे भी याद रखिए कि आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए।
0: क्योंकि लोग आपकी कमाई को भूल सकते हैं, आपके पद को भूल सकते हैं, लेकिन आपके आपने जो उनके साथ उन्हें कैसा महसूस कराया वो ये कभी नहीं भूल सकते।
1: तो इससे हमें ये सीखना चाहिए कि ऐसा व्यवहार रखिए लोगों के साथ जो आपके नाम से पहले आपकी इंसानियत को याद करें।
0: FM 102.6 पे दोस्तों आप सुन रहे हैं युववाणी। अब कार्यक्रम में आगे चलते हैं और आपको ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में।

श्रोताओ एक आवश्यक सूचना सुनिए। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 31 जुलाई 2026 को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देता है। इसके लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जमा की जाएंगी। पोर्टल का पता है https://awards.gov.in। पोर्टल का पता पुनः सुने https://awards.gov.in। इसके माध्यम से ऑनलाइन ही ये नामांकन और अनुशंसाएं जमा की जानी है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई सन 2026। सूचना समाप्त हुई।

जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

0: दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट नॉलेज कॉर्नर की ओर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो हम सभी के जीवन से जुड़ा है, क्योंकि दोस्तों आज हम मना रहे हैं नेशनल डॉक्टर्स डे।
1: दोस्तों डॉक्टर केवल बीमारी का इलाज नहीं करते, बल्कि मरीजों को नई उम्मीद, नया आत्मविश्वास और स्वस्थ जीवन की ओर लौटने का रास्ता भी दिखाते हैं।
0: बिल्कुल सही है चेष्टा। जब भी कोई व्यक्ति या परिवार किसी कठिन बीमारी से गुजरता है, तब डॉक्टर ही वो व्यक्ति होते हैं जिन पर सबसे अधिक भरोसा किया जा सकता है।
1: और इसी के साथ दोस्तों, भारत में हर वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। ये दिन महान चिकित्सक, शिक्षावाद, समाज सेवा और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है।
0: दोस्तों डॉक्टर्स का काम केवल दवा देना ही नहीं होता, बल्कि डॉक्टर्स मरीज का मनोबल भी बढ़ाने में सहायक होते हैं।
1: और कई बार मरीज डर जाता है, लेकिन डॉक्टर के दो अच्छे शब्द उसे हिम्मत दे देते हैं। इसीलिए दोस्तों कहा भी जाता है कि डॉक्टर की मुस्कान भी दवा की तरह काम करती है, है ना स्वर्णिम?
0: बिल्कुल चेष्टा। और डॉक्टर्स का जीवन बहुत अनुशासित और जिम्मेदारियों से भरा होता है। कई बार उन्हें रात दिन, छुट्टियों और त्योहारों में भी मरीजों को सेवा प्रदान करनी पड़ती है।
1: और अगर हम हाल ही के वर्षों को देखें तो महामारी के समय डॉक्टरों ने जिस समर्पण और साहस के साथ काम किया वो पूरे देश ने देखा। इन्होंने सुरक्षा की चिंता किए बिना लाखों लोगों की जान बचाने का प्रयास किया था।
0: बिल्कुल, उस समय में डॉक्टर्स, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी और अस्पताल का पूरा स्टाफ सच्चे कोरोना योद्धा बनकर सामने आए थे।
1: बिल्कुल, और हमारे देश में ऐसे अनेक डॉक्टर हैं जो दूर दराज के गांवों और कठिन क्षेत्रों में भी लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
0: दोस्तों राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे हमें ये सिखाता है कि सभी व्यक्तियों को डॉक्टरों का सम्मान करना चाहिए। और दोस्तों इसलिए आज के नॉलेज कॉर्नर सेगमेंट में हम आपके लिए एक खास भेंटवार्ता लाए हैं, जहां हम आपको एक युवा डॉक्टर से बातचीत सुनाएंगे। तो चलिए सुनते हैं। तो आज के खास शो में हमारे साथ मौजूद हैं।
2: हाय, मेरा नाम डॉक्टर अनिमेश राठौर है। मैं एडीएमओ की पोस्ट पे हूँ, कोटा रेलवे हॉस्पिटल में।
0: तो अनिमेश जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके डॉक्टर बनने की इंस्पिरेशन कहाँ से आई? आपके बचपन का यही सपना था या क्या हुआ, कैसे?
2: इसके पीछे काफी खास स्टोरी है। जब मैं छोटा था, 9th क्लास में था, तो मैं एक सब्जेक्ट पढ़ रहा था, उसमें बायोलॉजी में लिखा हुआ था एक सब्जेक्ट में कि इस तरीके से हमारी बॉडी हमारे खुद को रिपेयर करती है। उस चीज को पढ़ के मेरे को बड़ा इंस्पिरेशन मिला कि कितनी खास हमारा शरीर को भगवान ने बनाया है कि हम खुद को ही खुद ठीक करते हैं। तो मेरा काफ़ी मन हुआ कि मुझे इस चीज़ के बारे में और पढ़ना है, और फिर मैं इस फील्ड में धीरे धीरे करके एंटर होता गया। सबसे

0: पहले मैंने 11th और 12th में कोचिंग ज्वाइन करी। कोचिंग के साथ फिर मैंने तैयारी भी करी स्कूल की भी, और साथ ही साथ मैंने इस एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी करी। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को फर्स्ट ड्रॉप लेना पड़ा और उसके बाद फिर जाके मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने कोटा मेडिकल कॉलेज से ही अपनी MBBS पास आउट करी।
1: हमने अक्सर देखा है कि लोग डॉक्टर्स की केवल सफलता देखते हैं, पर उसके पीछे जो उनकी चुनौतियां रहती हैं उस पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया, तो उस पे आपके कहना चाहिए?
0: मैं यही कहना चाहूँगा कि इस जर्नी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है कंसिस्टेंसी। हमें सबसे पहले एक कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। निरंतरता हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हमें एक टॉपिक में अपना इंटरेस्ट होना ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें इंटरेस्ट नहीं आएगा तो हम कंसिस्टेंट नहीं हो पाएंगे, और कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो हम उस फील्ड में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो मेरे को लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कंसिस्टेंसी है।
1: बिल्कुल। तो निमेश जी, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो लोगों को जब भी कोई तकलीफ होती है, कोई भी बीमारी होती है, तो सबसे पहले इंटरनेट पे जाके सर्च कर लेते हैं और फिर उसी जानकारी से अपने आप का इलाज करने की कोशिश करने लगते हैं। तो इसमें आपको क्या लगता है?
0: मुझे लगता है कि अधूरा ज्ञान सबसे ज़्यादा घातक होता है, क्योंकि कई बार लोग इंटरनेट के भरोसे रह के उल्टी सीधी दवाई खा लेते हैं। एक बार की बात है, एक मरीज खांसी जुकाम के लिए आया, उसने घर से अपना इलाज लिया 1 महीने तक। जब हमने उसको डायग्नोस किया, उसका आगे इन्वेस्टिगेशंस करी, तो हमको पता चला कि उसके TB है और वो काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमको किसी भी बीमारी को छोटा नहीं समझना चाहिए, और कोई भी सिम्टम हो तो हमको एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, खुद से उसका इलाज नहीं करना चाहिए। क्योंकि बड़ी बीमारी को अगर हम सही टाइम पे पकड़ सकें तो उसका इलाज पॉसिबल है, मगर एक टाइम होता है उससे ज़्यादा आगे निकल जाए तो फिर हम उसका कुछ नहीं कर सकते, फिर वो डैमेज करके ही जाती है।
1: तो अक्सर हम भूल जाते हैं कि डॉक्टर्स की भी एक पर्सनल लाइफ होती है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं, और साथ ही साथ में आप अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखते हैं?
0: सबसे पहले मैं हेल्थ के बारे में आपको बताना चाहूँगा। अक्सर डॉक्टर्स की जो यूजुअल नॉर्मल ड्यूटीज़ होती है उसमें लॉन्ग आवर्स की सीटिंग इंक्लूड होती है। उसमें कई बार पेशेंट्स की वजह से या इतना वर्कलोड के कारण कई बार वो लोग भूल जाते हैं कि हमको बीच में पानी वगैरह भी पीना होता है। तो मैंने एक अपना रूटीन बना रखा है कि हर आधे घंटे में मैं एटलीस्ट एक बार, चाहे 3 या 4 सिप्स ही लूँ, मगर पानी ज़रूर पीता हूँ। उसके अलावा जब भी मेरे को मौका मिलता है तो मैं वॉक को प्रीफर करता हूँ, इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग लाइक ऑटोमोबाइल्स वगैरह या कुछ आसपास की दूरी दूरी के लिए। जब भी मेरे को मौका मिलता है तो मैं लिफ्ट की जगह स्टेयर्स का यूज़ करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं कई बार फिज़िकल स्पोर्ट्स भी खेलता हूँ, जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है, लाइक बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया। इसके साथ साथ हमारे हॉस्पिटल की एक बात है कि वहाँ पे योगा भी क्लासेस होती है, तो हम लोग बीच बीच में वो भी ज्वाइन करते रहते हैं, तो एक मेडिटेशन भी हमारा उसमें हो जाता
1: और बात करें आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने के, तो वो कैसे करते हैं आप?
0: है। देखिए, साथ में जब भी हमारी प्रायोरिटी होती है कि पेशेंट्स, तो भले ही हम घर पे हो या कहीं पे भी हो, हमको जब भी कोई भी कॉल आता है किसी भी पेशेंट से रिलेटेड या हॉस्पिटल से किसी भी चीज़ के लिए, तो हम सबसे पहले उनकी बात सुनते हैं, चाहे हम कुछ भी काम कर रहे हो। और जो भी हमको आगे अपने इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करने होते हैं मरीज से रिलेटेड या जो भी हमारा काम होता है, तो हम उसको प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में।
1: हर साल लाखों बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। अगर हम कोटा की ही बात करें तो यहाँ पे भी हर साल लाखों बच्चे आते हैं यही सपना लेके। तो आज जब आप डॉक्टर बन चुके हैं, आप ये सपना जी रहे हैं, तो जो नए युवा साथी हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि ये जो सपना है बहुत ही अच्छा सपना है आप सबका, कि आप इस फील्ड में आना चाहते हैं। आपकी आज की गई एक एक मेहनत आगे जाके किसी ना किसी की लाइफ जरूर बचाएगी, और बहुत बहुत अच्छा लगता है जब मरीज़ ठीक होके जाता है, वो हमको दुआएं देता है, हमको धन्यवाद करता है। वो जो सुकून आपको मिलता है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी की गई सारी मेहनत आज जाके सफल हुई है। मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि कंसिस्टेंट रहें, मेहनत से नहीं डरें, खूब मेहनत करें, आगे जाके अपना और अपने शहर का नाम रोशन करें।
1: अब आप हमारे साथियों को ये भी बताइए कि आप जब डॉक्टर बनने के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो आपने किस तरह से प्रिपेयर किया, और आज जब आप डॉक्टर बन चुके हैं, तो आपकी यहाँ तक की जर्नी कैसी रही?
0: जैसा कि आपने बताया कि कोटा लाखों बच्चे हर साल इस सपने के साथ आते हैं, मैंने भी जब ये सपना देखा था उसके बाद मैंने इसका रूट सबसे पहले पता करने की कोशिश करी कि मैक्सिमम लोग किस तरीके से सफल होते हैं इस चीज़ में। तो मैंने भी अपनी कोचिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करी, कोचिंग प्रिपरेशन के साथ

0: काफी चुनौतियां आई, काफी सारे टफ सर्कमस्टांसेस आए, बट उनसे मैं लड़ा भी सही और कई बार हारा भी सही। तो मैं यही कहूँगा कि सफलता की पहली सीढ़ी असफलता ही होती है, क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मैं भी एक साल मैंने ड्रॉप लिया और उसके साथ मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया। मैं उसके लिए प्रिपेयर करता गया, मैंने और ज़्यादा मेहनत करी और उसके बाद जाके मेरा सिलेक्शन कोटा मेडिकल कॉलेज में ही हो गया। उसके बाद हमने 5 साल वहाँ पर अपनी MBBS पूरी करी, इंटर्नशिप पूरी करी। उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है UPSC CMS, जिसके थ्रू हमें रेलवे और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में अपनी सेवा देने का मौका मिलता है। उसी के थ्रू मेरा रेलवे में सिलेक्शन हुआ और अभी मैं इस पोस्ट पे, ATMO की पोस्ट पे, कोटा रेलवे हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। तो
1: और आपकी इस जर्नी का एक्सपीरियंस कैसा रहा?
0: इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए, और जो भी युवा लोग हैं जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, पर हमको खुद पर भरोसा रखना है, हमको कंसिस्टेंट रहना है। कई बार मैं सोचता था कि यार मेरे नंबर नहीं आ रहे, इन लोगों के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, इनका हो जाएगा, मेरा क्या होगा, उनसे कंपेयर करके मैं खुद डिप्रेशन में चला जाता। मगर इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा कंपटीशन औरों से बाद में होगा, मगर हमारा कंपटीशन पहले खुद से है। हम जब आज प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि अगली बार जब मुझसे गलती हुई, सबसे होती गलती, पर जैसे ये क्वेश्चन में मुझसे गलती हुई या ये टॉपिक में मेरे को गलती हुई, मैं खुद से प्रोमिस करूँगा कि अगली बार अगर ये मेरे सामने आता है तो मैं इसको गलत नहीं होने दूँ। हम खुद से कंपटीशन करके ही खुद का इंप्रूवमेंट करते हैं और धीरे धीरे हम बाकी भीड़ से भी ऊपर आ जाते
1: तो
0: हैं।
1: अनिमेश जी, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। आपने हमें आपका कीमती समय दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज डॉक्टर्स डे है, तो आकाशवाणी की ओर से आपको और हमारे देश के सभी डॉक्टर्स को हैप्पी डॉक्टर्स डे।
0: धन्यवाद। मैं आकाशवाणी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच के पे आने का मौका दिया और मेरी बात लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचाने का एक मौका दिया। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी के खुश, स्वस्थ और मंगलमय रहने की कामना करता हूँ। धन्यवाद।
1: धन्यवाद अनिमेश जी, और मुझे उम्मीद है हमारे श्रोताओं को आज का कार्यक्रम सुन के काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो धन्यवाद।

0: दोस्तों एफएम 102 103.6 पे सुन रहे हैं आप आपका मनपसंद इवनिंग शो जिसका नाम है युवाणी। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त स्वर्णिम
1: और मैं हूं चेष्टा।
0: अब हमारे कार्यक्रम में आगे चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट रंग रंगीलो राजस्थान की ओर।

0: राजस्थान को रंग रंगीलो राजस्थान यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ की संस्कृति, पहनावा, लोकगीत, हस्तशिल्प और आभूषण पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखते हैं। और दोस्तों, इन्हीं में से एक है मीनाकारी कला।
1: तो चेष्टा, क्या तुम हमारे दोस्तों को बता सकते हो कि मीनाकारी कला क्या होती है?
0: बिल्कुल, मीनाकारी धातु, विशेष रूप से सोने, चांदी और तांबे की सतह पर रंगीन एनामेल यानी कि रंगीन कांच जैसे पदार्थ से सुंदर डिजाइन बनाने की कला है। इसमें फूल, पत्तियां, मोर, पक्षी और पारंपरिक आकृतियां बनाई जाती है।
1: यानी ये सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि एक कलाकृति होती है।
0: बिल्कुल, और स्वर्णिम, माना भी जाता है कि मीनाकारी कला मुगल काल में भारत आई और बाद में आमेर के शासक राजा मान सिंह इसे राजस्थान लेकर आए थे। और इसके बाद जयपुर इस कला का सबसे बड़ा केंद्र बन गया और आज भी दुनिया भर में जयपुर की मीनाकारी विशेष पहचान रखती है।
1: और जयपुर सबसे प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा बीकानेर, नाथद्वारा, उदयपुर और प्रतापगढ़ भी अपनी अलग अलग शैली की मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध हैं।

0: दोस्तों अब बढ़ते हैं नॉलेज कॉर्नर्स के बाकी टॉपिक्स की ओर। दोस्तों हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो चाय की दुकान हो, सिलाई का काम हो, मोबाइल रिपेयरिंग या कोई छोटा उद्योग। लेकिन अक्सर सबसे बड़ी समस्या होती है पैसों की कमी।
1: और दोस्तों इसी समस्या को दूर करने के लिए 8 अप्रैल 2015 को भारत सरकार ने शुरू करी है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसे हम PMMY के नाम से भी जानते हैं।
0: इस योजना के तहत बिना गारंटी के 10 लाख तक का लोन दिया जाता है, ताकि लोग अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सके और उसे आगे बढ़ा सके।
1: और दोस्तों इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी है कि ये योजना माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी यानी कि MUDRA के तहत चलाई जाती है।
0: अब तक देश भर में 40 करोड़ से अधिक लोन स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या में लाभार्थी महिलाएं और युवा उद्यमी हैं।
1: इस योजना का मुख्य उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना।
0: और दोस्तों मुद्रा योजना के तहत लोग 3 कैटेगरीज में लोन ले सकते हैं। पहली है शिशु लोन, जहां 50,000 तक का लोन मिलता है। किशोर लोन, जहां 50,000 से 5 लाख तक का लोन मिलता है। और तरुण लोन, जहां 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन मिलता है।
1: और दोस्तों इसे हर स्तर के छोटे उद्यमियों को उनकी जरूरत के अनुसार मदद मिलती है।
0: सोचिए दोस्तों, एक छोटा सा सपना जब सही समय पर सहारा मिल जाए तो वो एक बड़ी सफलता की कहानी बन सकता है। मुद्रा योजना ऐसे ही सपनों को साकार करने का माध्यम बनी है।
1: और अगर आपको भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अपने नजदीकी बैंक, NBFC या माइक्रो फाइनेंस संस्था से संपर्क करें और लाभ उठा सकते हैं।

0: अब दोस्तों चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे उत्सव की जो सिर्फ मनाया नहीं जाता बल्कि धरती को जीवन देता है।
1: जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वन महोत्सव सप्ताह की।
0: दोस्तों ये महोत्सव हर साल जुलाई के पहले सप्ताह में पूरे भारत में मनाया जाता है। इसकी

0: शुरुआत 1950 में श्री के एम मुंशी ने की थी, जो उस समय के केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री थे।
1: दोस्तों, इस सप्ताह का मुख्य उद्देश्य है पेड़ लगाना, हरियाली बढ़ाना और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना। अब इसे मुख्य तथ्यों की ओर चलते हैं और देखते हैं कि इसके मुख्य तथ्य क्या है। तो दोस्तों, एक स्वस्थ पेड़ साल भर में 100 से 120 किलो ऑक्सीजन प्रदान कर सकता है।
0: पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल में रख के जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद कर सकते हैं।
1: साथ ही पेड़ न सिर्फ हमें शुद्ध हवा देता है, बल्कि जल संरक्षण, मिट्टी की उर्वरकता और जैव विविधता को भी बनाए रखता है।
0: सोचिए दोस्तों, पेड़ नहीं होंगे तो छांव नहीं होगी, ना बारिश का संतुलन होगा, ना ही वो जीवन में ताजगी रहेगी जो हमें हर सुबह मिलती है। और वन महोत्सव हमें यही याद दिलाता है कि एक पेड़ 100 उपकार के बराबर है।
1: तो दोस्तों, इसी दौरान स्कूल्स, कॉलेज, सरकारी संस्थान और आम लोगों द्वारा वृक्षारोपण अभियान भी चलाए जाते हैं।
0: इस वन महोत्सव सप्ताह पर क्यों ना दोस्तों हम भी एक संकल्प लें, कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं और उसकी देखभाल करें।
1: क्योंकि पेड़ लगाना ही काफी नहीं है, उसे बड़ा करना और भी हमारी जिम्मेदारी होती है।
0: और चेष्टा, सच्ची बताओ ना तो एक पेड़ को जब हम बड़ा होते हुए देखते हैं तो दिल से काफी अच्छा लगता है।
1: हाँ, अच्छा भी लगता है और एक सुकून भी मिलता है।

0: दोस्तों आज के दिन यानी 1 जुलाई 2017 को भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर GST लागू किया गया था। इसी की याद में हर साल 1 जुलाई को GST दिवस मनाया जाता है।
1: लेकिन सुवर्णिम, सवाल तो ये है कि GST आखिर है क्या?
0: GST एक अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स है जो वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री पर लगाया जाता है। इससे पहले भारत में VAT, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एंट्री टैक्स जैसे कई अलग अलग कर लागू होते थे।
1: और दोस्तों इन्हें कई करों को मिलाकर एकीकृत कर प्रणाली बनाई जाती है जिसे हम GST कहते हैं। इसका उद्देश्य था एक राष्ट्र एक कर एक बाजार। और दोस्तों GST से जुड़े सभी महत्वपूर्ण निर्णय GST परिषद लेती है। इसकी अध्यक्षता भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं।
0: अब जिसका बात करते हैं GST के प्रकारों की।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों भारत के में मुख्य रूप से 4 प्रकार के GST लागू होते हैं। CGST यानी केंद्रीय GST, SGST यानी राज्य GST, IGST यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लगने वाला GST और UTGST जो केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होता है।
0: और दोस्तों GST की अलग अलग कर दरें भी हैं, जैसे 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। रोजमर्रा की कई आवश्यक वस्तुओं पर GST नहीं लगता, जबकि कुछ विलासिता की वस्तुओं पर 28% के साथ अतिरिक्त सेस भी लगाया जाता है।
1: और दोस्तों GST लागू होने के बाद टैक्स भुगतान की प्रक्रिया पहले से अधिक डिजिटल और पारदर्शी बनी गई है। इसे ई वे बिल, ई इनवॉइस और ऑनलाइन रिसर्च जैसी और रिटर्न जैसी सुविधाओं ने व्यापार को आसान बना दिया है।
0: सरकार के अनुसार हाल के वर्षों में GST संग्रह लगातार बढ़ा है और कई महीनों में ये 2,00,000 करोड़ रुपए से अधिक भी रहा है। ये देश की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि का संकेत माना जाता है।
1: तो दोस्तों GST दिवस केवल एक कर व्यवस्था का उत्सव नहीं है बल्कि ईमानदारी, करदाताओं और देश की आर्थिक प्रगति का भी सम्मान है।
0: जब भी आप कोई सामान खरीदें, पक्का बिल

0: और साथ ही दोस्तों आज 1 जुलाई का दिन भारत के बैंकिंग इतिहास में भी बेहद खास है, क्योंकि आज है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस। आज ही के दिन 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI की स्थापना हुई थी। ये भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है।
1: पर स्वर्णिम, क्या तुम जानते हो कि SBI की जड़ें इससे भी ज्यादा पुरानी है?
0: बिल्कुल चेष्टा, मैं जानता हूँ कि इसकी शुरुआत 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में हुई थी। बाद में इसका नाम बैंक ऑफ बंगाल रखा गया। इसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास के साथ मिलकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना।
1: फिर 1955 में भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की पहल पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था।
0: SBI का उद्देश्य दोस्तों केवल बैंकिंग सेवाएं देना ही नहीं, बल्कि देश के आर्थिक विकास, ग्रामीण बैंकिंग और वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा देना है।
1: और दोस्तों आज SBI की 22 से अधिक शाखाएं, 65 से अधिक ATM और ADWM दुनिया के कई देशों में कार्यालय हैं और करोड़ों भारतीय इस बैंक की सेवाओं का लाभ भी उठा रहे हैं।
0: और दोस्तों मैं बता दूं कि 22,000 से अधिक शाखाएं और 65,000 से अधिक ATM। और दोस्तों समय के साथ SBI ने डिजिटल बैंकिंग में भी बड़ी पहचान बनाई है। योनो यू ओनली नीड वन ऐप के माध्यम से ग्राहक घर बैठे बैंकिंग, निवेश, बीमा और शॉपिंग जैसी कई सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।
1: भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में SBI का योगदान हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। किसानों, विद्यार्थियों, छोटे व्यापारियों और उद्योगों को वित्तीय सहायक देकर ये देश के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है।
0: स्थापना दिवस के अवसर पर हम उन सभी कर्मचारियों और ग्राहकों को शुभकामनाएं देते हैं जिन्होंने SBI की इस लंबी और गौरवशाली यात्रा में अपना योगदान दिया है।

0: दोस्तों, किसी भी समाज की प्रगति उसके स्वस्थ नागरिकों पर निर्भर करती है। ऐसे में डॉक्टरों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है।
1: दोस्तों, भारत के इतिहास में कुछ ऐसे डॉक्टर हुए हैं जिन्होंने केवल मरीजों का इलाज ही नहीं किया बल्कि पूरे समाज के विकास में भी अपना योगदान दिया है और जीवन को समर्पित किया है।
0: आज हम ऐसे ही महान व्यक्ति की जयंती के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने चिकित्सा, शिक्षा, समाज सेवा और प्रशासन हर क्षेत्र में अपनी अमिट छाया छोड़ी है।
1: बिल्कुल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जी के बारे में।
0: दोस्तों, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जी का जन्म 1 जुलाई 1882 को बंकीपुर पटना बिहार में एक प्रवासी बंगाली कायस्थ परिवार

0: में हुआ था।
1: डॉक्टर रॉय ने चिकित्सा के साथ साथ देश की सेवा का भी मार्ग चुना था और साथ ही स्वतंत्रता के बाद ये पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री बने और कई सालों तक इस पद पर रहते हुए राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए थे।
0: और दोस्तों, इन्हें देश की सेवा के योगदान में सन 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।

दोस्तों, तो आज हमने जाना है कि डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय केवल एक महान चिकित्सक ही नहीं बल्कि एक दूरदर्शी नेता, समाजसेवी और राष्ट्र निर्माता भी थे। उनका जीवन हमें सेवा, परिश्रम, अनुशासन और मानवता का संदेश देता है। आइए उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं।

0: स्वर्णिम, आज तो पता ही नहीं चला ना कि कब 6 बज गए और हमारे जाने का समय हो चुका है।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों आज का हमारा और आपका साथ यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आज जो हमने जानकारियां दी, जो गाने सुनाए, वो आपको काफी पसंद आए होंगे।
0: तो दोस्तों ऐसे ही जुड़े रहिएगा आकाशवाणी के साथ और बने रहिएगा हमारे कार्यक्रम के साथ। मिलते हैं आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए अपने दोनों रेडियो दोस्त, मैं चेष्टा गौतम
1: और मैं स्वर्णिम।
0: नमस्कार, नमस्कार।

युवाणी कार्यक्रम आकाशवाणी कोटा बूंदी से प्रसारित किया जा रहा था। FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर में 1413 किलोहर्ट्ज पर। सायंकाल के 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है। ये प्रपोजल है जो आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 मानव दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए।

0: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में, कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको, कानपुर हमीरपुर महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
1: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि वीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक पीड़ितों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। बालिका वधू फिल्म का गाना सुनिए अमित कुमार और रजनी शर्मा तथा आरडी बर्मन की आवाजों में। आनंद बख्शी की गीत रचना है और संगीत है आरडी बर्मन का।

0: अब दुनिया के किसी भी हिस्से में सुनिए आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: ओ पिव जी, ओ ढोला जी, ओ पिव जी, थोड़ी सी ना जा दे।
0: प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर गूंज रहा है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एआईआर। इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद रेडियो आइकन का चुनाव करिए और अब आकाशवाणी कोटा को अपने मोबाइल पर सुनने का आनंद लीजिए।

आइए उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों में देवदास फिल्म का गीत सुनते हैं। नुसरत बद्र की ये रचना है और इस्माइल दरबार का संगीत।

श्रोताओ, प्रोग्राम का अगला गीत सुनने से पहले लीजिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। कल हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का प्रसारण होगा सवेरे 8:15 पर। विषय है गर्दन, कंधे और पीठ का दर्द, कारण और इलाज। हमारे विशेषज्ञ होंगे अस्थि और जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा शंकर ढिल्लन। आप फोन नंबर 2941142 एसटीडी कोड 0744 मिलाकर और प्रसारण के दौरान उनसे इस विषय पर बात कर सकते हैं। विषय एक बार फिर से सुन लीजिए, गर्दन, कंधे और पीठ का दर्द, कारण और इलाज। फोन नंबर है 2941142 एसटीडी कोड 0744 और प्रसारण समय कल सवेरे 8:15 से 9 बजे तक। कार्यक्रम संबंधी एक और सूचना सुनिए। अभी 7 बजे चौपाल कार्यक्रम होगा, इसमें आज प्रायोजित कार्यक्रम होगा इफ्को द्वारा। विषय है बीज उपचार में जैव उर्वरकों का महत्व। हमारे विशेषज्ञ होंगे श्री लालाराम चौधरी साहब। इसमें आप फोन करके और उनसे आज के विषय पर बात कर सकते हैं। फोन नंबर वही रहेंगे 2941142। विषय एक बार फिर से सुन लीजिए, बीज उपचार में जैव उर्वरकों का महत्व। विशेषज्ञ श्री लालाराम चौधरी और कार्यक्रम के प्रसारण का समय है आज शाम 7 बजे से। ये थी कार्यक्रम संबंधी कुछ सूचनाएं।

0: और फिर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
1: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हम सफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ, हमेशा, देश और दुनिया भर में, कहीं भी।
2: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हम सफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in।
4: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी नवाचारों को बदलाव का सशक्त माध्यम बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 जुलाई को प्रस्तावित राजस्थान दौरे को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आबादी बदलावों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें जल्द पेश करने को कहा। और राज्य में मॉनसून के आगमन का काउंटडाउन शुरू, पूर्वी हिस्से से प्रवेश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि डिजिटल गवर्नेंस देश में बदलाव का सशक्त माध्यम बनी है। तकनीक के प्रभावी उपयोग से सरकारी योजनाओं में बिचौलियों का दखल खत्म हुआ है। श्री शर्मा आज जयपुर में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि DBT से हर योजना का लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंच रहा है। राजस्थान में तकनीक को जनकल्याण का माध्यम बनाया जा रहा है।
5: राजस्थान में तकनीकी को जनकल्याण का प्रभावी माध्यम बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। हमारा मानना है कि डिजिटल तकनीक कामकाज को केवल आसान ही नहीं बनाती, बल्कि नागरिकों के जीवन को सुविधाजनक और बेहतर भी बनाती है। इसी सोच के साथ हमने राज्य में राजस्थान AI ML पॉलिसी 2026 लागू की है। इस नीति से AI का उपयोग प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से करने का आधार तैयार हुआ है।
4: मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्मार्ट परियोजना, ई मित्र व्हाट्सएप सेवा और राजस्थान इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ किया। इससे पहले श्री शर्मा ने तकनीकी

0: सेवाओं पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन कर अवलोकन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। इस दौरान श्री शर्मा ने बताया कि राज्य को डेटा सेंटर क्षेत्र में 43,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें एसटीटी, जीडीसी, एचजी एकाया, नायो बोल्ट सहित कई नामी कंपनियां शामिल है। प्रदेश के आईटी और उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज तकनीकी नवाचारों से न्यूनतम सरकार और अधिकतम सुशासन की बात सार्थक हो रही है।
1: हर सेक्टर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी का महत्व है, और इसीलिए जो जनधन आधार और मोबाइल को जोड़ा गया उससे जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसके अंदर लीकेजेस खत्म हो गए। आज यूपीआई जो पहले मजाक बनाया जाता था, आज यूपीआई गांव-गांव में हो रहा है। एक महीने के अंदर तकरीबन 23 बिलियन ट्रांजैक्शन से ज्यादा हो रहे हैं। कौन से नए तरीके अपनाए जा सकते जो दूसरे राज्यों में हो रहे हैं उसे हम राजस्थान में करें, या राजस्थान के अंदर जो नए प्रयोग हो रहे हैं वो दूसरे राज्यों में करें। इस तरह का ये सेशन भारत को मजबूत करेगा, भारत के सुशासन को मजबूत करेगा और अंत में हर नागरिक को मजबूत करेगा।
0: राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हो रहे इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राजस्थान सरकार की ओर से किया जा रहा है। सम्मेलन में कल विभिन्न प्लेनरी और ब्रेकआउट सत्र होंगे। इसके बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ समारोह का समापन होगा। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग के राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने राजधानी दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी दी है। बैठक के फैसलों की मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8 किलोमीटर लंबी सड़क सुरंग को स्वीकृति दी गई है। इससे पश्चिम और दक्षिण दिल्ली के बीच संपर्क बेहतर होगा। इस पर 6,970 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे।
2: कई सारे पीछे प्रयास किए गए थे, फाइनली आज जो प्रयास अप्रूव हुआ है वो है 6 लेन द्वारका टनल, ये 6,970 करोड़ रुपीस की है। और दूसरा उत्तर प्रदेश में कानपुर को भोपाल से जोड़ने वाला लाइन, उसमें कानपुर से काबराई के बीच में 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे 7,145 करोड़, और उसके आगे वाले सेक्शन का भी उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है, एक्सेस कंट्रोल करना, उसकी वाइडनिंग इम्प्रूवमेंट, वो सब भी उसमें इंक्लूडेड है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे खंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 जुलाई को प्रस्तावित राजस्थान दौरे के मद्देनजर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। श्री मोदी बालोतरा के पचपदरा स्थित देश की पहली ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे। प्रशासन की ओर से कार्यक्रम की सभी तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। हमारे बालोतरा संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। दौरे को यादगार बनाने और हरित विकास की अलख जगाने के लिए बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया जा रहा है।
3: 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ जहां पचपदरा रिफाइनरी की सौगात देंगे, वहीं इस दिन को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन ने नई पहल करते हुए जिले में वृहत स्तर पर पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। पौधरोपण के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक नया संदेश देना है। बंसीलाल चौधरी, आकाशवाणी समाचार, बालोतरा।
0: जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज लोक मंथन 2026 के शुभारंभ का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा शिरकत कर रहे हैं। हम भारत के लोक थीम पर इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम का आयोजन इस साल दिसम्बर महीने में होगा। ये आयोजन भारतीय ज्ञान परंपरा, लोक संस्कृति और राष्ट्रीय चिंतन को समर्पित है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आबादी बदलावों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें जल्द पेश करने को कहा है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में समिति के साथ हुई बैठक में ये निर्देश दिये। जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित समिति ने गृहमंत्री को बताया कि इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा किया जाएगा। साथ ही इस बारे में स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय होगा और विभिन्न मंत्रालयों के साथ भी विचार विमर्श किया जाएगा। समिति ने जानकारी

0: इकट्ठा करने के लिए प्रश्नावली तैयार की है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल उच्च स्तरीय जनसांख्यिकीय मिशन की घोषणा की थी। इसके बाद सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई है। प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर आज खिलौना बैंक शुरू किए गए, साथ ही इन केंद्रों पर प्रवेशोत्सव और पौधरोपण के कार्यक्रम भी रखे गए। महिला और बाल विकास विभाग की शासन सचिव पूनम ने जयपुर के गौतम नगर आंगनबाड़ी केंद्र में खिलौना बैंक का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने बच्चों को प्रवेश किट भी वितरित किए। उधर नंद घर योजना के तहत पारंपरिक आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक किया जा रहा है। इसी कड़ी में पाली के महिला और बाल विकास अधिकारी प्रकाश पवार ने बताया कि जिले के 222 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर में बदलने का काम पूरा हो चुका है।
1: जिले में 222 नंदघरों का निर्माण किया गया है। बाला पेंटिंग, आरओ, एलईडी, भवन की मरम्मत, शौचालय संबंधी निर्माण आदि कार्य करवाए गए हैं। जो विभाग के लाभार्थी है, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको जो विभागीय सुविधा अच्छी गुणवत्ता के साथ मिलना सुनिश्चित। अभी और भी इसमें प्रगति रहता है, जिसमें और केंद्रों को भी नंदघर में चयनित किया जा सकेगा।
0: जयपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर आज स्वायत्त शासन विभाग के सचिव और सफाई कर्मचारी यूनियन के बीच वार्ता हुई। इसमें यूनियन की कुछ मांगों पर सहमति बनी है। विभाग के सचिव रवि जैन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार की ओर से कुछ मांगों पर सहमति के बावजूद सफाई संगठन अपनी अन्य मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती में परंपरागत रूप से साफ सफाई का काम कर रहे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
2: कि जो भी सफाई भर्ती होगी ये राजस्थान फाइनेंशियल कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज रूल के अंतर्गत होगी, और इसके अंतर्गत हमने जैसे पिछली बार भी किया था कि जो परंपरागत रूप से सफाई का काम कर रहे हैं उनको प्राथमिकता की बात लिखी थी 23 की भी भर्ती में, इसमें भी हम लिखेंगे। जो परंपरागत रूप से सफाई का काम कर रहे हैं उसको प्राथमिकता देने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भी 2-3 इश्यूज थे, उन सब इश्यूज को भी हमने टेकअप किया है।
0: सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने वार्ता को सकारात्मक बताते हुए कहा कि जल्दी ही हड़ताल समाप्त करने के बारे में औपचारिक निर्णय लिया जाएगा। राज्य में अगले 2 दिनों में मॉनसून के आगमन की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून राज्य के पूर्वी हिस्से से प्रवेश कर सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून के सक्रिय होने से कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं 6 जुलाई तक प्रदेश के अधिकतर भागों में बरसात शुरू होने की उम्मीद है। इस बार मॉनसून की दस्तक करीब 8 दिन देरी से होने की संभावना है। हालांकि विभाग ने इस बार जुलाई महीने में प्रदेश में सामान्य से कम बारिश का अनुमान जताया है। इस बीच मॉनसून के प्रवेश से पहले प्री मॉनसून गतिविधियां कुछ भागों में सक्रिय है। बीते 24 घंटों में कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग में हल्की से मध्यम बरसात हुई। जैसलमेर में आज धूल भरी आंधी चली। भरतपुर में सुबह पानी बरसने के बाद दिन भर ठंडी हवाओं का दौर चला। राजधानी जयपुर में भी कुछ स्थानों पर आज छितराई हुई बारिश हुई। आज 24 जिलों में आंधी और बरसात की चेतावनी है। कल से 4 जुलाई के बीच बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में तेज रफ्तार हवाएं और धूल भरी आंधी का अलर्ट बताया गया है। वहीं दूसरी ओर ज्यादातर हिस्सों में दिन भर तेज धूप और उमस का असर रहा। आज डॉक्टर्स डे है। महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बीसी राय की स्मृति में ये दिन मनाया जाता है। इस दिन चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टरों के समर्पण, सेवा भावना और मानवता के प्रति योगदान का सम्मान किया जाता है। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज की सह आचार्य डॉक्टर अदिति ने चिकित्सा पेशे को सेवा के साथ ही आत्मसंतुष्टि प्रदान करने वाला बताया।
3: डॉक्टर्स डे के इस विशेष अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक लैब मेडिसिन डॉक्टर हूं, आप हमसे अस्पताल में सीधे न मिलते हो, लेकिन आपकी जांच की हर रिपोर्ट के पीछे हमारी पूरी टीम की मेहनत, जिम्मेदारी और ईमानदारी होती है। जब किसी मरीज का सही समय पर सही निदान हो जाए, उसका इलाज शुरू हो जाए और वह स्वस्थ होकर अपने परिवार के पास लौट जाए, यही हमारे काम की सबसे बड़ी संतुष्टि है। आज डॉक्टर्स डे पर मैं समाज से केवल एक छोटी सी अपील करना चाहती हूं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, समय पर जांच करवाएं, डॉक्टर्स की सलाह का पालन करें और स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करें।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी नवाचारों को बदलाव का सशक्त माध्यम बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जुलाई को प्रस्तावित राजस्थान दौरे को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आबादी

0: बदलावों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें जल्द पेश करने को कहा। और राज्य में मॉनसून के आगमन का काउंटडाउन शुरू, पूर्वी हिस्से से प्रवेश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से डूंगरपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख चिंतन जोशी ने तैयार किया है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में 28 से 30 जून तक विशेष अभियान चलाया गया। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। पहले दिन जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों और सार्वजनिक स्थलों पर पोलियो बूथ स्थापित किए गए। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अलंकार गुप्ता ने बताया कि अभियान के दौरान हर पात्र बच्चे तक पहुंचने का प्रयास किया गया। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार जिले में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन लगातार जारी है। नगर परिषद क्षेत्र में शहरी सेवा शिविर तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में बिजली, पानी, सड़क, पट्टा वितरण, नाम परिवर्तन, आबादी, भूमि से जुड़े प्रकरणों सहित विभिन्न कार्यों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। जिला कलेक्टर देशल दान सहित प्रशासनिक अधिकारी नियमित रूप से शिविरों का निरीक्षण कर रहे हैं और आमजन की समस्याएं सुन रहे हैं। गलियाकोट पंचायत समिति की ग्राम पंचायत डैयाणा में आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर जिला सांख्यिकी विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सांख्यिकी के महत्व और विकास योजनाओं के निर्माण में आंकड़ों की भूमिका पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने कहा कि विश्वसनीय आंकड़े विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और भविष्य की नीति निर्माण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आधार होते हैं। वनपाल भर्ती परीक्षा जिले में 34 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए थे और अभ्यर्थियों की त्रिस्तरीय जाँच की गई। प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से परीक्षा के सफल संचालन के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गईं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले के किसानों को 23वीं किस्त जारी की गई। कृषि विज्ञान केंद्र फलोज में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया। कृषि विभाग के अनुसार जिले के 1,53,000 से अधिक किसानों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से राशि जमा की गई। खातों में राशि पहुंचने पर किसानों ने खुशी व्यक्त की। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने किसानों से संवाद करते हुए प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने किसानों को भूमि की उर्वरता बनाए रखने, रासायनिक उर्वरकों के सीमित उपयोग और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने की सलाह दी। आदिवासी अंचल की शिक्षा की प्रतीक शहीद वीर बाला कालीबाई का शहादत दिवस जिले भर में श्रद्धापूर्वक मनाया गया। उनकी जन्मस्थली रास्तापाल सहित विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। वक्ताओं ने शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान और बलिदान को याद किया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती भी जिले भर में मनाई गई। विभिन्न संगठनों की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में महाराणा प्रताप के त्याग, साहस और स्वाभिमान को याद किया गया। वक्ताओं ने युवाओं से उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला स्तरीय समारोह डूंगरपुर शहर के लक्ष्मण मैदान में हुआ। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम नागरिकों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला प्रशासन और सूचना तथा जनसंपर्क विभाग की ओर से विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी प्रदर्शित की गई। बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। जिले में पिछले दिनों प्री मॉनसून की अच्छी बारिश हुई। बारिश से तापमान में कमी आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि उमस का असर अभी भी बना हुआ है। मौसम में बदलाव के बाद किसानों में भी उत्साह देखा जा रहा है। किसान खरीफ फसलों की तैयारी में जुटने लगे हैं और अच्छी मॉनसूनी बारिश की उम्मीद कर रहे हैं। इसी के साथ डूंगरपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
2: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है प्रातः

0: प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी नवाचारा ने बदलाव रो मजबूत जरियो बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा 4 जुलाई ने प्रस्तावित राजस्थान दौरा सारू तैयारियां जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आबादी बदलाव रा बारा माय बनाई जी आला दर्जारी समिति सिफारिशा बेगी देवन सारू कहो और राज्य में चौमासारी बिरखा बेगी सरू है बन रहा आसार। उगनी हल्काओं बिरखा सरू है बन रही संभावना। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहो है कि डिजिटल गवर्नेंस देश में बदलाव रो मजबूत जरियो बनी है और तकनीक काम लेर सरकारी योजनावा में दलालान रो दखल खत्म भयो है। श्री शर्मा आज जयपुर में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन रा उद्घाटन समारोह में बोल रहा है। वे कहो कि डीबीटी हर योजना रो फायदो सीधो पात्र लोगां रा खाता में पूग रियो है।
1: राजस्थान में तकनीकी को जनकल्याण का प्रभावी माध्यम बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। हमारा मानना है कि डिजिटल तकनीक कामकाज को केवल आसान ही नहीं बनाती बल्कि नागरिकों के जीवन को सुविधाजनक और बेहतर भी बनाती है। इसी सोच के साथ हमने राज्य में राजस्थान एआई एमएल पॉलिसी 2026 लागू की है। इस नीति से एआई का उपयोग प्रशासन शिक्षा स्वास्थ्य कृषि एवं उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से करने का आधार तैयार हुआ है।
0: मुख्यमंत्री ईमोके स्मार्ट परियोजना ई मित्र व्हाट्सएप सेवा और राजस्थान इनोवेशन चैलेंज री शुरुआत कीनी। इनु पहली वह तकनीकी सेवाओं बारा माई लगाई जी प्रदर्शनी रो उद्घाटन कीनो और वन निरखी। ई पाछे श्री शर्मा उद्योगों नुमाइंदा सागे बातचीत कीनी। इस दौरान वे बतायो कि राज्य ने डेटा सेंटर हल्का माए 43,000 करोड़ रुपए बत्ती रकम रा निवेश प्रस्ताव मिलिया है। आम आए एसटीटी जीडीसी एचजी एकाया और नायो बोल्ट समेत कई नामी कंपनियां शामिल है। प्रदेश रा आईटी और उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ई कार्यक्रम माए वारा विचार बताया। खबर नवीसा सागे बातचीत करता थकान राठौड़ कहो कि तकनीकी नवाचाराओं न्यूनतम सरकार और अधिकतम सुशासन री बात सांची वे रही है।
2: हर सेक्टर के अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी का महत्व है और इसीलिए जो जनधन आधार और मोबाइल को जोड़ा गया उससे जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसके अंदर लीकेजेस खत्म हो गए। आज यूपीआई जो पहले मजाक बनाया जाता था आज यूपीआई गांव-गांव में हो रहा है। एक महीने के अंदर तकरीबन 23 बिलियन ट्रांजैक्शन से ज्यादा हो रहे हैं। कौन से नए तरीके अपनाए जा सकते जो दूसरे राज्यों में हो रहे हैं उसे हम राजस्थान में करें या राजस्थान के अंदर जो नए प्रयोग हो रहे हैं वो दूसरे राज्यों में करें। इस तरह का ये सेशन भारत को मजबूत करेगा, भारत के सुशासन को मजबूत करेगा और अंत में हर नागरिक को मजबूत करेगा।
0: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राज्य सरकार का न्यू मिलर कराया जा रहा 2 दिन रा इन सम्मेलन रो मुद्दो विकसित भारत 2047 एआई एनेबल्ड डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस राखी चियो है। सम्मेलन में काल न्यारा न्यारा प्लेनरी और ब्रेकआउट सेशन रखा जावेला। ई पाछे केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार देवेला। केंद्रीय कैबिनेट राजधानी दिल्ली सारू खास परियोजना ने मंजूरी दीनी है। मीटिंग में करीजिया फैसला ने जानकारी देता थका केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बतायो कि 8 किलोमीटर लंबी सड़क सुरंग ने मंजूरी दी जी है। इनु आतुणी और लंकाऊ दिल्ली बीच जुड़ाव बेहतर भेला। ई काम में 6,970 करोड़ रुपए बत्ता खर्च करया जावेला।
3: कई सारे पीछे प्रयास किए गए थे, फाइनली आज जो प्रयास अप्रूव हुआ है वो है 6 लेन द्वारका टनल, ये 6,970 करोड़ रुपीस की है। और दूसरा उत्तर प्रदेश में कानपुर को भोपाल से जोड़ने वाला लाइन, उसमें कानपुर से काबराई के बीच में 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे 7,145 करोड़, और उसके आगे वाले सेक्शन का भी उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है, एक्सेस कंट्रोल करना, उसकी वाइडनिंग इम्प्रूवमेंट, वो सब भी उसमें इंक्लूडेड है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

0: 4 जुलाई ने प्रस्तावित राजस्थान दौरा न ध्यान रखता थका तैयारियां जोर शोर चल रही है। श्री मोदी रो बालोतरा रा पचपदरा माए देश री पहली ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड HPCL राजस्थान रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स ने जनता ने सौंपण रो कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डा रा नुआ टर्मिनल रो ही उद्घाटन करेला। माणा बालोतरा खबर नवीस बतायो कि प्रधानमंत्री रा दौरा ने यादगार बनावण और हरित विकास री अलख जगावण सारू मोटा पैमाना माथे पौधा रोपया जा रहा है।
1: 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ जहां पचपदरा रिफाइनरी की सौगात देंगे, वहीं इस दिन को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन ने नई पहल करते हुए जिले में वृहत स्तर पर पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। पौधरोपण के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक नया संदेश देना है। मंजीलाल चौधरी, आकाशवाणी समाचार, बालोतरा।
0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर ही सुन सको हो। इसा गई आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in माथे समाचार सुन सको हो और वहां जुड़िया फोटो और वीडियो देख सको हो। गृहमंत्री अमित शाह आबादी बदलावां बारा माय बनाई ची आला दर्जारी समितियों सिफारिशा बेगी देवन सारू कहो है। वे आज नई दिल्ली माय समिति रा सदस्य सागफी मीटिंग माय हुकम तीनों समिति गृहमंत्री ने बतायो कि राज्य और केंद्र रा राज वाला प्रदेशान रो दौरो कर ई बारा माय जानकारी हासिल करी जावेला। समिति जानकारी हासिल करण सारू प्रश्नावली बनाई है। ध्यानयोग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लारला साल आला दर्जा रा जनसांख्यिकी मिशन रो ऐलान की न हो चिंपा छे रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नाव लेकर री सदारत माए आ समिति बनाई ची ही। प्रदेश रा सगला आंगनवाड़ी केंद्र माए आज खिलौना बैंक शुरू करी चिया। इसा गई प्रवेशोत्सव और पौधारोपण रा कार्यक्रम ही राखी चिया। महिला और बाल विकास विभाग री शासन सचिव पूनम जयपुर रा गौतम नगर आंगनबाड़ी केंद्र माए खिलौना बैंक री शुरुआत कीनी। ई मौके बच्चा ने प्रवेश किट ई दिया चिया। नंद घर योजना रा तहत पारंपरिक आंगनबाड़ी केंद्रा ने और बेहतर बनाया जा रहा है। पालीरा महिला और बाल विकास अधिकारी प्रकाश पंवार बतायो कि जिला रा 222 आंगनबाड़ी केंद्रा ने नंद घर माए बदलीकरण रो काम पूरो वे कियो है।
2: जिले में 222 मंदिरों का निर्माण किया गया है। बाला पेंटिंग, आरओ, एलईडी, भवन की मरम्मत, शौचालय संबंधी निर्माण आदि कार्य करवाए गए हैं। जो विभाग के लाभार्थी है, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको जो विभागीय सुविधा अच्छी गुणवत्ता के साथ मिलना सुनिश्चित। अभी और भी इसमें प्रगति रहता है जिसमें और केंद्रों को भी नंदगर में चयनित किया जा सकेगा।
0: स्वायत्त शासन विभाग रा सचिव और सफाई कर्मचारी यूनियन रा नुमाइंदा बीच आज जयपुर माए बातचीत हुई। इन दौरान यूनियन री कुछ मांगा माथा एक राय बनी। विभाग रा सचिव रवि जैन खबर नवी संसा के बातचीत करता थका बतायो कि सरकार री ओर कुछ मांगा मान लिया पाछे सफाई कर्मचारियां रा संगठन दूजी मांगा न लेर अड़ रहा है। वह कहो कि सफाई कर्मचारियां री भर्ती माए मूल रूप साफ सफाई रो काम कर रहा लोगा ने प्राथमिकता दी जावेला।
3: कि जो भी सफाई भर्ती होगी ये राजस्थान फाइनेंशियल कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज रूल के अंतर्गत होगी और इसके अंतर्गत हमने जैसे पिछली बार भी किया था कि जो परंपरागत रूप से सफाई का काम कर रहे हैं उनको प्राथमिकता की बात लिखी थी 23 की भी भर्ती में, इसमें भी हम लिखेंगे। जो परंपरागत रूप से सफाई का काम कर रहे हैं उसको प्राथमिकता देने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भी 2-3 इश्यूज थे, उन सब इश्यूज को भी हमने टेकअप किया है।
0: सफाई कर्मचारी यूनियन रा अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया बातचीत ने सकारात्मक बताता था का कहो कि सफाई कर्मचारियां री हड़ताल बेगी खत्म करन रे बारा माए फैसलो लियो जावेला। अरबे मौसम राज्य माए आवता 2 दिन माए चौमासा री बिरखा स्वरूप वन रा आसार है। मौसम विभाग रे मुजब कोटा और उदयपुर संभाग रा कुछ हल्का माए भारी बारिश री संभावना है, जबकि 6 जुलाई ताई प्रदेश रा घनखर हल्का माए में स्वरूप वन री संभावना है। इस साल चौमासा री बिरखा लारला साल री तुलना माए करीब 8 दिन मोड़ी स्वरूप वन रा आसार है। मौसम विभाग जुलाई महीना

0: ऐं प्रदेश में सामान्य कम बारिश पवण रो अंदाजो लगायो है। इन विच राज्य रा कुछ हल्का में चौमासाओं पहली री हलचल चाल रही है। लाडला 24 घंटा माए कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग माए थोड़ी घनी बिरखा भी। जैसलमेर माए आज आंधी चाली, भरतपुर माए संवारे भी बिरखा पाछे दिन भर सिलो बायरो बाज्यो। राजधानी जयपुर माए कठे कठे बारिश हुई। मौसम विभाग आज प्रदेश रा 24 जिला माए आंधी बारिश सारू चेतायो है। काल 4 जुलाई बीच बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ माए जोरदार बायरो बाजन और आंधी चालन सारू चेताइचियो है। आज डॉक्टर्स डे है। महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल रा पहले वाला मुख्यमंत्री डॉक्टर बीसी राय री याद माए ओ दिन मनायो जावे है। इन दिन इलाज रा हल्का माए डॉक्टर रा समर्पण, सेवा भावना और इंसानियत रा प्रति योगदान रो मान करियो जावे है। जयपुर रा SMS मेडिकल कॉलेज री एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अदिति इलाज रा पेशा न सेवा सागे खुद न संतुष्टि देवन वालो बतायो।
1: डॉक्टर्स डे के इस विशेष अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक लैब मेडिसिन डॉक्टर हूं। आप हमसे अस्पताल में सीधे न मिलते हो, लेकिन आपकी जांच की हर रिपोर्ट के पीछे हमारी पूरी टीम की मेहनत, जिम्मेदारी और ईमानदारी होती है। जब किसी मरीज का सही समय पर सही निदान हो जाए, उसका इलाज शुरू हो जाए और वह स्वस्थ होकर अपने परिवार के पास लौट आए, यही हमारे काम की सबसे बड़ी संतुष्टि है। आज डॉक्टर्स डे पर मैं समाज से केवल एक छोटी सी अपील करना चाहती हूं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, समय पर जांच करवाएं, डॉक्टर्स की सलाह का पालन करें और स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करें।
0: आखिर में खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहा हूं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी नवाचार न बदलाव रो मजबूत जरियो बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा 4 जुलाई ने प्रस्तावित राजस्थान दौरा सारू तैयारियां जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आबादी बदलावा रा बारा माए बनाई ची आला दर्जारी समितियों सिफारिशां बेगी देवन सारू कहो। और राज्य माए चौमासा री बिरखा बेगी सरूफे वन रा आसार। उगनी हलकाऊं बिरखा सरूफे वन री संभावना। इसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सायंकाल के 7 बजे हैं। अब हमारे किसान भाई बहन अपना प्रोग्राम सुनेंगे चौपाल।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इफको कोटा। धान की सीधी बुआई के समय नैनो डीएपी 5 से 10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम एवं एनपीके कंसोर्टिया 5 से 10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज को बीजोपचार कर बुआई करें। डीएपी और एसएसपी की 25% मात्रा कम प्रयोग करें। सोयाबीन मक्का की फसलों में नैनो डीएपी 2 से 5 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर बुआई करें। धान की नर्सरी उपचारित करने के लिए 10 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पौध को आधे घंटे से अधिक घोल में रखें। खड़ी फसल में नत्रजन की पूर्ति के लिए 4 से 5 मिलीलीटर नैनो यूरिया प्लस को 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। कृषि लागत कम करने के लिए और अधिक उपज लेने के लिए नैनो यूरिया नैनो डीएपी का प्रयोग करें।
1: कास्कार बण भाइयों राम राम। शशि भाई कैडिसों आप सभी को सजीव फोनिन चौपाल कार्यक्रम में गणो गणो स्वागत। किसान बण भाइयों की जाओ चक फलो फूलो पण मूल मत भूलो। बिल्कुल बात छोटी छे पण गहरी छे। आपन

0: मैं चाहे कतना भी बड़ा बन जावा पर आपनो जो असल चाहू कताई ना भूला, क्योंकि आप सब जानो छो कि चढ़ी चुगला कतना भी ऊंचा उड़ ले पण दाणो चुगबा धरती के पास ही आनी पड़े छे। या धरती माता ही छे जो सबना पाल रही छे, चाहे मनक होवे या चढ़ी चुगला, जान भर होवे या रूकड़ा, हर जीव को पेट भरे छे। आपनी धरती ना सभी जीव जनावर पेड़ पौधा नदी नाला हवा पानी सबका बीच गजब को संतुलन बना मिलो छे। और वो अरियो संतुलन बगड़ियो तो जीवन बगड़ता भी देर न लागे। ये लेखक पर्यावरण का ताई नुकसान पहुंचाए बना, विकास करा, तरक्की करा, जिस संतुलन भी बनियो रहे और जीवन भी बनियो रहे। तो किसान बन भाइयों, जो पेड़ ये धरती का फेफड़ा छे वाना विकास और तरक्की का नाम पर न काटा, खेती से ज्यादा उत्पादन का चक्कर में अंधाधुंध रसायन न छिड़का, आपनो मूल आपनी जैविक खेती का ताई अपनावा, गोबर की खाद डाला, क्योंकि जल जंगल जमीन छे तो ही आपनो जीवन छे। तो किसान बन भाइयों, बरसात को मौसम छे खूब रूखड़ा लगावा, बाग बगीचा लगावा और वैज्ञानिकां की सलाह से खेती करा। खेती किसानी की आगे और बात करा तो किसान बन भाइयों, अषाढ़ को महीनो शुरू हो चुक्यो छे और खचनक डाल को चुक्यो बांद्र और असाडी को चुक्यो करसाण खट्टी को भी नर। ई लेख मौसम विभाग सु मलवाड़ी हर जानकारी का ताई ध्यान में रखता हुआ छोका सु असाडी जमावा, जिसो बाद में मसाणी न पड़ा। और किसान बन भाइयों, आज का अपना मेहमान श्री लाला राम चौधरी जी भी स्टूडियो में पधार चुक्या छे, तो आप सभी कैडिसु लाला राम चौधरी जी को अपन स्वागत करा छा। राम राम साहब।
1: राम राम हाड़ोती के सभी किसान भाइयों को घना घना राम राम। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।
0: बिल्कुल काश्तकार बन भाइयों, आप सभी का ताई बता दें कि श्री लाला राम चौधरी जी इफको कोटा में क्षेत्र प्रबंधक का पद से अपनी सेवा दे रहे थे। तो बीज उपचार से जुड़े हुए आपका जो भी कोई सवाल हो, आप सीधा चौपाल में फोन करके लाला राम चौधरी जी से पूछ सको छो। चौपाल में फोन कर बाकी लेकर वही अपना जाने पहचाने नंबर 2941142। नंबर एक बार फिर बता दें 2941142, एसटीडी कोड 0744। चौधरी साहब, किसान बन भाइयों का फोन को इंतजार रहेगा। अरे बात की शुरुआत करा तो आपनो जो आज को विषय चे उच्चक बीज उपचार में जैव उर्वरका को काई महत्व चे, तो इनका बारा में सबसे पहले आपसे समझबो चाहूंगा कि भाई जैव उर्वरक होवे काई चे।
1: किसान भाइयों, सबसे पहले तो अपने को ध्यान रखना कि खरीफ की फसल की बुआई है वो शुरू हो चुकी है, कर रहे हैं अपन, और अभी बारिश होने के बाद के अंदर हम बुआई भी करेंगे। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जैव उर्वरक है हमारी जमीन के लिए बहुत आवश्यक है। ये जैव उर्वरक है वो जीवों से बने हुए उर्वरक होते हैं, जो रासायन उर्वरक नहीं होते हैं, और हमारे पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये हमारे पौधों को पोषक तत्व हैं, जमीन के अंदर उपलब्ध जो पोषक तत्व हैं उनको पौधों के लिए भोजन के रूप में उपलब्ध करवाते हैं।
0: साची बात है। तो आपसे यह भी समझ चाहूंगा कि भाई ये जो जैव उर्वरक है तो बीजो उपचार में कई भूमिका रची है।
1: किसान भाइयों, हम अभी लगभग खेत की तैयारी करने के बाद के अंदर, या तो खेत के अंदर बीज बुआई का समय है, तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि बीज उपचार हमें किस विधि से करना है। हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि बीज जब खेत में बुआई हो उसे लगभग 1-2 घंटे पहले या 1 दिन पहले हमें बीज उपचार करना चाहिए। जैसे धान की फसल में मैं बताऊं आपको, हमें सबसे पहले फंजीसाइड से बीज उपचार करना है, फिर उसके बाद में इंसेक्टीसाइड से, और उसके बाद में हमें बायोफर्टिलाइजर जो जैव उर्वरक है या नैनो डीएपी है उसे हमें बीज उपचार करना है। ये एक सही विधि है, वैज्ञानिक विधि है। इस माध्यम से हम यदि बीज उपचार करेंगे तो हमारी फसलों के अंदर बीमारियां कम लगेगी, कीड़े कम लगेंगे, और हमारी फसल की उत्पादकता है बढ़ेगी, साथ साथ में रासायनिक उर्वरकों की जो खपत है वो भी कम होगी।
0: बहुत बढ़िया चे। तो आपने की सबसे पहले तो आपने फंजीसाइड से उपचार करा, यानी कि जो अपना फफूंद नाशक उसे उपचार करा, फिर कीटनाशक सु
1: जी,
0: फिर जो राइजोबियम कल्चर चे या जो उर्वरक चे वहां से उपचार करा, अने यो करम होनी चाहो। बहुत बढ़िया चे। तो आपने बताया कि 1 दिन पहले या 2 दिन पहले उपचार करा। तो उपचार करबा के बाद जैसे मान लो पानी न पड़े, 3-4 दिन हो गया, तो वो स्थिति में
1: काई मैं बात करना चाहूंगा, किसान भाइयों को बताना चाहूंगा, यदि हमें गड्ढे या धान की फसल के अंदर हम बीज उपचार है वो 5-6 दिन भी कोई दिक्कत नहीं होती। हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि नैनो डीएपी हम 1 किलो बीज के लिए 10 ml नैनो डीएपी और 10 ml एनपीके कंसोर्टिया मिला के हम उसका बीज उपचार है वो आसानी से कर सकते हैं। और वो यदि कुछ समय के लिए रखा है तो हमें छायादार स्थान पे उसको रखना है, ताकि उसके ऊपर जो अपन ने नैनो डीएपी का और जैव उर्वरक का जो लेप हुआ है, क्योंकि जैव

0: है वो जीवित जीवाणु है, उनकी हमें वायबिलिटी को जीवित रखना है, तभी वो फायदेमंद हो पाएंगे। तो यदि हम छायादार स्थान के ऊपर रखते हैं तो किसी भी प्रकार के उसके अंदर नुकसान नहीं होता है। तो हम यदि ऐसी स्थिति आ जाती है, बारिश नहीं हो रही है, तो हम उसको जो बीज अपन काम में ले रहे हैं, बीज उपचारित करके रख रखा है, उसको छायादार स्थान के ऊपर रखें, किसी भी प्रकार की उसके अंदर ऐसा नहीं छोड़े कि हम धूप के अंदर उसको छोड़ दें।
1: चौधरी साहब, यह भी समझना चाहूंगा कि बीज की आपने धान का की बात करी, तो जो पौध लगा रखी चे काशकार बन भाया ना, तो उनका ताए भी उपचारित करके जमीन में लगा वो जरूरी जगह।
0: निश्चित रूप से शशि भाई, हम यदि किसान भाई अभी हड़ौती के अंदर, क्योंकि पौध लगा के भी हम गड्ढा तैयार करते हैं, तो पौध लगी हुई है अब, तो यदि हम पौध लगाने के पौध लगी हुई है तो जिस समय हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं उस समय हम उसको उपचारित कर सकते हैं। उपचारित करने का एक सीधा तरीका है, हम कोई बड़ा सा बकेट या अपनी बाल्टी, या यदि वो भी नहीं है

0: अंदर ऐसा नहीं छोड़े कि हम धूप के अंदर उसको छोड़ दें।
1: चौधरी साहब, यह भी समझना चाहूंगा कि बीज की आपने धान का की बात करी, तो जो पौध लगा रखी च काश्तकार बन भाया ना, तो उनका ताई भी उपचारित करके जमीन में लगा वो जरूरी जगह।
0: निश्चित रूप से शशि भाई, हम यदि किसान भाई अभी हड़ौती के अंदर, क्योंकि पौध लगा के भी हम गड्ढा तैयार करते हैं, तो पौध लगी हुई है अब, तो यदि हम पौध लगाने के पौध लगी हुई है तो जिस समय हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं उस समय हम उसको उपचारित कर सकते हैं। उपचारित करने का एक सीधा तरीका है, हम कोई बड़ा सा बकेट या अपनी बाल्टी, या यदि वो भी नहीं है तो एक जहां अपन बुआई कर रहे हैं उस एरिया के अंदर प्लास्टिक की थैली लगा के उसके अंदर पानी है वो रख ले, और उस पानी के अंदर हम बायो फर्टिलाइजर, जो जैव उर्वरक है एनपीके कंसोर्टिया और नैनो डीएपी मिक्स करके आधे घंटे से ज्यादा हम उस पौध को रख देंगे तो वो उपचारित हो जाएगी।
1: बहुत बड़े अच्छी एक किसान साथी छिया सो राम राम करा जा। राम राम साहब।
2: राम राम साहब, जय सिया राम।
1: हाँ, आपको शुभ नाम।
2: राधे श्याम योगी बोल रहे थे, राम सिंगोला जिला बारा।
1: स्वागत है राधे श्याम जी, प्रश्न का पूछो चाहोगा।
2: मैं यो निवेदन कर रहे थे साहब, मन की जिस बार सोयाबीन की उराई करेंगे तो उनके लिए बीज उपचार करवा के लिए पूछ रहे थे साहब, कैसे करा कहीं कैसी वो लानी पड़ेगी, कैसे करा वो
1: उपचार। बहुत बढ़िया
0: योगी साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत राम राम।
2: राम राम साहब।
0: हाँ, सोयाबीन एक ऐसा फसल है जिसका बीज है वो बहुत ही नाजुक होता है। हमें पहला काम ये रखना है, सोयाबीन का जब हम बीज ले आए तो उसका जर्मिनेशन टेस्ट है वो जरूर करें। जर्मिनेशन टेस्ट करने के लिए योगी साहब हमें ये करना है कि हम 100 बीज लें, टाट के ऊपर रखें उसको, 100 बीज डाल दें और उसके अंदर से कितने जर्मिनेट होते हैं,
1: मतलब
0: उगाव टाट ले। हाँ, उगाव कितना हो पाता है उसका, यदि 70 से ज्यादा उगाव हो पाता है तो हम हमारे घर का बीज है वो आसानी से काम में ले सकते हैं।
1: सांची बात।
0: अब इसका बीज उपचार भी सोयाबीन का हमें बहुत सावधानी से करना है, क्योंकि सोयाबीन का जो बीज है उसका ऊपर का कोट है वो बहुत ही नाजुक होता है, यदि उसके अंदर आप पानी की मात्रा भी ज्यादा मिला दोगे तो वो कोट है वो गलने लग जाएगा। तो योगी साहब, हमें ये सभी किसान भाइयों से कहूंगा कि ये ध्यान रखने के लिए हमें सबसे पहले सोयाबीन के अंदर जो आप फंजीसाइड काम में ले रहे हो उसके अंदर पानी की मात्रा कम कर दें, बीज उपचार में जो दवाई ले रहे हो आप जो दवाई ले रहे हो उसकी मात्रा भी अन्य फसलों से कम कर दें, मतलब कि यदि 2 ग्राम ले रहे हो तो आप सोयाबीन में 1 ग्राम मात्रा प्रयोग करें। उसके बाद के अंदर हमें जैव उर्वरक नैनो डीएपी से बीज उपचार करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का पानी नहीं मिलाना है उसके अंदर, हमें नैनो डीएपी के साथ में जैव उर्वरक मिलाना है और उसके ऊपर हल्के हाथों से लेप कर देना है। लेप करते ही हम उसकी बुआई कर सकते हैं, बुआई हम खेत के अंदर जाके भी ये कार्य कर सकते हैं सर। हमने अभी बहुत सारे डेमोंस्ट्रेशन है खेतों के अंदर लगवाए हैं, हम खेत में जाके ही बीज उपचार किया है और बहुत अच्छे तरीके 10 मिनट के अंदर बीज पूरी तरह सूख जाता है, तो हम उसके उपचार करते हैं तो निश्चित रूप से सोयाबीन की पैदावार भी बढ़ेगी और गुणवत्ता में भी सुधार आएगा, साथ साथ के अंदर उसकी चमक बढ़ेगी, हमें बाजार के अंदर उसके मूल्य बहुत अच्छे मिलेंगे।
2: जी साहब,
1: सांची बात
2: जी।
1: राम राम साहब।
2: राम राम
1: साहब। हाँ लाला राम साहब, यह भी समझ बचाऊंगा आपसे कि भाई जो जैव उर्वरक का उच्च तो बीज उपचार में कैसे कैसे जैव उर्वरक काम में ले सके।
0: जैसे मैं सोयाबीन की बात करूं तो सोयाबीन के अंदर हम राइजोबियम नाम का एक जैव उर्वरक आता है, उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। यदि मैं धान की फसल की बात करूं तो एनपीके कंसोर्टिया हमें यूज करना चाहिए। एनपीके कंसोर्टिया के अंदर 3 प्रकार के जीवाणु होते हैं और 1 बूंद के अंदर लगभग 5 करोड़ जीवाणु है उसके अंदर।
1: अच्छा, 1 बूंद।
0: 1 बूंद के अंदर ये देखिए कितना कारगर चीजें जो हमारे वैज्ञानिकों ने हमको तैयार करके दी है। इसके अंदर 5 करोड़ जीवाणु है और वो जीवाणु कौन कौन से पोषक तत्व हमारी फसल में से फसल को देते हैं, नाइट्रोजन देता है जो हम यूरिया के रूप में फसल को देते हैं, फास्फोरस देता है जो डीएपी के रूप में हम देते हैं, पोटास देते हैं जो हम एमओपी के रूप में देते हैं। ये 3 प्रकार के इसके अंदर जीवाणु हैं जो 3 पोषक मुख्य पोषक तत्व हैं हमारे पौधे को उपलब्ध करवाते हैं, जो जमीन के अंदर हमारे पोषक तत्व बहुत सालों से पड़े हुए हैं
1: ना, वहां का ताई पौधा ताई पहुंचाओ चाहिए।
0: हाँ,
1: तो ये बीज के साथ जब जमीन में जाओ फिर काम कर वो शुरू करे जा।
0: जरूर, ये जैसे ही हम बीज उपचार करेंगे ये अपनी गुणक के अंदर रिप्रोडक्शन होते रहेंगे और बहुत

0: करोड़ों की संख्या के अंदर ये जाके कॉलोनियां तैयार कर लेते हैं और वो एक वाहक के रूप में कार्य करते, जमीन से पोषक तत्व को लेते और पौधे की जड़ों को उपलब्ध करवाते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये जो जीवाणु छे तो ये मिट्टी का स्वास्थ्य में भी प्रभाव डाला जाएगा?
0: ये हमारी मिट्टी की संरचना को बहुत अच्छा ठीक करते हैं, मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक करते हैं। इसके साथ साथ के अंदर जो हम रसायन से मिट्टी को खराब कर चुके हैं उसके सुधार के अंदर भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी देखिए भारत सरकार ने उर्वरकों की पाठशाला नाम का एक कार्यक्रम पिछले समय से, खूब लंबे समय से चल रहे, जिसके अंदर हमारे वैज्ञानिक भाई हैं, हमारे कृषि विभाग के साथी हैं, सब के सब हमारे किसान भाइयों के बीच में जा जाके हम उनको समझा रहे हैं कि हमें रासायनिक खादों से अब खेती करना मुश्किल है। और मुश्किल ही नहीं, मैं ये बताना चाहूंगी नामुमकिन है कि हम केवल रासायनिक खादों से खेती कर पाए। हमें अल्टरनेट फर्टिलाइजर की ओर जाना होगा,
1: बहुत बढ़िया,
0: ताकि हम हमारी फसलों की पैदावार भी बढ़ाएं, लागत भी कम करें और साथ साथ में हमारी भूमि का स्वास्थ्य है वो भी सुधार सके।
1: बिल्कुल साची बात है। और बीज उपचार का बारे में और भी बातें करेंगे, साथ ही किसान बण भाइयों का बता दें कि किसान बण भाइयों सजीव फोन इन चौपाल कार्यक्रम चल रहे छे, जिमे बात हो रही छे बीज उपचार में जैव उर्वरक का महत्व का बारे में। और ये विषय पर जानकारी देवा के लेकर आपने चौपाल में बैठे हुए छे श्री लाला राम चौधरी जी, आप क्षेत्र प्रबंधक इफको कोटा में कार्यरत छे। तो किसान बण भाइयों विशेष जुड़े हुए आपका मन में जो भी कोई सवाल होगा आप सीधा चौपाल में फोन करके लाला राम चौधरी जी से पूछ सको छो। चौपाल में फोन करवा कर लेकर वही अपना जाना पछाने नंबर 2941142 एसटीडी कोड 0744। लाला राम चौधरी जी, अब बात करें चक जो जैव उर्वरक च, तो वह जैव उर्वरक खरीदती टर्म की खासकर बण भाई काई बाता को ध्यान रखना।
0: किसान भाइयों, जैव उर्वरक खरीदते समय हमें सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि उसकी कब इसको प्रोडक्ट को तैयार किया गया है और उसकी समाप्ति तिथि क्या है, मतलब एक्सपायरी क्या है। हमें ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि एक्सपायर कोई सा भी उत्पाद है वो हम नहीं लें। दूसरा, हम जैव उर्वरक खरीदते समय पक्का बिल जरूर लें और जो ऑथेंटिकेट डीलर हैं इसके, क्योंकि फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के 1985 के अंडर ये आते हैं जैव उर्वरक, तो हम जब खरीदते हैं तो उसका पक्का बिल जरूर लें। बिल यदि हम लेते हैं और उसका फिर हम उसका आसानी से प्रयोग ठीक से करें।
1: बहुत बढ़िया अच्छा। और जैसे आपने किसान बड़ में खरीफ का मौसम में मक्का भी बाओगा, सोयाबीन भी बाओगा, धान भी लगाओगा, मूंग उड़द भी लगाओगा, तल्ली भी करेगा, है ना, तो सभी तरह की फसलां ले चे, तो सभी फसलां में जो बीज उपचार में जैव उर्वरक काम में आओच वो एक ही तरह का काम में आओच या अलग अलग फसल का लेकर अलग अलग जैव उर्वरक काम में लेनी पड़ेगी?
0: हाँ, अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग है। कुछ फसलों के जैसे अपनी सोयाबीन है, मूंग है, इसको लेग्यूमिनस यदि वैज्ञानिक भाषा में बात करें तो लेग्यूम क्रॉप बोलते हैं, जो दाल वाली फसल है, इनके लिए हम केवल जो जैव उर्वरक है वो राइजोबियम जैव उर्वरक काम में आता है नाइट्रोजन के रूप में, लेकिन फास्फोरस और पोटास के रूप में हम एनपीके कंसोर्टिया है वो काम में ले सकते हैं। और यदि हम गेहूं की फसल की यदि बात करें या धान की फसल की बात करें तो इसमें नेत्रजन के रूप में हम एजेटोबैक्टर काम में लेते हैं। आजकल जिंक वाले भी हम जैव उर्वरक हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने तैयार कर दिए हैं, तो जिंक घोलक जैव उर्वरक है वो भी आते हैं, उसका भी हम किसान भाइयों को प्रयोग करवा रहे हैं और बहुत अच्छे हैं खेती के अंदर वो कार्य कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, तो आपसे यह भी समझ में चाहूंगा कि भाई जो जैव उर्वरक है आप बता रहे हो कि बहुत ही कारगर और फायदेमंद है, तो किसान बण भाई रासायनिक उर्वरक की बजाय ये जैव उर्वरक को उतना उपयोग क्यों ना कर पा रहे?
0: इसका मुख्य कारण था कि रासायनिक उर्वरक है वो आसानी से इसके जो रिजल्ट है वो बहुत तुरंत दिखाई देते, विजुअल डिफरेंस दिखाई देता है। जैसे मैं यूरिया की बात करूं, यूरिया यदि आप आज खेत में डालोगे तो कल उसका विजुअल दिखाई देगा, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो नुकसानदायक है। यदि मैं यूरिया की बात करूं तो यूरिया हमारे पौधे के अंदर 20% काम में आता है, पीछे का 80% है वो भाग या तो पानी में चला जाता है या हमारी जमीन के अंदर है। जब पानी में जाता है तो नाइट्रेट रूप के अंदर हमारे पशु हैं, हमारे किसान हैं, हम हैं, पीते हैं, तो उसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, जैसे कैंसर जैसी असाध्य बीमारियां वो होने का एक कारण है। दूसरा, यदि भूमि के अंदर रहता है तो हमारी भूमि की जो स्वास्थ्य है उसको बिगाड़ता है। तो ये ऐसे कारण है कि इस कारण से हम देखते हैं कि रासायनिक उर्वरकों का वही

0: वाली बात है कि हम बीमार होते हैं तो हमें एलोपैथी की आवश्यकता होती है। यदि हमें तुरंत लंबे समय तक यदि तंदुरुस्त रहना है तो हमें एलोपैथी को छोड़ के हम आयुर्वेद की ओर बढ़ते हैं। तो ये जैव उर्वरक भी उसी प्रकार से है कि हमारी भूमिका यदि लंबे समय तक स्वास्थ्य को अच्छा रखना है तो हमें जैव उर्वरक का समावेश हमारी धरती के अंदर करना ही होगा।
1: बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और एक किसान साथी से राम राम करा। हेलो
2: हेलो।
1: हाँ राम राम साहब।
2: राम राम साहब,
1: आपको शुभ नाम।
2: जितेंद्र।
1: जितेंद्र जी किस गांव से बोल रहे हो? बाजड़ सु। स्वागत है आपको चौपाल में। काई प्रश्न पूछ बुछा होगा
2: सर? सर से पूछ गया सर साहब।
1: हम्म,
2: जैसे दान में कचरा हो जाओ तो मतलब कितना दिन में दवाई करो बुछाई?
1: आज जो विषय है ना अपनो ऊच है बीज उपचार में जैव उर्वरक को महत्व। तो इसु जुड़े हुए कोई प्रश्न हो तो आपने जो मेहमान बैठे थे वहां का जवाब देवा में बड़ो आनंद आओगे और खुशी भी होगी।
0: निश्चित जितेंद्र जी, मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि गड्ढे की फसल के अंदर आप कह रहे हैं कि भाई कचरे जो कचरा निकालना है हमें, सबसे पहले तो हमें हाथ से कोशिश करना चाहिए कि उसको उस प्रकार से निकालें। फिर भी यदि संभव नहीं हो पा रहा है तो हम जैसे अभी जो सोविंग हो रही है वो डायरेक्ट धान की हो रही है, डायरेक्ट सोविंग कर रहे हैं। अभी पौध वाली है हम फसल नहीं बो रहे हैं। तो यदि ऐसा अपने पास में साधन नहीं है तो है
2: सीधी उराई करें।
0: हाँ सीधी उराई कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसके अंदर खरपतवार नाशी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन लंबे समय तक हम खरपतवार नाशी का प्रयोग करेंगे तो एक तो जो खरपतवार है उनके अंदर रेजिस्टेंस लेवल डेवलप हो जाएगा और हमारी जमीन के अंदर भी वो नुकसानदायक होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि हम अल्टरनेट एक साल यदि हम खरपतवार नाशी डालें तो दूसरी बार हमें जरूर उसको निकलवाएं।
1: बिल्कुल, राम राम जितेंद्र जी। हाँ लाला राम जी, अब आपसे यह समझ में चाहूंगा कि जो किसान बण भाई लगातार रासायनिक उर्वरकों को उपयोग कर रहे थे वो आंसु बात करना चाहते वो खह भी चक माँ यूरिया डीएपी डाल रहे थे तो फिर ये जीवाणु खा डाल बाकोरिया को कहीं मतलब चक तो इनका बारा में आप कहीं खबूचाओगा?
0: इसके अंदर शशि भाई एक कारण है, यदि हम यूरिया और डीएपी के हम इतिहास की ओर जाते हैं तो उसका लंबा इतिहास हो चुका, लगभग 8 से 10 दशक हो चुके हैं हम, मतलब कि 100 साल का समय हो चुका है हम रासायनिक खादों से। पहले हम रासायनिक खादों के साथ में संतुलित प्रयोग करते थे, गोबर की खाद की मात्रा भी हम डालते थे। लेकिन कालांतर के अंदर यदि हम अब देखें तो आज हमारा किसान है पूरी तरह रसायनों के ऊपर जा चुका है, जिसके कारण से हमारी भूमि पूरी तरह खराब होने जा रही। मतलब कि वैज्ञानिक यहां तक चेता चुके हैं कि यदि यही समय आगे बढ़ता रहा इसी प्रकार से।
1: एक किसान साथी जी, राम राम।
3: राम राम साहब।
1: हाँ, आपको नाम?
3: योगेश जांगड़े, बेमेतरा, छत्तीसगढ़ से।
1: स्वागत है योगेश जी।
3: जी हम ये जानना चाहते हैं कि बीजोपचार करने के बाद क्या वो अन्य मतलब खेतों की तुलना में वो जड़ें ज्यादा मजबूत होती हैं उसमें?
1: बिल्कुल
0: योगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप छत्तीसगढ़ तक, ये इससे पता चलता है कि हमारे चैनल है कितने अच्छे हमारे किसानों के लिए कार्य कर रहे हैं। योगेश सर, मैं बताना चाहूंगा आपको, हम हजारों ऐसे डिमोस्ट्रेशन किसानों के बीच में लगाते हैं जिससे हम उनको विजुअल दिखाते हैं कि यदि हमने जैव उर्वरकों का या नैनो डीएपी से बीज उपचार किया है तो उनका विजुअल डिफरेंस हमारे जड़ों के अंदर, हमारे पौधों के अंदर दिखाई देता है। आप निश्चित तौर के ऊपर यदि किसान साथी मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप अपने आधा बीघा के अंदर भी करके देखेंगे तो आपको महसूस होएगा कि जो मैंने फसल है वो नैनो डीएपी और जैव उर्वरक से की है, वो अन्य जो फर्टिलाइजर डालें उनकी तुलना में बहुत ही बेहतर फसल है वो तैयार होती है। इसके साथ साथ में वो विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमताएं विकसित करती है जिसमें हमने जैव उर्वरक डाला है। तो निश्चित तौर पर अंदर इसके विजुअल डिफरेंस नजर आते हैं आपको, और इसके धीरे धीरे धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि आज हमारे वैज्ञानिक हैं सभी किसान भाइयों के गांवों तक जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं और एक दिन हम इसके अंदर पूरी तरह सफल होंगे।
1: बिल्कुल
3: जी जी, बहुत शुक्रिया।
1: राम राम साहब, आपने बात चाल रही थी कि भाई जो काश्तकार बण भाई छे तो वो खर्च के मैं यूरिया डीएपी डाल रहे थे तो ये जो जैव उर्वरक छे फिर यहाँ की कई उपयोगिता छे।

0: इनकी उपयोगिता बहुत अच्छी है। हमें ये ध्यान रखना है कि जो रासायनिक खादों का हम 100% समावेश कर चुके हैं, उनके स्थान पे हमें कुछ मात्रा को उसको कम करना है रासायनिक खादों का। जैसे मैंने बताया कि 25% हम रासायनिक खादों का प्रयोग कम करके उनके स्थान पे हम जैविक उर्वरक, जैव उर्वरक है अपने, नैनो डीएपी है, इनसे यदि उपचार करते तो एक तो हमारी लागत में कमी आएगी, दूसरा हमारी फसल की उत्पादकता बढ़ेगी, गुणवत्ता बढ़ेगी, हम हमारे उत्पाद को इंटरनेशनल मार्केट में आसानी से बिक्री कर सकते हैं।
1: बहुत बढ़िया जी,
0: जिसके कारण से आज देख रहे होंगे कि हम बहुत सारी अच्छी फसलों का है वो अच्छे दाम है वो इंटरनेशनल मार्केट में ले सकते हैं।
1: तो जो रासायनिक खाद जैसे यूरिया डीएपी की बात करा तो इन पर निर्भरता ज्यादा होती जा रही है, तो इनका ताई कम करवा कर लेकर विकल्प का तौर पर और किसी चीजा का ताई अपना जो काश्तकार बन भाई वो काम में ले सके।
0: शशि भाई, यदि मैं एक समग्र रूप से बताना चाहूं बात को, तो हमारे किसान भाई को 3-4 चीजों का समावेश करना चाहिए। पहला समावेश जैव उर्वरक का, दूसरा समावेश हमें नैनो टेक्नोलॉजी से बने हुए जो हमारे देश के खाद है उनका, तीसरा समावेश हरी खाद के रूप के अंदर, चौथा समावेश गोबर के, और पांचवा समावेश हमें रासायनिक फर्टिलाइजर को लेना चाहिए। यदि इन पांचों का हम संतुलित रूप से प्रयोग करेंगे निश्चित रूप से इसमें लागत में कमी आएगी, फसल की उत्पादकता बढ़ेगी, किसान की आमदनी बढ़ेगी।
1: बहुत बढ़िया चे। और देखा जाए जो अपना काश्तकार मण भाई चे, वह जो अगर आपने बताया कि जैव उर्वरक काम में ले चे रासायनिक खाद की बजाय, तो वहाँ का खर्चा पर कितनी कटौती हो सके चे?
0: अब देखिए, मैं जैव उर्वरकों की शशि भाई बात करूं तो लगभग यदि हमें 100 किलो बीज को उपचारित करना है तो केवल 500 ml से 1 लीटर जैव उर्वरक की आवश्यकता होती है।
1: 500 ml से
0: 1 लीटर केवल,
1: और उनकी कीमत कितनी रहती है?
0: 150 रूपए से 200 रूपए मात्र।
1: वाह साहब, बहुत कम चाहिए तो।
0: बहुत कम कीमत है और इसके फायदे बहुत है, ये हर साल अपनी जमीन के अंदर बढ़ते जाएंगे। जो आज अपन ने प्रयोग किया वो अगली साल अपनी क्षमताओं को बढ़ाता है, भूमि की संरचना को सुधार करता है, भूमि के अंदर वाटर लेवल को सुधारता है, भूमि के अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को बढ़ाता है, मतलब सभी प्रकार के इसके अंदर फायदे फायदे हमारे किसान भाई को, नुकसान इसमें कुछ नहीं। फिर मैं यदि रासायनिक खाद की बात करूं, रासायनिक खाद का कुछ समय के लिए तो फायदा है, लेकिन लंबे समय तक रासायनिक खाद का प्रयोग करते तो बहुत सारे दुष्परिणाम है जो आज हम भारतीय और हमारे विश्व के लोग हैं उसको भुगत रहे हैं। तो निश्चित तौर पे रासायनिक खादों को हमें अब अल्टरनेट फर्टिलाइजर के रूप में यूज करना पड़ेगा। हम उसकी मात्रा कम करके हमें जो 5 कंपोनेंट पे अभी अपन ने बात की थी, उन 5 कंपोनेंट को हमारी खेती के अंदर समावेश करना पड़ेगा, जिससे हमें क्या होगा कि जैसे आज बारिश का समय है, यदि हमने रासायनिक खादों का प्रयोग किया तो आपने देखा होगा कि रासायनिक खादों की प्रवृत्ति होती है वो टेम्परेचर बढ़ाती है। यदि हम जैविक खादों का प्रयोग करते हैं तो हमारी जो क्षमताएं हैं जमीन की, यदि हमने आज बीज डाला और हमने जैव उर्वरकों से यदि उसका लेपित करके बीज उपचार करके किया है तो उसकी क्षमताएं बढ़ जाती है, उसकी जर्मिनेशन की क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो ये फायदे हैं, एडवर्स कंडीशन में भी हमारे जैव उर्वरक है वो काम करते हैं खेती के अंदर, रासायनिक उर्वरक है एडवर्स कंडीशन के अंदर काम नहीं करते, वो हो सकता है कि बारिश नहीं आए तो फसल को जला भी दे।
1: तो आपने बात करी कि जो बीचों उनको ऊपर परत चढ़ जाओ चे, तो जैसे एक परत आपने फंजीसाइड की यानी कि जो आपने फफूंदी लाग जाओ चो उनकी छिड़ाली, फिर कीटनाशक की छिड़ाली है ना, उनका बाद जीवाणु की छिड़ाली, तो इमें जो अंतराल होनी चाहो बीज उपचार को कितना समय को होनी चाहो, कब कब वहां को बीज उपचार करें?
0: देखिए, इसका शशि भाई एक महत्व है, सबसे पहले हम फंजिसाइड का उपचार करते हैं, फंजिसाइड का उपचार करने के बाद में जब बीज सूख जाए ना, सूखने के अंदर 5 से 7 मिनट 10 मिनट लगते हैं, फिर उसके बाद में हम इंसेक्टिसाइड कीटनाशी का प्रयोग करते हैं, बहुत कम मात्रा होती है इनकी, यदि हम प्रयोग 1 से 2 ग्राम करते हैं, 1 ग्राम भी करते हैं तो उसके ऊपर आपने देखा होगा वो लगभग सूखा वासा बीज होता है, फिर उसके बाद में हम 5 से 7 मिनट के अंदर बायो फर्टिलाइजर नैनो डीएपी का समावेश उसके ऊपर कर सकते, तो निश्चित रूप से यदि अपन अल्टरनेट, क्योंकि हमारे किसान का बीज कोई 1 क्विंटल बोता है, कोई 2 क्विंटल, तो ये विधि है सर्किल के अंदर चलती रहती है, एक जगह हमने
1: डेरी लगाई
0: उसमें फफूंद नाशक का कर दिया, फिर उसके बाद में कीटनाशक का

0: कर दिया, फिर उसके अंदर अगली वाली के अंदर हमने बढ़ते गए और फिर पहले नंबर वाली के ऊपर फिर हम दोनों के ऊपर कीटनाशिका हो गया, उसके ऊपर हम जैव उर्वरक का और नैनो डीएपी का कर सकते।
1: बिल्कुल, तो ये जो परत है या बढ़िया सो बीज के ऊपर चढ़ जाओ तो इनके लेकर काय बातों को ध्यान रखना,
0: हमें सबसे पहले उसके अंदर थोड़ा सा यदि हमें बातों का ध्यान रखना है तो जो काले वाला गुड़ आता है जिसको हम वेस्ट गुड़ कहते हैं, यदि जो पानी अपन काम में ले रहे हैं उसके अंदर थोड़ी सी गुड़ की मात्रा बनाए, वो चिपकाने का काम करता है।
1: बहुत बढ़िया,
0: यदि हम उसके गुड़ यदि गुड़ की थोड़ी बहुत मात्रा डाल देंगे तो वो जो कारगर इतना बढ़िया कारगर होगा कि उसके ऊपर जो कोटिंग बनेगी वो बहुत शानदार कोटिंग बनेगी और वो लंबे समय तक बीज को है पोषक मिलता रहेगा। आज हम रसायन खाद शशि भाई दे रहे हैं, लेकिन मैं बात करूं कि यदि आज बीज हम बो रहे हैं, हम रसायन दे रहे हैं उसके 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे की ओर, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको क्या माँ के दूध की फीडिंग की आवश्यकता होती है? तुरंत होती है। लेकिन हमारे बीज जो हम डाल रहे हैं उसके फीडिंग के लिए 5 से 7 जब वो झड़ जाएगी पौधे तक तब उसको फीडिंग मिलना शुरू होएगा।
1: हाँ।
0: मतलब कि जब हम अपने बच्चे को ही कमजोर कर दिया, पहले से उसको फीडिंग नहीं दिया, यदि हम बीज उपचार कर दिया तो निश्चित तौर पे उसको तुरंत है वो पोषण मिलेगा और पोषण मिलेगा तो स्वस्थ बीज तैयार होगा, स्वस्थ पौधा तैयार होगा और जहाँ स्वस्थ पौधा तैयार होता है वहां पे उसकी उत्पादकता भी बढ़ती है।
1: बिल्कुल, बहुत गाड़ी बात कीचर, हाल भी मारा मन में तो कहीं सवाल आ रहे पर देखो अपन सब समय सुबंधिया हुआ जाए और गड़ी की सुइया खरी चे भाई चालबा को भगत हो रहे। तो श्री लाला राम चौधरी जी आप चौपाल कार्यक्रम में पधारे और आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारी किसान बन भाई के लेकर दी के लेकर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।
0: राम राम सभी किसान भाइयों को, पुनः राम राम।
1: किसान बन भाइयों इनके साथ ही आपका ताएं खाल का कार्यक्रम का बारे में बता दें, खाल की चौपाल में आप सुनागा जैविक खेती कसिया कराए यो तो विषय रहेगो और ये विषय पर जानकारी देगा डॉक्टर पवन कुमार टांक आप जैविक खेती विशेषज्ञ श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कोटा। और सजीव फोन इन कार्यक्रम के दौरान आप भी आप जो विशेषज्ञ से वहां से बात कर सको छो, उनके लेकर फोन नंबर छ 2941142 दन गुरुवार दिनांक 2 जुलाई समय रहो श्याम की 7 से 7:30 बजे तय। इनके साथ ही किसान बन भाई हूँ अब आपका साथी शशि भाई का तय दियो अनुमति चाला फिर मलंगा नई बात नई जानकारी के साथ। राम राम।
2: धान की सीधी बुआई के समय नैनो डीएपी 5 से 10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम एवं एनपीके कंसोर्टिया 5 से 10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज को बीजोपचार कर बुआई करें। डीएपी और एसएसपी की 25% मात्रा कम प्रयोग करें। सोयाबीन मक्का की फसलों में नैनो डीएपी 2 से 5 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर बुआई करें। धान की नर्सरी उपचारित करने के लिए 10 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पौध को आधे घंटे से अधिक घोल में रखें। खड़ी फसल में नत्रजन की पूर्ति के लिए 4 से 5 मिलीलीटर नैनो यूरिया प्लस को 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। कृषि लागत कम करने के लिए और अधिक उपज लेने के लिए नैनो यूरिया नैनो डीएपी का प्रयोग करें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इफको कोटा।

चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी कोटा बूंदी से किया जा रहा था। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है एफएम 102 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर में 1413 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। हमारे प्रसारण आप मोबाइल पर प्रसार भारती के आधिकारिक मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से अब देश विदेश में हर जगह सुन सकते हैं। आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत।

कार्यक्रम का ये पहला गीत सुनिए, रेणु का, प्रोमिला राजीव, स्वास्थी, सीमा और साथियों के स्वरों में।

0: अब दुनिया के किसी भी हिस्से में सुनिए आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: ओ पिव जी, ओ ढोला जी, ओ पिव जी थोड़ी सी ना जा दे।
0: प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर गूंज रहा है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एआईआर। इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद रेडियो आइकन का चुनाव करिए और अब आकाशवाणी कोटा को अपने मोबाइल पर सुनने का आनंद लीजिए।

श्रोता कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। कल 2 जुलाई को सवेरे 8:15 पर हेलो डॉक्टर कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। इसका विषय है गर्दन, कंधे और पीठ का दर्द, कारण और इलाज। हमारे विशेषज्ञ होंगे अस्थि और जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा शंकर ढिल्लन। आप उनसे प्रसारण के दौरान यानी सवेरे 8:15 से 9 बजे के बीच इस नंबर पर कॉल करके और आज के इस विषय पर सवाल पूछ सकते हैं। फोन नंबर है 2941142294114 और इससे पहले एसटीडी कोड आपको लगाना होगा 0744 यानी 0744। विषय एक बार फिर से सुन लीजिए, गर्दन, कंधे और पीठ का दर्द, कारण और इलाज। विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा शंकर ढिल्लन। कार्यक्रम प्रसारित होगा 2 जुलाई को सवेरे 8:15 से 9 बजे तक। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त होती है। आइए सुनते हैं लोक संगीत कार्यक्रम की अगली रचना।

अनुराधा पौडवाल के स्वर में आपने ये लोक रचना सुनी। आज के इस लोक संगीत कार्यक्रम की ये अंतिम प्रस्तुति सुनिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 का प्रत्यक्ष और 9,80,000 का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रूपये है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से FM 102 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं चित्रपट संगीत सुनते हैं।

जावेद अली की आवाज में दबंग 3 फिल्म का गाना सुनिए। दानिश साबरी ने इसे लिखा है और साजिद वाजिद ने इसे संगीतबद्ध किया।

आइए अब सुनते हैं राहत फतेह अली खां और साथियों की आवाजों में कलयुग फिल्म का एक गीत। संगीत है अनु मलिक का और इसे लिखा है सईद कादरी ने।

श्रोता अब आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर में 1413 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के आधिकारिक मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर अब देश दुनिया में हर जगह। इस समय जारी है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आज के इस प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ अपना रेडियो दोस्त राम नारायण। आइए सुनते हैं जुबिन नौटियाल और साथियों के आवाजों में मशीन फिल्म का एक गाना। अराफात महमूद और मोहम्मद इरफान ने इसे लिखा है। तनिष्क बागची का संगीत।

श्रोताओं प्रोग्राम का अगला गीत लेकर आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले कार्यक्रम संबंधी ये सूचना सुनिए। कल 2 जुलाई को साय 7 बजे से 7:30 तक लाइव फोन इन प्रोग्राम होगा। विषय है जैविक खेती कैसे करें। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर पवन कुमार टोक, जो जैविक खेती विशेषज्ञ हैं श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कोटा से। इस फोन इन कार्यक्रम में आप उनसे बात कर सकते हैं। प्रसारण के दौरान यानी 7:30 बजे से 7:30 बजे के बीच आप इन नंबरों पर उन्हें फोन मिला सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है HTD कोड 0744 और इसके बाद नंबर मिलाएं 2941142।

9491142। प्रसारण समय गुरुवार दिनांक 2 जुलाई को शाम 7 बजे से 7:30 बजे तक। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई। आइए सुनते हैं सुनिधि चौहान, शेखर राव जीवनी और साथियों के आवाजों में हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड फिल्म का एक गीत। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और विशाल शेखर

चित्रपट संगीत जारी है कार्यक्रम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजें अगले गाने में। फिल्म का नाम हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, संगीत शारिब तोशी का।

अतीफ असलम और चिन्मयी श्रीप्रदा तथा साथियों के आवाजों में यह गीत था फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो से। इरशाद कामिल की रचना थी और प्रीतम का संगीत। इस प्रोग्राम के आखिर में लीजिए सुनिए ये गीत। फिल्म का नाम है भूल भुलैया, श्रेया घोषाल और एमजी श्री कुमार की आवाज, समीर की गीत रचना है और धुन बनाई प्रीतम ने।

0: एम जी श्री कुमार और श्रेया घोषाल के आवाजों में ये गीत था फिल्म भूल भुलैया से। इसके साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। 8:45 हो रहे हैं, थोड़ी ही देर में दिल्ली से समाचार होंगे।
1: से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंड से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
2: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबरई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर हमीरपुर महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
1: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
3: VBG रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय

0: औसत मजदूरी 298.80 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 327.40 रुपए प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वीबीजी रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, वीबीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन भागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
2: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुंच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फारुखाबाद

0: में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
1: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
0: वस्तु और सेवा कर GST से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए पर बंद हुआ।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत के समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था

0: मुख्य भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। हमारा प्रसारण FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर में 1413 kHz पर सुना जा सकता है। प्रसार भारती के आधिकारिक मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी अब देश दुनिया में हर जगह आप हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं। रात्रि के 9 बजे है, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम आज के कलाकार। आज के कलाकार हैं पार्श्व गायक सुदेश भोसले। सुदेश भोसले 90 के दशक के सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक हैं। अमिताभ बच्चन के लिए उनकी आवाज सबसे ज्यादा उपयुक्त बताई जाती है। वे कई अभिनेताओं और पार्श्व गायकों की सुंदर मिमिक्री भी करते हैं। आइए सुनते हैं सुदेश भोसले और कविता कृष्णामूर्ति की आवाजों में प्रोग्राम का ये पहला गाना, फिल्म हम। ये गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओ, आज के फिल्म संगीत के इस प्रोग्राम में आज के कलाकार में आप सुन रहे हैं सुदेश भोसले के गाए गीत। आइए इनका गाया अगला गीत सुनते हैं, आंखें फिल्म से। साथ में हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति तथा अलका याग्निक। इंदिवर की गीत रचना है और बप्पी लाहिरी का संगीत।

श्रोताओ, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं सुदेश भोसले की आवाज में कुछ फिल्मी गाने। आइए इनकी आवाज में आप सुनते हैं फिल्म तहलका का ये गीत। साथी कलाकार हैं मोहम्मद अजीज और अन्नू मलिक। हसरत जयपुरी की गीत रचना है और संगीत अन्नू मलिक का।

ஆமா.

नीचे आजा, ओ मेरी छतर के नीचे आजा, क्यों जलती है कमला, क्यों जलती है बिमला, क्यों जलती है सलमा।

श्रोताओ, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM 102.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। लीजिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। कल 2 जुलाई को सायं 7 बजे से 7:30 बजे तक लाइव फोन इन प्रोग्राम होगा चौपाल। इसमें विषय है जैविक खेती कैसे करें। हमारे विशेषज्ञ होंगे जैविक खेती विशेषज्ञ श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कोटा से डॉक्टर पवन कुमार टॉक। आप इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में

0: प्रसारण के दौरान उनसे बात कर सकते हैं। फोन नंबर है 2941142, एसटीडी कोड 0744। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई। आइए सुनते हैं सुदेश भोसले और साथियों की आवाजों में फिल्म बागबा का ये गाना।
1: मेरी मखड़ा, मेरी
0: साथ में है अलका याग्निक। समीर ने गीत लिखा और आदेश श्रीवास्तव का संगीत।

0: श्रोताओं, आज के फिल्म संगीत प्रोग्राम में एक ही कलाकार के अंतर्गत हमारे कलाकार हैं मुख्य कलाकार सुदेश भोसले। इनके एक आए कुछ और गीत हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन इससे पहले कार्यक्रम संबंधी एक सूचना एक बार फिर से सुन लीजिए। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का प्रसारण होगा कल सवेरे 2 जुलाई को 8:15 से 9 बजे तक। इसमें विषय है गर्दन, कंधे और पीठ का दर्द, कारण और इलाज। हमारे विशेषज्ञ होंगे अस्थि और जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा शंकर ढिल्लन। आप प्रसारण के दौरान यानी सवेरे 8:15 से 9 बजे के बीच इस विषय पर उनसे सवाल पूछ सकते हैं। फोन नंबर है एसटीडी कोड कोटा का 0744 और उसके बाद में नंबर डायल करिए 2941142 यानी 2941142। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त होती है।
1: बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम चिक चिक बम।
0: मोहम्मद अजीज, उदित नारायण और सुदेश भोसले की आवाजें हैं फिल्म हम में। आनंद बख्शी ने गीत रचा और संगीत तैयार किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

सुदेश भोसले के साथ इस गीत में साधना सरगम, मोहम्मद अजीज और साथियों की आवाजें भी आपने सुनी फिल्म करण अर्जुन से। बोल थे इंदिवर के और धुन बनाई राजेश रोशन ने। आइए अब सुनते हैं सुदेश भोसले और विनोद राठौड़ की आवाजों में श्रीमान आशिक फिल्म का एक गीत। गीतकार समीर हैं और संगीतकार नदीम श्रवण।

श्रोताओं, ये आवाजें थी सुदेश भोसले और साधना सरगम की फिल्म दिल तेरा आशिक में। समीर गीतकार थे और संगीतकार नदीम श्रवण। आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम में आज के कलाकार के अंतर्गत आपने सुदेश भोसले और साथियों की आवाजों में कुछ फिल्मी गाने सुने। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। एफएम 102 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बज चुके हैं। अब अगले कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से होंगे।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामी, आपकी त्रासदी है कि वो हमें झुलसा देती है। हाँ, आग का क्या है, पल दो पल में लगती है और बुझते बुझते एक जमाना बीत जाता है। हम ता उम्र किसी आग में जलते रहते हैं, नफरत की आग या फिर प्रेम की अगन। धुआं धुआं सा लग रहा है इन दिनों, धुआं धुआं सा लग रहा है इन दिनों, लगता है किसी का इश्क जल रहा है इन दिनों।

कहते हैं नफरत आग लगा देती है और प्रेम की एक बूंद बड़ी से बड़ी आग बुझा देती है। जिनके दिलों में नफरत होती है उनकी जुबां सिर्फ आग ही उगलती है और ये आग सिर्फ धुआं ही छोड़ती है। धुआं दर्द बयां करता है और राख कहानियां छोड़ जाती है।

हमारा प्यार जैसे जंगल की आग था, और कहते हैं अगर इश्क की आग दिल में लगी हो तो सुकून कभी मिलता नहीं है। अब आग को अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। चूल्हे में लगी आग खाना पकाती है और पेट की आग को शांत करती है, लेकिन यही आग जब रिश्तों में लग जाए तो घर जलकर खाक हो जाते हैं। यानी आग का अपना एक गुण है, आग ठंड में राहत देती है और यही आग गर्मी में झुलसा देती है। ये सीने की आग है साहेब, यहाँ पानी का क्या काम। ये सीने की आग है साहेब, यहाँ पानी का क्या काम। किया हमने महज इश्क ही तो था कमबख्त, किस्मत ही निकली बेईमान।

इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आग, जी हाँ, आग कुछ नहीं बोलती। वो अपने को समेट कर चुपचाप माचिस की डिबिया में पड़ी होती है, पर कभी कभी ना राख उड़ती है ना उठता है धुआं। कुछ रिश्ते बस चुपचाप जला करते हैं। हालांकि खुद को अगर हमने परिश्रम की भट्टी में झोंक दिया तो हीरा बनकर बाहर निकलते हैं। यानी ये आग आपको जलाकर खाक भी कर सकती है, और यही आग कांच को हीरा भी बना देती है।

आग की बात है, तूने ये बात सुनाई है। ये जिंदगी की वही सिगरेट है जो तूने कभी सुलगाई थी। कहते हैं आज केवल आग में ही नहीं पाई जाती, कभी एकांत में स्वयं के भीतर के तापमान को जांच कर देखना। भीतर का मौसम भभक रहा होता है कई बार, और मन उस आंच में सिकता रहता है धीरे धीरे धीरे धीरे। इन दिनों मौसम जैसे धुआं धुआं सा है, हर तरफ एक आग और फुगा सा है।

आग को साधते हुए कई बार आग से खेल जाते हैं हम, और यही है वो आग, सना है जिसका ताप जीवन की खुशबू से, हाँ लक्षित नहीं होता है जीवन के ठंडे और धूसर राख भरे अवसाद के नीचे। हमारे भीतर भी एक आग बची होती है और इसी आग में प्यार और नफरत सिकते रहते हैं। इसी आग में जलते हैं सपने, ख्वाबों का जंगल भी इन्हीं लपटों से झुलस जाता है, और जंगल में फैली ये आग जल्दी बुझती भी तो नहीं।

0: तो क्या है।
1: और अब छाया गीत समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
2: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
3: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
2: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
4: एक जमाना था 1951 या 50 में बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम चार दिल्ली से आए।
2: संगीतकार रवि,
4: उन्होंने एक दिन फोन किया कहने के यहाँ हम लोरियाँ रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना के दो लाइन चंदा मामा दूर के पूरे पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली चंदा मामा दूर के हुए पकाए दूर के।
3: आप खाए थाली में सुनने को दे प्याली में।
2: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

0: दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉ मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतन भोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज AP मॉलर मर्स्क समूह के एस्टेट स्ट्रेटेजी प्रमुख अहमद हसन के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बना लिए हैं। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और DR कांगो के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक DR कांगो ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं देर रात 1:30 बजे

0: Zboleczyn.
1: आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है, एफएम 102 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी अंतिम प्रसारण सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:53 पर हमारी आपसे पुनः भेंट होगी।